मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 11वीं तिथि। तदनुसार 2 सितंबर सन 2026 इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जाँच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जाँच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने क्रॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर, यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 और 10 सेकेंड्स हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में प्रस्तुत देशगान से।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब प्रस्तुत है लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना। लीजिए अब सुनिए पंडित डीवी पलुस्कर के स्वर में ये भक्ति गीत।

कार्यक्रम वंदना में अभी आपने सुना पंडित डीवी पलुस्कर के स्वर में ये भक्ति गीत। अब कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं श्रुति साडोलीकर के गाए इस भक्ति गीत से।

0: श्रुति साडोलीकर के गाय इस भक्ति गीत के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से। लीजिए अब सुनिए चिंतन में महत्वाकांक्षा विषय पर ब्रजेंद्र श्रीवास्तव के विचार। वाचक स्वर है राजेंद्र कुमार का।
1: महत्वाकांक्षा शब्द में महत उपसर्ग है जिसका अर्थ है बहुत बड़ी। इस प्रकार बहुत बड़ी आकांक्षा को महत्वाकांक्षा कहा जाता है, पर वो इतनी बड़ी होती है कि वर्तमान हैसियत से बाहर की बात होती है। अपने अपने कार्यक्षेत्र और पसंद के अनुसार व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कुछ भी हो सकती है। व्यापारी को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने की, वैज्ञानिक को नया खोजने की, विद्यार्थी को बड़े संस्थान में पढ़ने की, गृहिणी की आधुनिक उपकरणों वाली रसोई घर की महत्वाकांक्षा हो सकती है। नेपोलियन और सिकंदर विश्व विजय की महत्वाकांक्षा

0: रखते थे। महत्वाकांक्षा को हम एक 5 विभागों वाला रॉकेट मान सकते हैं जो अपने लक्ष्य पर इन सभी के तालमेल से ही पहुंच सकता है। या कहें कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इन 5 गुणों को अपने में विकसित करना होता है। सबसे पहले व्यक्ति को वर्तमान स्थिति से असंतोष होना चाहिए, पर यह असंतोष क्रोध ईर्ष्या बदला लेने वाला नहीं, रचनात्मक होना चाहिए जो विद्यमान स्थिति को बदलने की बेचैनी को संकल्प की आग में बदल दे। असंतोष ऐसा भी ना हो कि प्रयत्न कुछ भी ना किया जाए, बस मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती रहें। ऐसी अकर्मण्यता जिसमें भूमि पर लेटे हुए आकाश को छू लेने की इच्छा मात्र हो, महत्वाकांक्षा नहीं कहलाती। वस्तुतः मनुष्य समाज आज जहां है वो व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षा और समाज व देश की सामूहिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है। 60 के दशक में गाया जाने वाला गीत पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजड़ी जमीन पर, 2 दशक बाद ही रूस अमेरिका की महत्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा के कारण साकार हुआ और आज मनुष्य चांद व मंगल के उपग्रह पर बस्ती बनाने, होटल खोलने की महती आकांक्षा रखता है तथा प्रयत्नशील भी है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया जब छोटे थे तो चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर बैठ जाने के कारण प्रताड़ित किए गए थे। तब उस बालक ने प्रतिज्ञा की थी कि एक न एक दिन इसी कुर्सी पर अपनी योग्यता से बैठकर दिखाऊंगा और उनकी ये महत्वाकांक्षा इससे भी बड़े रूप में पूरी हुई थी, क्योंकि वो निरंतर असंतोष की ऊर्जा से अपनी महत्वाकांक्षा को गति व दिशा देते रहे थे। दूसरा गुण है भविष्य की कल्पना करना और स्वप्न देखना। महत्वाकांक्षी व्यक्ति भविष्य की योजनाएं बनाता है, उनमें कल्पनाओं के रंग भरता है। इनमें से कई योजनाएं फेल हो जाती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं, पर कुछ आगे बढ़ती जाती हैं। यदि भविष्य की, जो कि आकार रहित है, कुछ कल्पना नहीं की जाएगी तो प्रेरणा कैसे मिलेगी। तीसरा गुण है अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर काम करने में आनंद का अनुभव करते रहना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि की उड़ान पुस्तक में इसे बहुत जरूरी माना है, क्योंकि इससे व्यक्ति कठिन श्रम करने पर भी थकता नहीं है। चौथा गुण है इच्छा शक्ति मजबूत बनाए रखना। केवल इच्छा करने मात्र से कभी कुछ नहीं होता, इसके पीछे शक्ति लगाना होती है जो विचारों के स्तर पर होती है। इस इच्छा शक्ति को आस्था, विश्वास, सकारात्मक सोच से ऊर्जा मिलती है व निराशा से उबरने में मदद मिलती है। पांचवा गुण है अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान बने रहना। कठिनाइयों के कारण व्यक्ति को अपने लक्ष्य बदलने या हताश होने के बजाय अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए, तभी सफलता का सूरज उसके परिश्रम रूपी आकाश पर उदित होता है। महत्वाकांक्षा निजी सांसारिक जीवन में ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन में भी उपलब्धि कराती है। ध्रुव के पास क्या था जब वो वन में गया? स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका में खाली हाथ ही गए थे, पर दोनों ही लक्ष्य को पाने में सफल रहे। जीवन में महत्वाकांक्षी हम बने, पर यह ध्यान रहे कि हमारी ये महत्वाकांक्षा लोक हितकारी भी हो।
1: चिंतन में अभी श्रोता सुन रहे थे महत्वाकांक्षा विषय पर ब्रजेंद्र श्रीवास्तव के विचार। वाचक स्वर था राजेंद्र कुमार का। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्रीराम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये

धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा, पशुओं में थनेला रोग कारण और बचाव, जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन पशुपालन में कभी कभी कुछ समस्याएं आने के कारण दुधारू पशुओं की उत्पादन क्षमता प्रभावित होने के साथ साथ अंग भी प्रभावित हो जाते हैं, जिनमें थनैला रोग प्रमुख है। यह रोग अंग्रेजी में मैस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। यह रोग गाय, भैंस, बकरी, दुधारू पशुओं में प्राय हो जाता है। अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं को अधिकतर यह रोग प्रभावित करता है। यह रोग जीवाणु जनित होता है।

0: थनैला रोग तीन प्रकार का होता है, अति तीव्र, दूसरा तीव्र और तीसरा पुराना थनैला। इस रोग के प्रमुख कारण पशुशाला की साफ सफाई न होने के कारण, आयन और थनों पर चोट लगने के कारण, जो पशुओं की देखरेख करते हैं ग्वाले भी रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। सही तरीके से दूध दोहन न होने पर भी यह रोग हो जाता है। बछड़ों द्वारा अधिक समय तक दूध पीते रहने के कारण जीवाणु थनों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर अपनी वृद्धि शुरू कर देते हैं। जीवाणुओं के प्रजनन और बढ़वार में दूध सहायक होता है। पशुओं में थनैला रोग होने पर चारों थनों, एक या दोनों थनों में अचानक सूजन आ जाती है। थन लाल और गर्म हो जाते हैं। थनों को छूने पर पशु दर्द का अनुभव महसूस करते हैं। पशु काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। पशुओं में बेचैनी सी दिखाई देती है। पशुओं की दूध देने की मात्रा कम हो जाती है या दूध पीलापन लिए हुए निकलता है। दूध में खट्टापन आ जाता है। दुग्ध नलिकाएँ सूख जाती हैं। पशु अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाते हैं और कूदना शुरू कर देते हैं। पशुओं के थनों का दूध पतला हो जाता है, उसमें खून और फुटकी आने लगती है। अधिक रोग संक्रमण की स्थिति में दूध बिल्कुल नहीं निकलता है। इस बीमारी की अनदेखी करने पर कभी कभी थन हमेशा के लिए लाइलाज हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए दूध देने वाले पशुओं के रख रखाव पर विशेष ध्यान दें। पशुओं के मलमूत्र को अधिक समय तक जहाँ पर पशु बांधते हैं पशुशाला में इकट्ठा न होने दें। मक्खी मच्छरों को पनपने न दें। समय समय पर कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग करते रहें। चारे दाने की स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखें। फंगस लगा हुआ चारा पशुओं को न खिलाएं। पशु का दूध निकालने के पहले और दूध निकालने के बाद अगर पशु के थनों को ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालकर धोएं तो इस रोग से पशु का बचाव कर सकते हैं। थनों में यदि सूजन हो और गर्म हो तो बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। कड़ा और ठंडा होने की स्थिति में गर्म पानी से सिकाई करें। साथ ही आयोडीन ऑइंटमेंट और बोरिक पाउडर डालकर सिकाई करें। अगर यह भी उपलब्ध न हो तो नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर सिकाई करें। थन यदि बंद हो गए हों तो साइफन ट्यूब की मदद से खोलने का प्रयास करें और दूध पूरा निकालने की कोशिश करें। बीमार पशु का दूध सबसे बाद में और दूसरे ग्वाला द्वारा प्रतिदिन निकालना चाहिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। रोग से पीड़ित पशु को दूसरे पशुओं से अलग रखें। पशुओं को बांधने की खूंटियां दूर दूर होनी चाहिए जिससे पशुओं में जगह का अभाव महसूस न हो। जहां पर पशुओं को बांधते हैं वहां पर जगह समतल हो और उस पर बालू डालकर नरम बना दें। पशुओं का आहार प्रबंधन अच्छा हो। बछड़ों को दूध पीते समय ध्यान दें। उचित समय तक ही बछड़ों को दूध पीने दें। यदि पशु के दूध देने की मात्रा में कमी आती है या रंग में परिवर्तन दिखाई देता है तो तुरंत ही दूध का परीक्षण करवाना चाहिए। पशु चिकित्सक से संपर्क करके तुरंत ही पशु का उपचार करवाना चाहिए, अन्यथा पशु के थन खराब होने की पूरी संभावना बन जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा में सामूहिक चर्चा, पशुओं में थनेला रोग कारण और बचाव। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती। जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय, खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
4: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
5: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
6: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
7: सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें। प्रदूषण भी ना बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी ना करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।
8: मन्नू भाई मोटर चले।
9: हर गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
10: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्य देशानां आह्वानं कृतवान् यत् आतंकवादस्य वित्तपोषणं आतंकवादीनां संघटने प्रवेशः उग्रवादस्य प्रसारः आतंकवादीनां सुरक्षिताश्रयस्थलानि च समाविष्टं संपूर्णं तंत्रं उन्मूलयेत्। ह्यः बिश्केक नगरे आयोजितं शंघाई सहयोग संघटनस्य 26वें शिखर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् आतंकवादस्य विषये द्विविधवान् मानदंडानां किमपि स्थानं न भवितुम् अर्हति। विदेश मंत्रालयस्य पश्चिम विभागस्य सचिवः सीवी जॉर्ज वार्ताहर सम्मेलने अवदत् यत् प्रधानमंत्री विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु प्रवर्तमानानां संघर्षाणां विषये चिन्तां प्रकटितवान्। सदस्य देशानां नेतारः संघटनस्य 25वें वर्षपूर्त्यवसरे बिश्केक घोषणापत्रे हस्ताक्षरम् अपि कृतवन्तः। शिखर सम्मेलनस्य समापनम् आतंकवाद प्रतिरोधः ऊर्जा आपद्व्यवस्थापनम् अंकीय सहकारिता चेति विषयान् समाविश्य 13 प्रमुख परिणामैः सह अभवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां जलशक्ति मंत्रालयस्य विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयिष्यति। ह्यः प्रारब्धमिदं द्विदिवसीयं विभाग

0: विभागीयशिखरसम्मेलनं प्रधानमन्त्रिणा टीम इंडिया इत्यस्य भावनां सुदृढीकर्तुं सहकारात्मक संघवादं च अधिकं सुदृढीकर्तुं परिकल्पितानां विभागीयशिखरसम्मेलनानां श्रृंखलायाः प्रथमं सम्मेलनमस्ति। अस्मिन् शिखरसम्मेलने केन्द्रराज्यप्रशासनानि महत्वपूर्णानां क्षेत्रीयप्राथमिकतानां विषये विचारविमर्शं करिष्यन्ति अथ समयबद्धाः कार्ययोजनाः च निर्मास्यन्ति। शिखरसम्मेलने चतुर्षु प्रमुखक्षेत्रेषु विशेषं ध्यानं दीयते। तेषु जलसंरचनापरियोजनानां समयबद्धं कार्यान्वयनं, जलसञ्चयजनभागीदारी कैच द रेन इत्येतत्, पेयजलस्रोतसां स्थायित्वं, जलजीवनोपक्रमः च सम्मिलिताः सन्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य छत्तीसगढ़े रायपुरस्य यात्रां करिष्यति। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः रायपुरस्य अखिलभारतीयायुर्विज्ञानसंस्थानस्य तृतीये दीक्षान्तसमारोहे भागं ग्रहीष्यति। बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री बा डी वेबर अद्यारभ्य भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र परिदृश्यस्य, परस्पर हितसम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयाणां च विषये द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। प्रधानमन्त्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त वाणिज्य सन्धेः सन्दर्भे आयोजितं व्यावसायिक कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। सः मुंबई नगरमपि गमिष्यति, यत्र हीरक क्षेत्रस्य पत्तन व्यवस्थायाः, परिवहन आपूर्ति व्यवस्थायाश्च प्रतिनिधिभिः सह विचार विनिमयं करिष्यति। विदेश मंत्रालयस्य अनुसारं एषा यात्रा भारत बेल्जियम देशयोः सहभागितां सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णम् अवसरं प्रदास्यति। सममेव व्यापार विनियोगयोः रक्षायाः, सुरक्षायाश्च प्रौद्योगिक्याः, नवीकरणीयोर्जायाः, सम्पर्कस्य अथ प्रतिजनसम्बन्धानां च क्षेत्रेषु पारस्परिकहितस्य सहयोगमपि वर्धिष्यते। नेपालस्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहः उक्तवान् यत् गतसप्ताहे तिब्बतक्षेत्रात् भोटेकोशी नद्याः मार्गेण रसुवा प्रदेशं प्रविष्टः विनाशकारी जलाप्लावः वायुमण्डलपरिवर्तनस्य परिणामः अस्ति। नेपालदेशे सहसा आगतस्य विनाशकारिणः जलाप्लावस्य कारणेन मृतानां संख्या 85,000+ वर्धिता अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पुनः लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जताई।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे। उन्होंने नागरिकों से देश की प्रगति में योगदान जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां और इरादे सही हैं। देश में कच्चे तेल के बाद सोना ही ऐसी दूसरी वस्तु है जिसका सर्वाधिक आयात किया जाता है। सोने की थोक मात्रा में खरीद बंद करने से देश के कुल आयात बिल में भारी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद

0: के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। चीनी भंडारण की नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी स्टॉक को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता है और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी गई और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के विरुद्ध जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:20 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम वसुंधरा में वार्ता पर्यावरण और जीवन का अंतर संबंध। वार्ताकार हैं राजेश अवस्थी लावा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता लेंगे सुबह 7:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे भूपेंद्र खरे, प्रातः 8:30 पर। आज आप सुनेंगे इनकी गाई कुछ गजलें। सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9:00। 9:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार अजीत सिंह पेंटल का राग विलास खानी तोड़ी में शास्त्रीय गायन।

सुबह 10:05 पर श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित करेंगे। दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आप सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, और महिला कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति। चर्चा होगी बेटियां हैं अनमोल और ऑनलाइन शॉपिंग में सावधानियां। साथ ही सुनिएगा नारियल के व्यंजन बनाना सीखें। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता, स्वस्थ जीवन का आधार पोषण। डॉक्टर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दीपक वर्मा, इनसे बात करेंगी निरंजना जैन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे अनुज राठौर। दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे इनके गाए कुछ भजन। साथ ही सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम, आज आप सुनेंगे भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ लोकगीत दिन के 1:30 पर। फिल्म संगीत और चित्रपट संगीत का आनंद श्रोता लेंगे अपराह्न 2:00 और 2:30 पर।

0: शाम 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा। आज आप सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति। चर्चा होगी युवाओं में बढ़ता अकेलापन और NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग श्रोता सुनेंगे शाम 6:00। कार्यक्रम चौपाल में आज चर्चा होगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और पोषण आहार सप्ताह। रात 10:00 सुनिएगा नाटक और 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी। अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। प्रदेश कैबिनेट ने आरजीपीवी के पुनर्गठन के साथ 3 नए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी। और इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने 2 शावकों को जन्म दिया, मां और दोनों शावक स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेगा और समयबद्ध कार्य

0: योजनाएं विकसित करेगा। शिखर सम्मेलन चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जल अवसंरचना परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय जनभागीदारी कैच द रेन, पेयजल प्राणियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन 2.0 शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवपुर में आयोजित बलराम महोत्सव को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। ग्वालियर में मुख्यमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 200 नवीन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कार्यालयों का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट किसानों, जिला सहकारी बैंकों और पैक्स संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री आकाशवाणी तिराहे के पास पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुवीर सिंह बाबूजी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये योजना 6 प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित है। कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई अवसंरचना में सुधार करना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तथा अधिक पहुंच, अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक अधिक पहुंच को सक्षम बनाना और शासन तथा सेवा वितरण में सुधार करना शामिल है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडार सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकते हैं। सतना जिले में लगातार बारिश होने से मंदाकिनी, टमस और सिमरावल सहित कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर राहत और बचाव दलों को सक्रिय किया है। चित्रकूट के प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी हैं। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।
1: सतना जिला में कल रात कई इलाकों में 8 से 10 सेंटीमीटर का बारिश 3 से 4 घंटे के अंतराल में गिरा है। उसके कारण सतना का सभी नदी और नाला उफान पर है। हमने सभी जगह को सुबह 6 बजे सभी जगह को हमने अलर्ट जारी किया है। लोगों से ये अपील है कि लोग को, मतलब काफी लोग को नुकसान हुआ है, वो दुखी भी है, हम सुशहर कर रहे हैं, बट हमने ये बता रहे हैं कि वो अकेले नहीं है, सब आपदा किसी एक को टारगेट करके नहीं आए, सबको आया है, सब इसमें सब लोग मिले हुए हैं और जो भी उनका नुकसान है उसको भरपाई किया जाएगा, सर्वे किया जा रहा है और जो भी उचित उनका मुआवजा सब चीज मिल जाएगा, बट अभी के लिए सुरक्षित रखें, हिम्मत रखें, ये हमने।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में करीब 41,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की जानकारी कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि आरजीपीवी का पुनर्गठन कर भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 3 नए प्रौद्योगिकी और कौशल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं सामाजिक न्याय विभाग में 9 गठित जिलों के लिए नए पदों को भी मंजूरी दी गई। किसानों के हित में ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की सीमा 25 से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक सुखद खबर है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने 2 शावकों को जन्म दिया है। जू प्रबंधन के अनुसार दोनों शावक और उनकी मां स्वस्थ हैं और फिलहाल गुफा में सुंदरी के साथ हैं। शावकों का अभी लिंग परीक्षण नहीं किया गया है। इनके जन्म के बाद जू में शेरों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। जू प्रबंधन शावकों के स्वास्थ्य और गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। पूरी तरह स्वस्थ होने और विकास की पुष्टि के बाद ही उन्हें दर्शकों के सामने लाया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भोपाल में

0: आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज की ओर से एजीयू स्पोर्ट्स अचीवर्स अवार्ड 2025-26 समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 148 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार ने आयोजन के बारे में जानकारी दी।
1: कि मैंने आज से करीब 8-10 साल पहले मध्य प्रदेश की एकेडमी छोड़ी थी और आज भी मध्य प्रदेश मुझे याद करता है। इस अवसर पर जब खिलाड़ियों के उत्थान की बात आती है, उनके उनके अचीवमेंट के बाद उनको इंसेंटिव्स देने की बात आती है, तो यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे तरीके से, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को देखभाल करके अपने पास अपने एडमिशन में रखा। कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ खेलो और मेडल जीतो। तो इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसेंटिव्स, कोई भी कार्य दूसरे नहीं हो सकते जो यूनिवर्सिटी कर रही है खिलाड़ियों के लिए।
0: भोपाल में वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर कल 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। डीबी सिटी मॉल में आयोजित कार्यक्रम में 43 अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ वंदे मातरम के थीम पर संगीत प्रस्तुति दी गई। वहीं 200 से अधिक विद्यार्थियों ने सामूहिक गायन किया और 150 से अधिक छात्राओं ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। आयोजकों के अनुसार इन तीनों उपलब्धियों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को नई पीढ़ी से जोड़ना था। आपको समाचार संक्षेप में। मंडला में कल शाम से वर्षा का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। नर्मदापुरम कलेक्टर ने कल आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर भोपाल मार्ग का शहपुरा भिटौनी टोल अस्थायी रूप से बंद रहेगा। फ्लाईओवर ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने और लगातार हो रहे विरोध के बीच ये निर्णय लिया गया है। खंडवा में कल जेसीआई द्वारा माटी के श्री गणेश कार्यशाला का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। आगर मालवा कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने कल जिले के हाईवे और मुख्य मार्गों के गांवों में संचालित गौशालाओं के संचालकों की बैठक ली। पन्ना में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और किसानों के देवता बलदाऊ जन्मोत्सव आज मनाया जाएगा। अशोकनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक दिवसीय श्री कृष्ण पर्व गरिमा अनुरूप मनाया जाएगा। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झाबुआ में कल साप्ताहिक जन सुनवाई के साथ स्वरोजगार दिवस का भी आयोजन किया गया। सेंट्रल जेल इंदौर में आयुष विभाग द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 253 मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथी श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वसुंधरा में वार्ता, पर्यावरण और जीवन का अंतर संबंध। वार्ताकार हैं राजेश अवस्थी लावा।
1: प्रकृति से ही सभी जीव जंतुओं के प्राणों का प्राकट्य, मानव जीवन के यथार्थ सबसे ज़्यादा अगर हमें चिंता करनी है तो सिर्फ यह कि अपने आसपास पर्यावरण सुरक्षित रहे। पर्यावरण की अनदेखी से समूची वसुधा का ही अहित है। मौजूदा सरकार का प्रदेश भर में हरियाली के इजाफे पर भारी जोर है। सफलतः अब आम जन भी सजग व जागरूक हुआ है, क्योंकि प्रकृति को सहेजने, उसे लाभ पहुंचाने के लिए सभी आंचलिक लोगों, समुदायों, उद्योगपतियों सहित घुमंतू जनजातियों का भी सुरक्षित पर्यावरण के लिए अब नजरिया तेजी से बदला है। यह तो सर्वविदित है कि पर्यावरण से ही धरती का और स्वस्थ जीवन का अत्यधिक गहरा नाता है। यही वजह है कि कुदरत ने इसे मजबूती देने के लिए हर आवश्यक जतन किया है। सुरक्षित पर्यावरण होगा तभी हमारा जीवन सुखद होगा। लोगों को यह बात ठीक से समझना होगी कि पेड़ पौधे ही हमारी सनातन से पालनहार हैं, वे हम सभी के बड़े प्यारे मित्र हैं। पेड़ हमारे लिए मानसून लाते हैं तथा विविध प्रकार के पौष्टिक एवं अनंत स्वादों से परिपूर्ण स्वादिष्ट फल, सब्जियाँ व अन्न सहित हमें दीर्घ आयु करने में सहायक सहस्त्रों जड़ी बूटियाँ भी देते हैं। हमारे वैद्य व आयुर्वेदाचार्य जड़ी बूटियों से असंख्य रोगों को नष्ट करने वाली औषधियाँ बनाते हैं। यह पर्यावरण की ही देन है। इसके अलावा पेड़ पौधे जाने कितनी प्रजातियों के जीवों को जीवन देते हैं, हमें पक्षियों का कलर सुनाते हैं। सच कहा जाए तो प्रकृति पुत्र इन पेड़ों के मानव जाति पर इतने एहसान हैं जो हम जन्मों जन्मांतर तक चुकाए ही नहीं सकते। डरावना कोरोना काल इस बात का जीवंत प्रमाण है कि पर्यावरण तथा ऑक्सीजन का हमारे लिए कितना महत्व है। यही वजह है कि जनमानस के हितार्थ समय समय पर प्रदेश सरकार समूचे प्रदेश में पेड़ लगाने का अभियान पर्यावरण बचाने, हरियाली बढ़ाने के लिए करती ही रहती हैं। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में योजनाएं भी चलाई जाती हैं और पर्यावरण के लिए जन जागरूकता के प्रयास भी लगातार किए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था, जिसमें कई संसाधनों व परिवर्तन जो भी समयानुसार आवश्यक रहे किए जाते रहे। नीतियाँ, नियम व अधिनियम इसलिए बनाए जाते हैं कि सब कुछ संतुलनीय हो तथा व्यवस्थापित व कल्याणकारी बना रहे। पर्यावरण संरक्षण की जहाँ तक बात है तो भारत के संविधान में अनुच्छेद क्रमांक 21 जीने के अधिकार से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण भोजन, पानी, हवा, ऊर्जा जैसे समस्त आवश्यक पदार्थ जो कि जीवन के लिए धरती पर अत्यधिक जरूरी हैं, हर प्राणी जीव जंतुओं को प्रदान करता है। सभी जगह पल्लवित ये पेड़ हमको घनी छांव व स्वस्थ वातावरण देते हैं। हमारा जीवन तो पर्यावरण से ही है। पर्यावरण यानी प्रकृति के प्राण। आमजन को चाहिए कि बेवजह पेड़ काटने व कटवाने से बचें। आज अपने जीवन में कुछ ऐसा लक्ष्य पर्यावरण के हितार्थ रखना होगा कि आने वाला कल और हमारी आगामी पीढ़ी अपनी जिंदगी कुदरत की ममतामयी स्नेहिल छाओं में सुखमय बिता सके। शैक्षणिक प्रणाली भी पर्यावरण को पल्लवित करने में बड़ी सहायक होती है। स्कूली बच्चों को वहाँ की ड्राइंग टीचर पेड़ों, पौधों, पत्तियों को बनाना, उनमें विभिन्न प्रकार के रंग भरना तो सिखाते ही हैं, साथ ही घर के गमलों में पौधे किस मौसम में कब और कैसे लगाएं यह भी बताते हैं, तो यह पर्यावरण के लिए एक अच्छा वातावरण निर्मित होता है। शिक्षक गण नए नए तरीके से समझाते हैं, उनके दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति प्रेम जगाते हैं। छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा। हर हाल में इसे जीवंत रखने की दिशा में हर दिन नए नए प्रयोग करने होंगे। बिना किसी लोभ लालच के तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा पल्लवित होगा। हम जब अपने बच्चों को कहीं लेके जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी पेड़ के पास बच्चों को ले जाया जाए और उसके बारे में जितनी भी जानकारी अपने पास है वो बच्चों को दी जाए। उससे होगा ये, जो किताबी ज्ञान है उनका, उससे वो बाहर निकलकर सीधे सीधे पेड़ों से जुड़ सकेंगे। इसी से जुड़ी अति महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अपने सभी बच्चों को यह भी समझाएं कि ये जो अपनी किताबें, कॉपियों या संबंधित जो भी कागज है वो किसी न किसी पेड़ से बनता है। कागज़ों का उपयोग अत्यधिक न करें, खासकर दुरुपयोग न करें। इनका दुरुपयोग यानी किसी पेड़ का कहीं न कहीं किसी के द्वारा नष्ट होना, यह बताने से हमारे बच्चे अपने

अपने मित्रों सहपाठियों को भी पेड़ पौधों की सुरक्षा करना बताएंगे, उन्हें सिखाएंगे तथा पेड़ों को कैसे सुरक्षित किया जाए यह जानकारी उनमें बढ़ेगी, जो कि उनके जीवन के लिए

0: उसकी जड़ों में पानी डालें। वहीं अगर कहीं कोई हरा भरा पेड़ कटते देखा जा रहा है तो उसकी भी सुरक्षा करें, उन्हें कटने से रोकें। लकड़ी से बने फर्नीचर से हर हाल में दूरी बनानी चाहिए, तब जाके पर्यावरण और पेड़ पौधे सुरक्षित रह पाएंगे। जब तक इस तरह के कठोर निर्णय आमजन नहीं लेगा तो पेड़ और पर्यावरण की सुरक्षा की बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आम आदमी पेड़ पौधों की रक्षा तो करे, साथ ही हम वन्य पशुओं व जानवरों के हितों की भी रक्षा का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि सर्वविदित है कि पर्यावरण की सुरक्षा में जंगली जानवरों का अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। जंगलों के लगातार कटते रहने की वजह से जंगलों की शक्ल सूरत अब वैसी नहीं रही जैसी कि आज से 5-6 दशक पूर्व हुआ करती थी। लालच के चलते जब जंगल ही नहीं रहने देंगे तो उसमें रहने वाले पलने वाले विभिन्न प्रजातियों के जानवर भी अपनी जान असमय ही गंवा बैठेंगे। पर्यावरण के हित में जानवरों का, पशुओं का तथा पक्षियों का भी उतना ही योगदान है जितना कि हमारा। आज हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह संकल्प लेना होगा कि जंगल के जानवरों की जितनी भी प्रजातियां शेष हैं, हम उनको सुरक्षा दें, उन्हें सुरक्षित करें, ताकि उनको भी अपना जीवन मिल सके और पर्यावरण के साथ मानवता भी सुरक्षित रह सके। प्रकृति का स्वरूप सौंदर्य सदैव ही चिरस्थायी बना रहे, यह प्रयास हमारा और आपका रहे। इसीलिए पर्यावरण के बचाव में कारखानों उद्योगों पर भी नियंत्रणीय विध को ध्यान में रखते हुए विध को सुदृढ़ तैयार किया है और साथ ही पर्यावरण से संबंधित जागरूकता को भी प्रचारित व प्रसारित किया जाता है। कुल बात यह कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिर्फ बातें नहीं करना है बल्कि अमल भी करना है, तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुंधरा में वार्ता, पर्यावरण और जीवन का अंतर संबंध। वार्ताकार थे राजेश अवस्थी लावा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से। इस समय सुबह के 7:23 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त का ये गीत। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत निर्देशन था रवि का। श्रोता साथियों, इस गीत को फिल्माया गया था अभिनेत्री साधना पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। आज अभिनेत्री साधना की जन्म जयंती है। आज ही के दिन 2 सितंबर 1960 के दशक की एक बेहतरीन लोकप्रिय अभिनेत्री और प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेत्री, जिन्हें हम साधना के नाम से जानते हैं, उनका जन्म जयंती है। 2 सितंबर 1941 को अविभाजित भारत में एक सिंधी परिवार में साधना का जन्म हुआ। उनके पिता ने बंगाली अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर उनका नाम रखा था। साधना हमेशा अभिनेत्री बनना चाहती थी, फिल्मों में नाम कमाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने बचपन में ही फिल्मों में पदार्पण कर लिया था। आइए अब आपको सुनवाते हैं उन्हीं पर फिल्माया हुआ फिल्म मेरे महबूब का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार हैं शकील बदायूनी, धुन तैयार की है नौशाद ने।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं अभिनेत्री साधना की जन्म जयंती पर उनकर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मनमौजी का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। भारत के विभाजन के बाद साधना का परिवार मुंबई आकर बस गया। प्रसिद्ध अभिनेत्री बबीता उनकी चचेरी बहन थी। उन्होंने 1960 में निर्देशक आर के नैयर की फिल्म लव इन शिमला से मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसी फिल्म से उनके फ्रिंज हेयर स्टाइल को साधना कट कहा गया, जो देश भर में ट्रेंड बन गया। हम दोनों, मेरे महबूब, वक्त वो कौन थी और मेरा साया जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं। रहस्यमयी किरदारों के कारण उन्हें मिस्ट्री गर्ल के तौर पर नाम दिया गया। फिल्म वक्त में उनके चूड़ीदार कुर्ते का अंदाज भी फैशन ट्रेंड बना।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस समय श्रोता सुन रहे हैं फिल्म मेरा साया का ये गीत आशा भोसले की आवाज में। गीतकार है राजा मेहदी अली खां और संगीत निर्देशन है मदन मोहन।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में श्रोता इस समय सुन रहे हैं अभिनेत्री साधना की जन्म जयंती पर उन पर फिल्माए कुछ फिल्मी गीत। अभिनेत्री साधना का अभिनय करियर फिल्म अबाना से शुरू हुआ, जो भारत की पहली सिंधी फिल्म थी। यह 1958 में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 1 रुपए की फीस मिली थी। यही छोटी सी फीस आगे चलकर उनके बड़े फिल्मी सफर की शुरुआत बनी। उन्होंने शोमैन राज कपूर के साथ भी फिल्म 420 में काम किया। वो गाने मुड़ मुड़ के देख में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आई थी। अभिनेत्री साधना ने करीब 2 दशक तक हिंदी सिनेमा में काम किया और 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उन्होंने इस संसार से विदा ली। आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म हम दोनों का ये गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत निर्देशन है जयदेव का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज।
1: करें नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
2: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने

0: संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update रहे, आगे रहे. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को follow करें.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, जिरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
6: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
7: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी बड़ी पदाधिकारी गए हुए हैं।
6: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर

0: से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्यौहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है। हिंदुस्तान में है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Master Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
3: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
2: Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
2: Taking a swipe at his critics, he said some people within the country drowned in an atmosphere of despair are spreading the lies all around.
3: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
2: Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit brings together the centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals effective from 15th of this month till 30th of November this year. Our correspondent reports that the new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability.
4: Currently, a stock holding limit of 4,000 quintals on sugar dealers across the country is effective from 1st of the last month. Under the amended provisions, a sugar dealer shall not hold any stock for a period exceeding 30 days from the date of receipt of such stock. The sugar dealer shall not also keep sugar in stock at any time and in any place throughout the country in excess of 2,000 quintals. However, the stock holding limit shall remain at 4,000 quintals for Kolkata and its extended metropolitan areas considering the specific market requirements of the region. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the Kolkata area is sourcing sugar from Uttar Pradesh and Maharashtra and supplying to the eastern part of the country, including the northeastern region. With Bhanu Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
2: The government said that the country has adequate availability of onion and it has begun a calibrated and targeted release of buffer stocks through Kanda Express and road transport to ensure moderation of seasonal price pressures. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that retail intervention efforts have expanded significantly across 19 cities, supported by the dispatch of over 30 trucks to ensure widespread availability. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the progress of the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana at a meeting in New Delhi yesterday. The meeting focused on accelerating implementation of the scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes and improving district-level performance for farmers. More from our correspondent.
5: The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that the average score of the 100 districts across the six objectives of the scheme increased from 22.54 in April 2026 to 38.85 in July 2026, an improvement of 16.31 points. The ministry said that the scheme is being implemented through the convergence of 36 central schemes of 11 ministries and departments along with the state schemes and private sector participation. A total of 121 indicators comprising 74 output indicators and 47 outcome indicators have been identified across the 36 schemes for monitoring progress against annual targets. The review emphasized on strengthening the monitoring framework to move beyond tracking activities and expenditure towards measuring outcomes and the actual benefits reaching farmers. Dhan Dhanya Krishi Yojana was approved by the Union Cabinet last year and was launched on 11th October 2025. Shivam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Raipur today to attend third convocation of All India Institute of Medical Sciences, AIIMS Raipur. The convocation will mark a significant milestone in the Institute's academic journey, with degrees being conferred on graduating students from undergraduate, postgraduate, super specialty, doctoral, and allied health sciences programs in the presence of distinguished dignitaries. This is Akashwani giving you the news.

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार भूपेंद्र खरे की गाई कुछ गजलें। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये अगली पेशकश।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार भूपेंद्र खरे के गाए कुछ गजलें। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में ये गजल।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार भूपेंद्र खरे की गाई कुछ गजलें। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन

0: केन्द्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेगा और समयबद्ध कार्ययोजनाएं विकसित करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्योपुर में आयोजित बलराम महोत्सव को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस साल 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। सतना जिले में लगातार वर्षा होने से मंदाकिनी, टमस और सिमरावल नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में करीब 41,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं सामाजिक न्याय विभाग में 9 गठित जिलों के लिए नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। किसानों के हित में ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की सीमा 25 से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भोपाल में आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज की ओर से एजीयू स्पोर्ट्स अचीवर्स अवार्ड 2025-26 समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 148 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुन रहे सभी श्रोता साथियों को अरुणा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आजकल आप एक खेल देख रहे हैं प्रकृति का। क्या कहा आपने? आपने इस खेल को नहीं देखा तो हम बता रहे हैं आपको, आजकल प्रकृति कभी सूरज की धूप के रूप में तो कभी बादलों की ठंडक के रूप में हमें खेल दिखा रही है। पिछले 2-3 दिनों से हमारे अंचल में बादलों और सूरज की लुका छुपी का खेल चल रहा है और आज ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि बारिश शायद मेहरबान हो रही है और ऐसी संभावना भी जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार कि अगले 3 दिन अच्छी बरसात हो सकती है। शहर के साथ ही अंचल में पिछले 4 दिन से पानी नहीं बरसा है, ऐसे में तापमान लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। जब धूप निकलती है तो तापमान बढ़ जाता है और बादल छा जाते हैं तो तापमान गिर जाता है। श्रोता मित्रों, हमारे अंचल में बारिश अभी कम हुई है और ज़रूरी है कि अभी और हो, और जब वर्षा होती है तो वर्षा जल का संचयन और प्रकृति का सीमित दोहन आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। श्रोता मित्रों, हमारी पृथ्वी ने हमें जीवन जीने के लिए अनमोल संसाधन दिए हैं, लेकिन हमारी बढ़ती आवश्यकताओं और लालच के कारण इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। वर्षा जल संचयन पानी की कमी को दूर करने का एक प्रभावी और सरल उपाय है। बारिश के जलों को छत, गड्ढों और विशेष जलाशयों में इकट्ठा करके भूमिगत जल स्तर को सुधारा जा सकता है और ऐसा करके ही पानी की कमी से बचा जा सकता है। हम ऐसा करें, इससे न केवल गर्मियों में पानी की किल्लत से दूर होगा बल्कि सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं से भी निपट सकते हैं। पानी की एक एक बूंद को सहेजना हमारे भविष्य को सुरक्षित करने जैसा है और फिर हम भी आनंद

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक

0: या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में श्रोता साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता मित्रों, पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन मंडल यानी ESBA ने पुलिस सब इंस्पेक्टर SI और सूबेदार भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 507 पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू होकर 23 सितंबर तक चलेगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 28 सितंबर तक संशोधन कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा 28 अक्टूबर से 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। भर्ती में सबसे अधिक 312 पद उपनिरीक्षक के निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 81 पद सूबेदार और 69 पद उपनिरीक्षक के आरक्षित हैं। शेष पद आर्म्स, फोटो, फिंगरप्रिंट सहित अन्य तकनीकी शाखाओं के लिए निर्धारित की गए हैं। श्रोता साथियों, आज विश्व नारियल दिवस है। यह हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नारियल के महत्व, इसके गुण और आर्थिक उपयोगिता के बारे में जागरूकता फैलाना है। नारियल को कल्प वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसका हर हिस्सा उपयोगी होता है। नारियल पानी स्वास्थ्यवर्धक पेय है जो शरीर को हाइड्रेट करता है और प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करता है। नारियल का तेल त्वचा और बालों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नारियल की जटा, पत्ते और छिलके से अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। नारियल किसानों के लिए आय का मुख्य साधन भी है। विश्व नारियल दिवस कृषि क्षेत्र में इसके महत्व और पर्यावरणीय संतुलन को समझाने का एक अवसर प्रदान करता है। आज के दिन कई कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग नारियल उत्पादन को बढ़ावा दें और इसके बहुपयोगी स्वरूप से लाभान्वित हो सकें। इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ने इस वर्ष विश्व नारियल दिवस की थीम रखी है, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश। नारियल स्वास्थ्य के लिए बेहतर, आपके दिल के लिए अच्छा है। साथ ही वजन में ये नियंत्रण रखता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, हमें संक्रमण से बचाता है, पाचन में सुधार करता है और बालों और ऊर्जा के स्तर में विकास देता है। हड्डियों के लिए ये बेहतर है, साथ ही ये हाइड्रेशन रक्तचाप को कम करता है। सिरदर्द के इलाज में भी नारियल का तेल राहत देता है। नारियल सचमुच में प्रकृति का अमूल्य उपहार है।

श्रोता मित्रों, स्नातक की पढ़ाई के दौरान यदि आप एक या दो विषय में असफल होते हैं तो अब ये आपकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई परीक्षा स्कीम लागू की गई है। इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। अब सेमेस्टर परीक्षा स्कीम की तर्ज पर वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी पूरक विषय को कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। इसके साथ ही अगली कक्षा की पढ़ाई भी

जारी रहेगी। पूरक होने के बावजूद विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में पूरक आने के बाद विद्यार्थी को पहले संबंधित विषय क्लियर करना होता है। पूरक परीक्षा के लिए उसे अगले सत्र की मुख्य परीक्षा का इंतजार करना पड़ता है। पूरक विषय में पास करने के बाद ही वो अगली कक्षा में पढ़ाई के लिए पात्र माना जाता है। इस नई व्यवस्था में प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब विद्यार्थी पूरक विषय के साथ अगली कक्षा की पढ़ाई भी जारी रख सकेगा। श्रोता साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी इस समय राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं। ये 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक जागरूकता अभियान है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, सही पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में सचेत करना है, जागरूक करना है। भारत में खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा साल 1982 में शुरू किया गया था। ये सप्ताह हमें सिखाता है कि केवल पेट भरना जरूरी नहीं है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और अन्य तत्वों का सही संतुलन होना आवश्यक है। कुपोषण से लड़ने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। संतुलित और अच्छा पोषण हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। उचित पोषण शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे हम बीमार न हों और संक्रमणों से लड़ पाएं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व हमारे शरीर को दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन और अन्य खनिज ऊतकों की वृद्धि, विकास और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मदद के लिए बहुत जरूरी हैं। संतुलित आहार मस्तिष्क के कार्यों में सुधार करता है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति, एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक विकार का खतरा भी कम होता है। स्वस्थ खान पान को अक्सर जरूरत से ज्यादा जटिल बना दिया गया है। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहे डाइट ट्रेंड्स, स्वस्थ बताकर बेचे जाने वाले पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में विरोधाभासी सलाह के कारण ये समझना मुश्किल होता है कि संतुलित आहार वास्तव में कैसा होता है। यहाँ तक कि घर का बना खाना भी हमेशा पोषक तत्वों की सही मिश्रण प्रदान नहीं कर पाता, और अगर उसमें चावल या रोटी की मात्रा अधिक हो और प्रोटीन सब्जियां या आहार में विविधता बहुत कम हो। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारतीय परिवारों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले भोजन विकल्पों पर गहराई से विचार करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस सप्ताह का उद्देश्य परिचित खाद्य पदार्थों को अच्छा या बुरा करार देना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि आम जनमानस खान पान की आदतों में कहां बदलाव कर सकता है और कैसे छोटे व्यावहारिक बदलाव भोजन को अधिक संतुलित बना सकते हैं। यह सप्ताह लोगों को केवल पर्याप्त भोजन करने से आगे बढ़कर यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या उनके दैनिक भोजन में पोषक तत्वों का सही संतुलन है। यह परिवारों को यह भी याद दिलाता है कि स्वस्थ भोजन के लिए महंगे खाद्य पदार्थों या जटिल भोजन योजनाओं की आवश्यकता नहीं होती। कुछ छोटे बदलाव जैसे कि अधिक सब्जियां खाना, प्रत्येक भोजन में प्रोटीन का स्रोत शामिल करना और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को सीमित करना समय के साथ बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। इस सप्ताह

उद्देश्य भोजन से कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह हटाना बिल्कुल भी नहीं है। संतुलित घरेलू भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब्जियां और स्वस्थ वसा का मिश्रण होना चाहिए, न कि किसी एक खाद्य समूह पर अत्यधिक निर्भरता। ये सप्ताह में खान पान के नए रुझानों में शरीर की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। संतुलित आहार का अर्थ है हर दिन पूरी तरह से सही खाना खाना, ऐसी आदतें विकसित करना जो व्यावहारिक, विविध और आपकी उम्र, जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

और श्रोता मित्रों, अब चलते चलते बस आपसे एक ही गुजारिश। आज विश्व नारियल दिवस है और हम सभी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मना रहे हैं, तो क्यों ना नारियल के कुछ व्यंजन अपनी रसोई घर में हम बनाएं और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को सेलिब्रेट करें। इसी उम्मीद और आशा के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर को यही विराम देने की अरुणा को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार अजीत सिंह पेंटल का राग विलास खानी तोड़ी में शास्त्रीय गायन। तबला संगत है भोगी राम रतौनिया की, हारमोनियम संगत महेश दत्त पांडे की।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे अजीत सिंह पेंटल। आपने सुना राग विलास खानी तोड़ी में शास्त्रीय गायन। तबला संगत थी भोगीराम रतौनिया की। हारमोनियम पर थे महेश दत्त पांडे और सारंगी संगत उस्ताद बशीर खां। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार जन संवाद और समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान की शुरुआत 7 अगस्त को पनागर से हुई थी। इस दौरान श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, विधायक सुशील कुमार तिवारी इंदु, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय मौजूद रहे। अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। जिले को अलग अलग क्लस्टरों में बांटकर 5 विशेष प्रशासनिक दल बनाए गए हैं। जिले में बारिश की रफ्तार फिलहाल धीमी हुई है। हालांकि अगले 2 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। नर्मदा नदी का जलस्तर भी अब घट रहा है। बरगी बांध के सभी 13 गेट 28 अगस्त को बंद कर दिए गए थे। ग्वारी घाट और तिलवारा घाट सहित नर्मदा के घाटों पर भी स्थिति सामान्य हो रही है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जबलपुर को बड़ी सौगात मिली है। 27 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाहन निर्माणी जबलपुर में 472 करोड़ रुपए की लागत वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट में T-72, T-90 टैंकों की मरम्मत और आधुनिकीकरण किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता को लेकर भी जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। मिलावट, कम नापतौल और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए राजस्व, खाद्य, नापतौल विभाग और तेल कंपनियों के अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें पेट्रोल पंपों पर अचानक पहुंचकर जांच कर रही हैं। रांची के पनेहरा स्थित एक पेट्रोल पंप की 3 डिस्पेंसिंग नोजल सील की गई हैं। न्यायिक व्यवस्था में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी जबलपुर में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उच्च न्यायालय में नए आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और लिफ्ट क्रमांक 5 का लोकार्पण कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रुशिया ने किया। आधुनिक न्यायिक तकनीक से न्याय तक पहुंच को सरल, तेज और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डुमना नेचर पार्क से कैच द रेन अभियान के तहत 11 लाख पौधरोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। डुमना, उमरिया और कठौंदा में मियावाकी तकनीक से पौधरोपण के साथ सोकपिट निर्माण अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी जिले में तेजी से काम जारी है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 30,538 आवासों में से 16,901 आवास पूरे हो चुके हैं। जिले ने 56.50% लक्ष्य हासिल कर लिया है। युवाओं के कौशल विकास पर भी जिले में विशेष जोर दिया जा रहा है। शासकीय आईटीआई में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शुरू किया गया है। पहले चरण में 30 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें ड्रोन संचालन, उड़ान, सुरक्षा, सर्वेक्षण और तकनीक उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं पीएम श्री एमएलबी स्कूल में पर्यटन क्विज 2026 प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें जिले के 303 शासकीय और निजी स्कूलों के 909 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े सवाल पूछे गए। जबलपुर की महाकौशली गाय को देश की 57वीं पंजीकृत देसी गौवंश नस्ल के रूप में पहचान मिली है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में वर्ष 2018 से 2022 तक इस पर शोध किया गया था। आईसीएआर राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संशाधन ब्यूरो करनाल ने इसे पंजीकृत देसी नस्ल के रूप में मंजूरी दी। दूसरी ओर जिला पंचायत परिसर में जिले का पहला दीदी कैफे शुरू करने की तैयारी है। स्वसहायता समूह की महिलाओं को कैफे के प्रबंधन, बिक्री और संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैफे में महिलाएं भोजन बनाने से लेकर

0: पूरे संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। जबलपुर से कोलकाता के बीच सीधी हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। 8 अगस्त को पहली उड़ान डुमना विमानतल पहुंची। विमान का वाटर कैनन सलामी के साथ स्वागत किया गया। पहली उड़ान से 17 यात्री जबलपुर पहुंचे, जबकि 28 यात्री कोलकाता के लिए रवाना हुए। वहीं जिले की 56 वर्षीय पर्वतारोही सुनीता सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लाहौल स्पीति में लगभग 21,000 फीट यानी 6,111 मीटर ऊंचे माउंट यूनाम पर तिरंगा और भारतीय स्टेट बैंक का झंडा फहराया। इसी के साथ जबलपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। शहर के राधा कृष्ण मंदिरों को सजाया जा रहा है। सामूहिक रूप से भव्य शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 10:05:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं फिल्म ओम जय जगदीश का ये गीत। अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में। गीत समीर का है, धुन तैयार की है अनु मलिक ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने।

गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश और युद्धव कड़वासरा, कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी गीत को सुनना चाहा है मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और घर के सभी सदस्य। बघेरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। और गांव खारिया ढाणी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया। आप सब सुनिए फिल्म ओम जय जगदीश का गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में।

इस समय श्रोता सुन रहे हैं फिल्म जब किसी से प्यार होता का ये गीत। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, धुन तैयार की है जतिन ललित ने।

फिल्म जब प्यार किसी से होता है के इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोता साथियों ने। रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा। इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया था गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। कंवर कॉलोनी बड़वाह खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित

आहूजा। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का अगला गीत, आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म पापा कहते हैं से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, धुन तैयार की है राजेश रोशन ने। जमशेदपुर झारखंड से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा, ग्राम महेशवाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े। इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत ने। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, आरजू और गुड्डू। और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सब सुनिए फिल्म पापा कहते हैं का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में फिल्म चलते चलते का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने, धुन तैयार की थी जतिन ललित ने, पसंद किया था आप सभी श्रोता साथियों ने। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा और निशा मिश्रा। लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे, समीर खांडे और शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक जारी है।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
1: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गीत अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत से सवारा था जतिन ललित ने। पसंद किया था आप सभी श्रोता साथियों ने। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और संजय कटारे। साथ में भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म क्रिमिनल का गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत निर्देशन है MM क्रीम का। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। सावर रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और शमशुल कमर राही। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीतीश सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। रोहिदास चौक पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि और कृष्णा खोड़के। आप सब सुनिए फिल्म क्रिमिनल का गीत अलका याग्निक की आवाज़ में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म वांटेड का गीत, श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, रजन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा। इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिद शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। रामदेवरा से दिनेश चौहान और भोपालगढ़, राजस्थान से धर्मेंद्र छिब्बा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा और रॉबिन राणा और आदर्श नगर बलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। आप सब सुनिए श्रेया घोषाल और शान को फिल्म वांटेड में।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में फिल्म लकी। इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, बोल है समीर के, संगीत निर्देशन है अदनान सामी का। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक और महेश मलिक। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार, और पटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी, तानिया,

डाबकी रोड अकोला से इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर ने। और राम संदलपुर आंत्री से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी यादव। आप सब सुनिए फिल्म लकी का ये गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म लकी इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्य को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेगा और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में उत्कृष्ट किसानों, जिला सहकारी बैंकों और पैक्स संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान वे किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं श्योपुर में आयोजित बलराम महोत्सव को मुख्यमंत्री डॉ. यादव वर्चुअली संबोधित करेंगे। कृषकों के आराध्य शक्ति परिश्रम के प्रतीक भगवान श्री बलराम जी की जयंती और पावन पर्व हलछट के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर पांचवां भारतीय विमान आज रवाना हो गया। विदेश मंत्री ने बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक आवश्यक दवाएं हैं। भोपाल में वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर कल आयोजित कार्यक्रम में 43 अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ वंदे मातरम की थीम पर संगीत प्रस्तुति, 200 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक गायन और 150 से अधिक छात्राओं ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। इन तीनों उपलब्धियों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, वहीं उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय T20 टीम का हिस्सा हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुनें।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। स्वागत वंदन और अभिनंदन के साथ स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। यादें वो परछाइयां हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती। बदल जाते हैं लोग मगर यादें कभी मुंह नहीं मोड़ती। खामोशी में भी करती हैं बातें, रूठ कर रिश्ता नहीं तोड़ती। वक्त भले ही आगे बढ़ जाए यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर हमें आपकी याद आ गई है तो हम हाजिर हैं आपके लिए आज का फोन इन प्रोग्राम लेकर। फोन करें गीत सुने, आइए जुड़ते हैं हमारे सबसे पहले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महुआ, उत्तर प्रदेश से।
0: जी जी स्वागत है हमारा हमारे आज के कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया। आप कैसी हैं? प्रियंका मैम बोल रहे हैं क्या?
0: अरे क्या बात है, आपने हमें पहचान लिया। बिल्कुल, हम आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका बात कर रहे हैं।
1: आप कैसी हैं मैम?
0: हम बहुत अच्छे हैं। रक्षाबंधन का पर्व हमने मनाया और अब आगे जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम रहेगा राज, आपके प्यार में हम समाने लगे।
0: जी चलिए, अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। मौसम कैसा है वहाँ का?
1: जी अभी हम झिमझिम बारिश हो रही है, गिर रही है बिल्कुल मामूली। वैसे 4-6 दिन से अच्छा मौसम है, नहीं तो रोज थोड़ी बहुत गिर जाता है जी।
0: चलिए तो ऐसा होता रहना चाहिए ताकि हम भी तरोताजा होते रहे।
1: जी आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
0: धन्यवाद, हमारी भी यही आपके लिए शुभकामनाएं और हमारे सभी श्रोताओं के लिए। आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हाँ जी, फोन करेंगे इतने।
0: जी। हाँ, फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम ही, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। क्या आप नेटवर्क में नहीं हैं?
1: हाँ मैडम,
0: थोड़ा सा आप ज़ोर से भी बोलेंगे तो हमें अच्छी तरह से सुनाई देगा। बताइए, आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जिला नासरकोट तहसील गाटरवारा ग्राम पलोहा बड़ा समुन्ना के बट बोल रहे हैं मैडम जी।
0: अच्छा जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहते हैं?
1: तो मिलन फिल्म पसंद ना मैडम जी, सावन का महीना पवन कर शोर।
0: अच्छा, अभी भी आपका सावन का महीना चल रहा है ना?
1: अरे मैडम जी, हमने 4 महीना होगा फोन लगा मगर उठो नहीं है, तो हम गाना जो सावन के महीना से सोच रहे थे। जी
0: हाँ, करते करते भादो आ गया।
1: हाँ,
0: हाँ
1: भादो भादो लग गया मगर चिंता यही है।
0: चलिए, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये है कि जब दिल खुश होता है तो हर दिन सावन होता है। नमस्कार।
2: जी।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैम। नमस्कार जी, क्या बात है भाई, बहुत दिनों के बाद लग गया मेरा कॉल मध्य प्रदेश प्रसारण के इस प्रोग्राम में।
0: जी, कार्यक्रम आज है, फोन करे गीत सुने। तो बताइए,
1: फोन
0: आज
1: करे
0: आप कौन
1: गीत
0: सी
1: सुने
0: फरमाइश
1: गीत
0: सुनेंगे? लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना परिचयात्मक नाम मिल जा
1: जी,
0: बताइए।
1: बिल्कुल, मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ। मेरे गांव का नाम है रामनगर, तहसील बमोरी, जिला गुना, मध्य प्रदेश। और फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, मैं ग्रीन सिटी क्लीन सिटी इंदौर मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात
1: और मैं
0: है।
1: जी, आपका शुभ नाम मैम?
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, आपकी रेडियो
1: जी
0: संगीनी।
1: जी आपको मेरी तरफ से प्रणाम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी हमारी तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं को इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, कौन सा गीत आपके लिए आज हम सुनवाएं?
1: बिल्कुल, देखिए त्योहारों का सीजन चालू है और अभी हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं, तो यही भजन मुझे सुनना है। यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है।

0: संजोग फिल्म का।
1: जी बिल्कुल, संजोग फिल्म का ये गीत है और बड़ा ही अच्छा गीत है।
0: जी, एक तरह से देखा जाए तो लोरी है, हर माँ अपने बच्चे को ये सुनाती ही है। तो नरेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जब आप
1: और
0: अपने
1: मैम अभी यानी कि ये मान के चलिए 2017 के बाद, हाँ 17 के बाद मैं अभी भोपाल आया था, तो अभी मैंने देखा भोपाल में काफी बदलाव हुआ है और बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे इंदौर में जिस तरह से स्वच्छता को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उस तरह से मैंने देखा कि भोपाल में भी काफी विकास हुआ है और वहाँ भी बहुत साफ सफाई मुझे दिखी।
0: जी शुक्रिया, यही तो है जागरूकता अभियान का परिणाम,
1: बिल्कुल।
0: है ना?
1: और जितने भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए भी यही कहूंगा मैं भाई, इंदौर को देखकर इंदौर में एक बार जरूर आए आप और विजिट करें। यहाँ देखें कि इंदौर हमेशा स्वच्छता में नंबर वन रहता है, ये केवल आंकड़े ही नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप देखने को मिल जाएगा।
0: जी जी हमारे श्रोता से संपर्क टूट गया है, बहरहाल कोई बात नहीं, हमें उनकी फरमाइश तो मिल ही चुकी है। नरेश जी, आपके लिए ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी, नमस्कार मैम।
0: जी कौन बात कर रहे हैं और आप कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए।
1: मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी विपिन जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: हाँ जी मैम, हम बढ़िया हैं, अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोता अच्छे होते हैं तो हम तो वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम है पापा कहते हैं और इसी फिल्म में एक गीत है पहले प्यार का पहला गम, कविता कृष्ण मूर्ति जी ने गाया है।
0: जी जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा गीत है, बड़ा सुकून भरा गीत है ये,
1: जी बिल्कुल,
0: है
1: और
0: ना?
1: इस गाने के स्वर है वो मध्यम है, मतलब आराम आराम से गाते हैं, गाना भी अच्छा लगता है और अंतरे इस गाने की मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी, तो चलिए आप एंजॉय कीजिए अपना ये मनपसंद गीत अपने रेडियो सेट पर।
1: जी शुक्रिया, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: जी, नमस्कार।
0: बताइए कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: जी मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: अच्छा, राम बाबू जी कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और हमारे परिवार वाले भी, बच्चे बच्चे, हमारे मम्मी, भैया, भाभी, हमारा संपूर्ण परिवार बहुत बढ़िया है। और आप सुनाइए, आप कैसे हो मैम,
0: हम
1: और
0: अच्छे
1: आकाशवाणी
0: हैं,
1: परिवार कैसा है?
0: बहुत अच्छा है। आकाशवाणी परिवार भी बिल्कुल आपके परिवार की तरह बहुत अच्छा है, खुशहाल है। आपकी दुआएं
1: बिल्कुल
0: हैं, ईश्वर की कृपा है ना। और
1: बिल्कुल,
0: आप
1: हमेशा
0: पर
1: खुशहाल बनाए रहे भगवान सभी के ऊपर। हम तो
0: जी
1: ये चाहते हैं सब खुश रहे, आनंद में रहे, मंगल में रहे, और हमारी आकाशवाणी को हमेशा सुनते रहे।
0: बिल्कुल, हम भी यही कह रहे थे कि ये ईश्वर की
1: जी
0: कृपा आपके परिवार पर जैसी है वैसी सब पर बनी रहे। राम बाबू जी,
1: जी
0: कौन सा गीत आज आपने पसंद किया है सुनने के लिए?
1: जय संतोषी माता का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए।
0: तो आपकी पसंद पर ये गीत, ये नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते मैम,
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं बताइए।
1: मैं नैन्सी बोल रही हूँ,
0: नेन्सी, कहाँ से बात कर रही हो,
1: विदिशा से। मैं
0: कैसी हो आप और क्या करती हो,
1: स्टडी करती हूँ
0: कौन सी क्लास में।
1: अभी 10th।
0: चलिए तो इस बार बोर्ड से आपके हमारी शुभकामनाएं, आपके लिए अच्छी मेहनत करिए
1: थैंक
0: और अच्छा परिणाम अपने आप के लिए और अपने माता पिता को लाकर दीजिए।
1: यू। आप कौन बोल रही हैं?
0: जी मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, आपकी अपनी रेडियो संगिनी।
1: ओके।
0: जी नेंसी जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप बताइए।
1: मूवी का नाम है डिसोम।
0: वरुण धवन की।
1: यस।
0: हाँ, इसका कौन सा गीत सुनेंगे।
1: एक सॉन्ग है 100 तरह।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो नैन्सी आप अगर स्कूल जाएंगे तो अपना गीत कैसे सुनेंगे, और आज कैसे फोन लगाया, इस वक्त स्कूल नहीं है आपका।
1: अभी मैं घर पे हूँ,
0: घर।
1: प्रोग्राम चल रहा है तो मैं सोचा आज सुन लें।
0: अच्छा, तो आज छुट्टी क्यों ली स्कूल से।
1: आज से ही मन कर रहा था, बारिश बारिश होती है।
0: अच्छा, और कल फिर गीत किसे सुनाएंगे आप अगर स्कूल जाएंगे तो।
1: फिर देखेंगे कोई ना कोई रीजन, मतलब देखेंगे, प्रोग्राम नहीं सुन पाएंगे तो कोई बात नहीं।
0: अच्छा ठीक है, तो आप हमारे श्रोताओं के लिए तो आपने दे ही दी फरमाइश अपनी, है ना। चलिए शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते जी। जी नमस्ते
0: जी। कौन बात कर रहे हैं बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सुरंगपाल सिंह गुर्जर ग्राम बाबूपुरा तहसील खोल जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आसपास बच्चों की वक्त बच्चों का शोर भी बहुत आ रहा है, क्या बात है, घर में चहल पहल है?
1: विद्यालय में हूँ इसलिए।
0: अच्छा विद्यालय में है आप? हाँ हाँ। तो
1: इस लंच चल रहा है तो।
0: अच्छा इसीलिए इतना शोर शराबा चल रहा है, बच्चे खाते हुए लंच करते हुए मस्ती कर रहे हैं और आप उनका ध्यान रख रहे हैं।
1: जी
0: जी। कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप विद्यालय में?
1: हिंदी पढ़ाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे क्रांति का सुना दीजिए।
0: कौन सा गीत? क्रांति फिल्म का?
1: कोई भी सुना दीजिए। अच्छा सभी अच्छे हो तुम?
0: सभी अच्छे हैं। ठीक है तो हम
1: आपकी बरस जरा बरखा की रानी भर देंगे ये सुनवा।
0: ये गीत आपके लिए आपके रेडियो सेट पर। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: हेलो
1: जी नमस्ते,
0: नमस्ते।
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी उज्जैन से बात कर रहे हैं प्रेम सिंह जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं?
1: जी थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोताओं के साथ हम कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम सुनते भी हैं और उन्हें सुनवाते भी हैं, तो यही
1: जी
0: हमें
1: सर,
0: बहुत अच्छा
1: मोबाइल ऐप पर
0: लगता है।
1: कार्यक्रम सुनते हैं, बड़ा अच्छा कार्यक्रम पेश करते हैं आप।
0: धन्यवाद धन्यवाद। तो आप उज्जैन केंद्र सुनते हैं या उज्जैन से भोपाल केंद्र सुनते हैं?
1: उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ऐसे भी मोबाइल ऐप पर आते हैं ना कार्यक्रम, तो
0: जी जी
1: बताऊँ आपको, मैं लगभग 30 आकाशवाणी केंद्र सुनता हूँ।
0: ओहो, क्या बात है,
1: जी
0: इतना लगाव है आपको रेडियो से।
1: हाँ जी बिल्कुल, और
0: हाँ हाँ
1: मैं अपना जो कॉल का रिकॉर्ड होता है ना,
0: जी जी
1: वो अपने एक डायरी में भी मेंटेन बना रखा है। 1 जनवरी 2026 से अभी तक मेरे 1200 कॉल हो चुके हैं।
0: हर 30 केंद्र मिलाकर।
1: हाँ जी बिल्कुल, हर 30 केंद्र मिला के,
0: चलिए बहुत
1: उसमें
0: अच्छी
1: कुछ
0: बात
1: प्रोग्राम
0: है।
1: लाइव भी आते हैं और कुछ रिकॉर्डेड भी होते हैं। जब मैं फोन लगाता हूँ, कॉल शामिल हो जाता है और रिकॉर्डिंग शामिल हो जाती है, तो उसको एंट्री कर लेता हूँ।
0: उसकी एंट्री कर लेते हैं, तो यानी आपने अच्छा
1: जी
0: खासा बही खाता बनाया हुआ है अपने फोन कॉल्स का।
1: 2000 कॉल लगाने का एक लक्ष्य रखा हुआ है।
0: अच्छा, 2000 का रखा है और अभी 1600 हुए हैं, 400
1: नहीं,
0: और बचे।
1: 1200 भी, 1200
0: अच्छा,
1: भी,
0: 1200 हुए हैं। चाहिए,
1: हाँ
0: ठीक। तो हम चाहते हैं कि आपका ये लक्ष्य आप ज़रूर प्राप्त करें। और
1: जी।
0: इस वक्त कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे, बताइए।
1: आप सुनवा दीजिएगा, फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो और गाने के बोले आज उनसे मिलना है हमें। और ये छोटी लड़की है साक्षी, जो 5वीं कक्षा में पढ़ाई करती है, ये भी आपसे बात करना चाहती है,
0: बिल्कुल
1: आज
0: बिल्कुल,
1: कैसे हैं ये।
0: करवाइए।
2: हेलो
0: हेलो, कैसी हो आप?
2: जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो मैम।
0: हम भी अच्छे हैं। साक्षी, आपने 5वीं क्लास में आप पढ़ती हो,
2: जी मैम,
0: तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ती हो या हिंदी माध्यम में?
2: हिंदी माध्यम में।
0: हिंदी माध्यम में। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगा हमें ये सुनकर कि बच्चा मतलब आप जो है हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं। और आपका पसंदीदा विषय कौन सा है, बताइए। इंग्लिश अच्छा लगता है, क्या बात है, हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं और इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है आपको। और मैथ्स से डर लगता है, गणित से?
2: जी लगता है तो है सर।
0: सॉल्व कर लेते हैं समझ कर।
2: हाँ
0: हाँ, तो साक्षी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अच्छी पढ़ाई कीजिए और खूब नाम रोशन कीजिए अपने मम्मी पापा का।
2: जी मैम, और मेरी एक बड़ी दीदी भी है और एक भैया भी।
0: अच्छा, तो आपको दीदी भैया का अच्छा गाइडेंस मिल जाता है ना?
2: जी
0: चले, तो सबको हमारा नमस्कार कहिएगा और पापा की पसंद पर सुनिए ये गीत। नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: दीदी बहुत बढ़िया, और फोन लग गया तो बहुत बढ़िया हो गया।
0: और भी अच्छे हो गए, फोन लग गया तो। अब ये भी बता दीजिए कि हमारी बात किन से हो रही है?
1: जी मैं जगत सिंह चड़ार ग्राम तहसील बेगौन जिला रायसेन से बोल रहा हूँ। जी जगत सिंह चड़ार।
0: जी, जगत सिंह जी, स्वागत है। आज कौन सा गीत पसंद किया है आपने सुनने के लिए और सुनवाने के लिए?
1: मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज में गाना है, गाना के बोल हैंगे, चांद और तारे दिन और रात।
0: चलिए ठीक है,
1: या
0: नमस्कार।
1: प्रियंका मैडम जी बोल रही।
0: हाँ जी, प्रियंका मैडम बोल रहे हैं। पहचान लिया
1: जी
0: आपने
1: जी
0: हमें,
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी पहचान लाई मैंने।
0: हाँ जी, चलिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

श्रोताओं, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कभी हंसी की बारिश है तो कभी आंसुओं का समंदर है, जिंदगी

0: का हर एक पल किसी इम्तिहान का मंजर है। कभी सपनों के फूल खिले हैं तो कभी रेगिस्तान भी बंजर है, पर थकना नहीं ए मुसाफिर, ये जिंदगी अवसरों का समंदर है। अब दीजिए अनुमति आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका को आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, अगली मुलाकात तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और नेक गतिविधियों में व्यस्त रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति प्रियंका माहेश्वरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
6: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस महीने के अंत में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत इस साल ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संगठन के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमेरिका के अश्विले में G20 बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की भूमिका पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपलब्धियां प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में उत्कृष्ट किसानों, जिला सहकारी बैंकों और पैक्स संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान वे किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषि कवच योजना का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं शिवपुर में आयोजित बलराम महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करेंगे। किसानों के आराध्य शक्ति और परिश्रम के प्रतीक भगवान श्री बलराम जी की जयंती और पावन पर्व हलषष्ठी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बलराम कृषि महोत्सव प्रदेश के अन्नदाता किसानों के सम्मान, सशक्तिकरण और समृद्धि का उत्सव है। और क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में T20 सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 15 सितंबर और तीसरा और अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम पत्रों का है, इसमें आप हमें अपनी पसंद के गीत बताते हैं पत्रों के माध्यम से। पहला गीत सुनेंगे फिल्म कभी कभी से। आवाज़ें लता मंगेशकर किशोर कुमार की हैं, गीतकार साहिर हैं, संगीतकार खयाम। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है नेपाल पैलेस सागर से। श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से हैं। MM राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। स्वर बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और साथियों के हैं। गीत लिखा अनवर खालिद ने, संगीतकार हैं बिद्दू। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से। श्रोता हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से हैं दुर्गाराम साहू। अगले श्रोता सिंहपुर बड़ा से हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म उमराव जान से। गीतकार हैं शहरयार, संगीतकार हैं खयाम। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है ननोरा महोबा उत्तर प्रदेश से। श्रोता हैं बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी, आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा। अगले श्रोता भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश मराठा, कार्तिक मराठा, संजना, ललिता नारायण। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनेंगे फिल्म रंगीला से। इस गीत को सुरों से सजाया है आशा भोसले और आदित्य नारायण ने। गीत लिखा महबूब ने, संगीतकार हैं A.R. रहमान। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से। श्रोता हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। अगले श्रोता दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अनिला मिर्ज़ा और उहलमान की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म ब्लफ मास्टर से। गीत लिखा आरपी भट्ट, अर्श उहलमान और अनिला ने, संगीतकार हैं विशाल शेखर। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है पजोनिया जलौन उत्तर प्रदेश से। श्रोता है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। अगले श्रोता डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबिये। अगले श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जतेक बीरक और मीका बीरक। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का 15वां भाग।

0: जमुनिया, आदमी के जीवन में सबसे अच्छी उम्र यही होती है।
1: सच्ची बात कही, खाओ पियो खेलो मस्त रहो, न रोटी की चिंता न इलेक्शन की।
0: हाँ, और इलेक्शन की चिंता तो आपको ही सबसे ज्यादा है, बाकी लोग तो मजे में देखो कैसे कबड्डी खेल रहे हैं। चलो हम, मैं कमरे में चलता हूँ, आगे आप संभालो।
1: ठीक है जयंत जी, आप जाइए, मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। ठीक
2: का जमुनिया दीदी?
1: कल
2: का होने वाला है?
1: कल का होने वाला है ये तो तुम हमसे बेहतर जानते हो भैया, हम का बता सकते हैं। अरे मेघा दीदी
3: आगे नहीं आया क्या?
1: आराम करने गए हैं अभी घर पर।
3: शिल्पी और जमुनिया, देखो आज हमें अलग अलग घरों में जाकर अलग अलग समझाना होगा, कौन किसको वोट दे, है ना? इस तरह हम एक साथ तीन तीन लोगों को समझा पाएंगे।
4: हाँ,
3: है ना?
1: हाँ, बिल्कुल।
3: है ना, बढ़िया,
1: बिल्कुल।
3: अगर एक साथ निकले तो हमारा काम तिहाई हो जाएगा।
1: ठीक कह रही हो दीदी, ऐसा ही करते हैं।
5: देखो जमुनिया
1: जी,
5: ये तो इसी गांव के हैं, इन्हें सब जानते हैं और मेघा को लगभग सभी लोग पहचानते हैं। रही मेरी, मैं नई हूँ, सब मुझे जानते नहीं, तो मेरा अकेला जाना क्या ठीक रहेगा?
3: बिल्कुल ठीक रहेगा, ये इतना मुश्किल नहीं है शिल्पी, जितना तुम सोच रही हो।
5: कैसे?
3: देखो एक दो घर में जाओगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
5: अच्छा,
3: और फिर तुम्हारा असर लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। सोचो तो सही, लोगों को लगेगा कि एक बाहर की लड़की आकर जमुनिया का साथ दे रही है।
5: अच्छा,
3: तो उन्होंने भी उसका साथ देना ही चाहिए, है हाँ, ना बढ़िया।
5: हाँ, हाँ, ये ठीक है, तो चलो कोशिश करती हूँ, अगर बात नहीं बनती तो फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी।
1: ठीक है, तो फिर हम लोग अलग अलग होकर अलग अलग घरों में जाते हैं।
5: हाँ, ये ठीक रहेगा,
1: चलिए
3: चलिए।
5: हाँ, मेघा। हाँ।
6: क्या है, कौन हो, कहाँ से आई हो?
5: हम शहर से आए हैं, वो यहाँ की लड़की मेघा।
6: अच्छा, वो
5: उसके दोस्त हैं।
6: रामधनेश की बिटिया तो नहीं मेघा?
5: हाँ हाँ, वही मेघा।
6: अच्छा अच्छा, हाँ तो।
5: और प्रचार करने निकले हैं।
6: किसका?
5: अरे जमुनिया के पक्ष में, इस बार उसे ही मौका दीजिए, और अब ज्यादा सोचिए मत। और हाँ, याद रखिए, आज की रात अपने आदमी को शराब से बचा कर रखना।
7: अच्छा अच्छा, वो तुम ही हो?
5: हाँ।
7: जो मेघा दीदी के साथ जमुनिया का प्रचार कर रही हो?
5: हाँ।
7: अरे हम तो पहले से ही सोच के बैठे हैं कि जमुनिया बहन को जिताना है।
5: अच्छा,
7: इसीलिए अगर चाहो तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। और सुनो, हमें सब पता है
5: क्या?
7: कौन कौन लोग दीवान के हैं या दीवान को वोट देना चाहते हैं। हाँ।
5: अच्छा,
6: अपन सीधे वहीं चलते हैं।
7: हाँ।
6: अच्छा, पानी वानी लोगी? तुम्हारे होठ तो सूखे हुए दिख रहे हैं।
5: हाँ, प्यास तो बहुत लगी है।
6: ए सीला।
8: हाँ माँ।
6: हाँ, पानी लिया बिटिया?
8: नहीं अम्मा।
6: हाँ, चलो एक मिनट। हाँ। रुको, है ये जल पानी ला रही है ना। हाँ दे बिटिया, लो पानी पी लो।
5: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, बड़ी प्यास लगी थी।
6: हाँ, हाँ,
5: अच्छा लगा।
6: एक मिनट रुको बहन, बस घर में ताला लगा लो, है ना। हाँ
7: चलो, अच्छा, चलो चलो जल्दी करो। हाँ, जल्दी।
6: हाँ, रुको तो, हाँ, रुको तो लग रहा है। हाँ, बस चलो,
7: आ जा,
5: चलो,
7: आ जा,
5: चलो,
7: आ जा,
5: चलो, चलो,
1: चलो। दीदी लाज रखना, बाकी तुमसे का कहे, तुम तो खुद समझदार हो।

0: लाज की कोनो बात नहीं है। अरे तुमको वोट देकर तो हम खुद को ही वोट देंगे, और यही नहीं बल्कि इस गांव में नया राज भी लेकर आएंगे।
1: पक्का?
0: हाँ पक्का।
1: तो फिर चलो करते हैं बात।
0: हाँ हाँ चलो बहन चलते हैं। अरे रघु जरा घर देखना।
2: फिक्र मत करो।
0: बस अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
1: बहन तुम्हें तो पता ही होगा कि कल वोट पड़ने वाले हैं।
3: हाँ हाँ
1: सरपंची का चुनाव होने वाला है और मैं जमुनिया बहन के लिए आपका वोट मांगने आई हूँ। आप याद रखना।
3: हाँ हाँ दीदी।
1: वो दो वादे। एक वादा तो वो कि आज अपने आदमी को दारू मत पीने देना, और एक वादा वो कि कल वोट जमुनिया को देना।
3: मेघा दीदी आप तो इसी गांव की हो, हम भी इसी गांव के हैं। मैंने सोच ही रखा था वोट जमुनिया को ही दिया जाए, पर हमें जरा ये तो समझाओ कि जमुनिया को वोट देने से हमारा क्या फायदा होगा।
1: फायदा वो
3: तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि दीवान ने हमें कंबल दिए, धोती दी, हमारे आदमी को दारू भी बांटी। हमें जमुनिया से क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा होगा? जमुनिया हमारे लिए क्या कर सकती है दीदी?
1: देखो हमारी बात गौर से सुनो बहन, जो कुछ भी तुम्हें मिला है या दीवान ने दिया है उसकी जिंदगी बहुत थोड़ी है और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और जो जमुनिया करेगी या देगी वो तुम्हारे जीवन भर चलेगा।
3: ये तो आपने सही कहा दीदी, बिल्कुल सही कहा।
1: अच्छा चलती हूँ। हाँ राम राम। और हाँ याद रखना कल वोट पड़ना है, तो आज रात को दारू की बैठक में तुम्हारे आदमी को बुलावा है तो जाने मत देना, है ना?
3: समझ गई मेगा बहन, आप तो निश्चिंत रहो। वोट किसी के सामने तो पड़ता नहीं है।
1: हाँ।
3: इसलिए हमने किसको वोट दिया किसे पता।

0: रोको रोको रोको, अरे रोको भैया। कहा भैया,
1: कौन
0: कहा हो रहा है ये?
2: तुम्हें क्यों बताएं? तुम हो कौन?
1: और का?
2: और तुम तो इस गांव का वोटर भी नहीं हो
1: भैया।
0: भैया मैं वोटर तो नहीं हूँ, इसलिए वोट तो डालूंगा नहीं।
1: अच्छा,
0: पर मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, इसलिए जहाँ भी गलत काम होगा उसका विरोध करने का मुझे अधिकार है।
1: ये हो रहा है
0: और वो मैं जरूर करूंगा।
1: अरे क्या गलत काम हो रहा है यार जो आप रोकोगे?
3: समझ में नहीं आ रहा यार। अरे हम प्रचार कर रहे हैं भैया, हमारी मालकिन चुनाव की उम्मीदवार है।
1: और क्या?
3: और उसके लिए वोट मांगने निकले
1: तो मांगेंगे।
3: अरे इसलिए तो प्रचार करने निकले यार, इसमें कौन सी गलत बात होगी?
0: गलत ये है भैया, चुनाव से एक दिन पहले आप भोपू पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते।
3: हाँ,
0: चुपचाप लोगों से मिलकर अपनी बात कह सकते हो, लेकिन भोपू जुलूस पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। और हाँ, आपकी हम शिकायत भी कर सकते हैं।
1: करो, जा जा, जब तक वो लोग यहाँ आएंगे ना। हाँ को भैया,
3: और क्या,
1: अपना तो काम ही खत्म हो
3: जाएगा। चलो निकल लो यार, चलो
4: चलो,
3: वोट दो,
4: वोट दो,
5: वोट दो,
4: वोट दो।
0: गुरुजी, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने अनुभव किया है कि आप ज्यादातर चुप रहते हैं, लेकिन आपके भीतर बहुत अनुभव और ज्ञान है। लेकिन उसका इस गांव को, गांव वाले को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।
6: हाँ, तुम ठीक कहते हो जयंत, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मुझ में इतना उत्साह नहीं है कि मैं गांव के लोगों को

0: संठित करूं, उन्हें दीवान के सामने खड़ा कर सकूं। गांव की सारी तरक्की अकेले दीवान के चंगुल में फंसी हुई है।
1: मैं इस गांव में केवल थोड़े बहुत अनुभव के लिए आया था, पर यहां की स्थिति देखकर लगता है कि यहीं रह जाऊं। और हां, मेघा ने वैसे भी मुझे चुनौती दी थी कि जब तुम मेरे गांव चलोगे तो वापस आने का मन नहीं होगा। गुरुजी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कल के चुनाव में आप सक्रिय भूमिका निभाइए। हम दोनों वहां चलेंगे और देखेंगे कि वहां कोई गड़बड़ी ना हो, वोटिंग निष्पक्ष हो।
0: भाई तुम कहते हो जयंत, तो फिर मैं जरूर चलूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझ में भी एक नया जोश पैदा हो रहा है, जो जमुनिया के मार्फत लगता है साकार होगा और इस गांव की तकदीर बदलेगी।
1: हाँ गुरुजी, जरूर बदलेगी।
2: भाई, तुम दोनों कहाँ रहे आज दिन भर? पता है, मैं अकेली थी घर पर।
3: क्या बाबा, तुम भी नहीं थे? चिरैया अकेली थी घर पर?
2: हाँ।
4: नहीं नहीं नहीं जमुनिया, ऐसी कोई बात नहीं बिटिया। अरे हम खाना वाना बना कर निकले थे, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था ना, हमने सोचा हम भी तुम्हारे हक में लोगों को समझाएं, बस इसीलिए निकल गए थे। और लगता है कि इस बार दीवान तुम्ही से हारेगा। चलो चलो चलो, खाना खाते हैं, कल भी बहुत काम है बिटिया।
3: हाँ चलो।
5: क्यों भाई लोगों, कहाँ रिपोर्ट? अरे मालिक मालिक कहा कर रहे हो? चल तू सुना, तुझे कहा लगा थे
6: मालिक?
5: हाँ हाँ बोल।
6: मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
5: हट, आज तक समझ में आता रहा तुझे सब कुछ, और जब दीवान से फायदा उठाना होता है तब समझ में आता है, लेकिन जब उसे कुछ जानना होता है, उसके फायदे की बात होती है, तब तुम्हारी समझ में नहीं आता। तो छोड़ छोड़ तू।
7: मुझे तो हालात ठीक नहीं दिख रहा मालिक।
5: ससुर जब बोलेगा बुरा ही बोलेगा, हालात बुरे दिखाई दे रहे हैं। सुन ले कान खोलकर,
7: मालिक
5: अगर रिजल्ट बुरा रहा ना तो सबसे पहले तुझे ही निपटाऊंगा मैं।
7: रहम मालिक, रहम रहम।
5: चल रहम किया। अब सुन,
7: मालिक
5: मुझे भुग्गा चाहिए।
7: भुग्गा?
5: भुग्गा तुरंत, अभी इसी समय।
7: मालिक
5: हाँ, जा बुला के ला उसे।
7: अच्छा मालिक, अच्छा अबे बुला के ला तू।
5: हाँ बुला के ला। और हाँ कतवारू।
8: हाँ मालिक।
5: हाँ तुमसे ही कह रहे भैया।
8: जी मालिक जी।
5: आप फरमाओ
8: जी,
5: आपके पास कछू कोई संतोषजनक खबर है कि नहीं?
8: मालिक अब क्या बताऊं मैं आपको, देखा कि पूरे गांव में घर घर जाके उन लोगों ने सबको जाने का घुट्टी पिला दी। अरे कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है।
5: का?
8: वो हर जगह एक ही जवाब कि इतने साल सरपंच रह के तुम्हारे दीवान जी ने गांव के लिए क्या कर लिया।
5: हा?
8: और मालिक भाई तो हम चुप रह जाते हैं।
5: जवाब सर चुप। अरे तुम सबको ही चुप्पी की बीमारी लग गई है। हाँ अरे अरे तुम्हारे पास कहने को कुछ है ही नहीं। अरे हम होते ना तो सुबह से शाम तक बता देते कि हमने इस गांव के लिए क्या क्या किया है। अरे कल जब चुनाव है तो कम से कम इस रात सब लोग गांव में जाके फैल जाओ। कंबल दो, धोती दो, दारू दो, दारू
7: दारू मालिक।
5: हाँ, और जिसको जो जरूरत है वो दो से, पर वोट जरूर लो। समझ गए? और अगर किसी को इसमें से कुछ नहीं चाहिए तो उसको पैसा दो, खरीद दो सबको, पर वोट जरूर लो।
9: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ,
5: सुनो तुम लोग।
7: हाँ मालिक।

0: इसे मेरी गीदड़ भपकी मत समझना। अगर मालकिन चुनाव हार गई ना,
1: नहीं नहीं नहीं मालिक,
0: तो सचमुच इस गांव में मैं आग लगा दूंगा।
1: मालिक,
2: चल चल।
3: राम राम मालिक।
0: हाँ, भुग्गा आओ आओ, बैठो।
3: ठीक है मालिक।
0: आ सुनो तुम लोग, ये भुग्गा को छोड़कर जो बाकी लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो जाओ गांव में जाके फैल जाओ और लोगों को कल की जरूरत के हिसाब से वोट देने के लिए तैयार करो। समझ गए? चलो जाओ, सब चलो। गए सब, गए सब। हे भुग्गा।
3: जी मालिक।
0: सुन हमारी बात, हमने तुझे यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है।
3: वो का है मालिक?
0: सुन, तुम्हारी घरवाली शारदा तो रही नहीं।
3: जी मालिक।
0: है ना? और तुम्हारे पास कोई ज्यादा सामान भी नहीं है।
3: ओह मालिक।
0: तो सुनो, हम ये चाहते हैं कि अपना रहा सहा सामान निकाल कर अपनी चुपड़िया खाली कर दो।
3: आए मालिक।
0: वो इसलिए कि हम तुम्हारी चुपड़िया में आग लगाने वाले हैं।
3: अच्छा, रहम करो मालिक, क्या कर रहे हैं?
0: और जब थाना पुलिस आए तो तुझे बयान देना है कि ये आग लगाने वाला काम जमुनिया के लोगों ने किया हैगा।
3: ये कहा कह रहे मालिक?
0: हाँ, और जमुनिया के लोगों ने इसलिए आग लगाई तेरी झोपड़ी में क्योंकि तूने जमुनिया को वोट देने से इनकार कर दिया था।
3: ये का जुलम कर रहे हैं मालिक? हमार कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे हैं।
0: अरे शुक्र कर कि हम तेरे कंधा पर ही रख कर बंदूक चला रहे हैं। अरे नहीं तो हम तेरी छाती पर सीधे बंदूक चला देते।
3: मालिक
0: सुन, ये हमारा हुक्म है
3: मालिक। ठीक
0: है, हम तेरे से कोई राय मशवरा नहीं कर रहे हैं।
3: जी मालिक।
0: और तेरा घर हमने इसलिए चुना है क्योंकि तू गांव के बाहर रहता है। अरे उसमें हम आग लगाएंगे तो किसी और के घर के जलने का डर नहीं रहेगा।
3: ऐसा जुलम मत करो मालिक, ये क्यों कर रहे हैं आप? जब शारदा जचकी में थी मालिक, तो जमुनिया ने ही साथ दिया था।
0: अच्छा?
3: हाँ, मान लो यही बात अगर जमुनिया कहने लगे तो आप पर भी तो आएगी ना मालिक। हाँ मालिक।
0: हाँ,
3: अगर आप चाहें तो यही काम इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं।
0: का?
3: हाँ, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा मालिक।
0: अरे चुप कर, समझ गए हम सब कुछ।
3: जी मालिक।
0: जान गए तेरी असलियत भी। जा,
3: अगर
0: जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, जा।
3: मालिक, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। प्रणाम मालिक, प्रणाम।
0: गुस्ताखी तो तुझसे हो गई है भुक्का, और हम देखते हैं कि तुझे कैसे माफ करना है।

0: चमुनिया जी, लगता है थक गई हैं आप, थोड़ा आराम कर लीजिए।
1: थक तो आप गए हैं जयंत बाबू, चलिए पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं थोड़ी देर।
0: अच्छा भाई,
1: है ना,
0: हाँ भाई सही, चलो। हाँ भाई,

0: अच्छा लगा। पेड़ के नीचे की छांव की ठंड का मजा ही अलग है।
1: हाँ जयंत जी, एक दो दिन के लिए ऐसी ठंड अच्छी लगती है।
0: ऐसा क्यों कह रही हो? और कल के बारे में क्या सोच रही हो?
1: हमारी जिंदगी में काम का खाता बहुत बड़ा है जयंत बाबू, और आराम का कम। इसलिए पेड़ के सामने होते हुए भी हम छा नहीं पाते। और जो कल की बात है, तो चुनाव है, एक परीक्षा है, तो उसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही।
0: कोई घबराने की जरूरत नहीं है जमुनिया, और हाँ, कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। सब ठीक होगा, और टेंशन तो उन्हें होगा जो सरपंच थे, जिनकी सरपंची हो सकती है चली जाए। तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं।
1: जयंत जी, मैं इस तरह नहीं सोचती। मैं जब कुछ ठान लेती हूं ना, तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही मानती हूं।
0: वो ठीक है भाई, ठीक है, ये अंजाम पर कल ही पहुंचेगा। पर मैं तुमसे उस कल की बात नहीं कर रहा हूं जो कल चुनाव में आएगा।
1: फिर
0: मैं तो उस कल की बात कर रहा हूं जो आने वाले ढेर सारे कल है, और जिनसे तुम्हें जूझना होगा।
1: साफ साफ कहिए जयंत जी, हमें आपकी बात साफ समझ में आई नहीं।
0: देखो जमुनिया, रतन तो रही नहीं, चिरैया वो भी एक न एक दिन अपने आदमी के साथ चली जाएगी, और झुल्लन बाबा काफी उम्र के हो चले हैं, और फिर तुम अपने बारे में क्या सोचती हो?
1: अब आगे दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा एक बेटा भी है, उसे दीवान बंधुआ मजदूर बनाए बैठा है। उसको मैं जीत कर लाऊंगी, और अब ये गांव, ये ही मेरा सब कुछ है, इसी के लिए जीऊंगी मरूंगी।
0: मुझे लगता है हम लोग काफी आराम कर चुके हैं, अब चलना चाहिए।
1: बहुत देर हो गई।
2: अरे क्या बात है बिटिया, इतने तनाव में क्यों हो? अरे जमुनिया, तनाव तो बहुत बुरी बात है।
1: तनाव कोई इतनी बुरी बात नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि तनाव ना हो तो धनुष का क्या फायदा। जब तक अच्छा तनाव नहीं होगा, तीर काम नहीं करेगा।
2: अरे भारी जमुनिया, वाह वाह, तू तो बहुत पढ़ लिख गई है रे। अरे हम तो सोचते थे कि टेंशन बुरी बात है।
3: पर माई, ये टेंशन आज ही की रात क्यों? कल वोटिंग है इसलिए ना।
1: दादी मत बन, चल मान ले कल वोट पड़ेगा इसलिए, ठीक है?
2: अरे जमुनिया
1: जी बाबा,
2: खाली वोट के नाम पर तेरी ये हालत तो नहीं होती। कुछ तो खास है बिटिया जो तू बता नहीं रही है।
1: बताऊंगी बाबा, आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? आप ही तो जो मेरे सुख दुख का ख्याल रखते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
2: हाँ, पूछ बिटिया।
1: कि मान लो कल मैं सचमुच जीत जाती हूँ, तो फिर उसके बाद क्या? कुछ दिनों बाद चरैया भी फुल हो जाएगी, और गोलू मान लो मैं दीवान की कैद से छुड़ा कर ले भी आऊं, तो आखिर वो अपना घर बसाएगा, मुझे कौन पूछेगा बाबा?

0: समझ गया बेटी, सब समझ गया। अरे तुझे लग रहा है ये झुल्लन अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं
1: है। अरे ये क्या कह दिया पापा आपने, हम तो आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे। हम अकेले हैं और अजात है, कोई हमारे आसपास ज्यादा घूमेगा तो वैसे ही 100 बातें फैलेंगी। और दूसरी शादी हम करना नहीं चाहते, या यूं कह लो कि हमें अब शादी वादी की दरकार नहीं। ऐसी हालत में हम क्या करें बाबा?
0: अरे बिटिया, कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते हैं बेटा, और हमें उसे समय पर छोड़ना
2: पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया की 15वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस महीने के अंत में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत इस वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संगठन के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के एश्वेले में G20 बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की भूमिका पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में उत्कृष्ट किसानों, जिला सहकारी बैंकों और पैक्स संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं श्योपुर में आयोजित बलराम महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करेंगे। भगवान श्री बलराम जी की जयंती एवं पावन पर्व हलषष्ठी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव प्रदेश के अन्नदाता किसानों के सम्मान, सशक्तिकरण और समृद्धि का उत्सव है। नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर आज 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया है। विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक आवश्यक दवाएं हैं। और क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में T20 सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 15 सितंबर और तीसरा 17 सितंबर को होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।
4: महिला सभा सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को आपकी सखी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जहां बेटियां होती हैं ना, वहां खुशियां अपने आप दस्तक देती हैं। बेटी घर में जन्म लेती है तो वह सिर्फ एक बच्ची नहीं होती, वह अपने साथ मुस्कान, संस्कार, संवेदनाएं और ढेरों सपने लेकर आती हैं। उसकी हंसी से घर चहक जाता है, उसकी बातों में अपनापन होता है, उसके होने से परिवार पूरा कंप्लीट सा लगता है। बेटियां कभी माँ की सहेली, पिता का गुरूर, भाई की सबसे प्यारी दोस्त और पूरे परिवार की ताकत। सच में एक बेटी है जो कितने सारे रिश्तों को संवारती हैं। इसलिए सखियों, बेटियों को भी वो सब दीजिए जिसकी वो हकदार है। ऐसा नहीं समझिए कि बेटियां घर की जिम्मेदारी है। सच ये है कि घर की खुशियों की वजह बेटियां ही होती हैं। सखियों एक बात और, बेटा हो या बेटी, दोनों ही परिवार की संतान है, दोनों के सपने हैं, दोनों में प्रतिभा है और दोनों को ही आगे बढ़ने का अधिकार है। यदि बेटा परिवार का नाम रोशन करता है तो बेटी से भी हमें यही उम्मीद लगानी चाहिए। बेटा एक परिवार को बढ़ाता है, लेकिन बेटियां दो परिवारों में संस्कार और खुशियां बांटती हैं। आज हमारी

बेटियां डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, शिक्षक है, वैज्ञानिक है, खिलाड़ी है और देश की सीमाओं की रक्षा तक कर रही हैं। इसलिए बेटियों को रोकिए मत, उसे पढ़ने के लिए पंख दीजिए, उसे कहें बेटी तुम जो सपने देखोगी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सखियों, आज हम कितनी भी तरक्की की बात कर लें लेकिन आज भी कई बेटियों को अपने सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहीं उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है, कहीं उनके फैसलों को महत्व नहीं दिया जाता, तो कहीं उन्हें बेटों से कम समझा जाता है। लेकिन इतने संघर्षों के बाद भी आज भी बेटी हार मानने वाली नहीं है। वह हर चुनौती का सामना कर रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं और साबित कर रही हैं कि बेटी किसी से कम नहीं, बस उसे अवसर और विश्वास की ज़रूरत है। तो आइए सखियों, हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां बेटी को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ना करना पड़े, बल्कि उसे जन्म से ही सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा का समान अवसर मिले। क्योंकि बेटी की उड़ान रोकनी नहीं है, उसे हमें आसमान देना है।

0: संतुलित और पौष्टिक आहार से शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। अपने खान पान में मोटे अनाज, अंकुरित दाल, फल, हरी सब्जी को शामिल करना है। इसी विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंटवार्ता। शीर्षक है, स्वस्थ जीवन का आधार पोषण। तो सखियों, आइए सुनते हैं शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक वर्मा से निरंजना जैन की बातचीत।
1: सखियों, आप सभी जानती हैं कि स्वस्थ जीवन का आधार है पोषण। आज इसी संदर्भ में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपक वर्मा जी को, जो कि जिला हॉस्पिटल मुरार में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम, आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाकर सम्मान दिया है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार कितना ज़रूरी है।
2: संतुलित आहार शरीर को आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वसा और फाइबर प्रदान करता है, जो कि शरीर के विकास में लाभदायक सिद्ध होते हैं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है।
1: तो भोजन में कौन कौन से प्रमुख पोषक तत्व होते हैं?
2: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, जैसे कि विटामिन B1, B2, B5, B6, B12, विटामिन सी, खनिज लवण, मिनरल्स, पानी और फाइबर भी मुख्य पोषक तत्व के हिस्से माने जाते हैं।
1: तो सर, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है?
2: प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों, ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है। बच्चों में वृद्धि और विकास के लिए भी इसकी विशेष आवश्यकता होती है।
1: और विटामिन और खनिज लवण से क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: ये शरीर की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं, हड्डियों, रक्त का निर्माण, प्रतिरोधक क्षमता, दृष्टि और सामान्य बुद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं।
1: और अगर जैसे किसी बच्चे में या बड़े में आयरन की कमी हो जाती है तो कौन कौन सी समस्या हो सकती है?
2: आयरन की कमी होने से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे कि से थकान, कमजोरी, शरीर में पीलापन और कंसंट्रेशन यानी ध्यान न लगने या सीखने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।
1: और बच्चों के विकास में पोषण की क्या भूमिका है?
2: बच्चों के विकास में पोषण की अत्यधिक भूमिका है, क्योंकि बच्चों की लंबाई, बच्चों का वजन और बच्चों का जो मानसिक विकास है वो पोषण पर ही निर्भर करता है। अगर आपने बच्चे को सही समय पर सही पोषण नहीं दिया तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास बाधित हो सकता है।
1: तो जैसे कई बार सुनने में आता है कि बच्चा कुपोषित है, तो क्या चीज़ की कमी रह जाती है जिससे वो कुपोषित हो जाता है?
2: कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति के शरीर को आहार में आवश्यक विटामिन, मिनरल्स, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या उनकी अधिकता का सामना करना पड़ता है, तो इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है।
1: अब जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद होते हैं, लेकिन क्या जंक फूड बच्चों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए?
2: जंक फूड की मात्रा बहुत ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि जंक फूड में अत्यधिक वसा, अत्यधिक नमक और अत्यधिक चीनी का उपयोग होता है, और ये इनमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं।
1: आजकल बच्चे ये भी कहते हैं कि हमें नाश्ता नहीं करना है।
2: नाश्ता बच्चों के लिए अनिवार्य है। अगर आपने सुबह अच्छे से नाश्ता किया है तो वो आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेगा, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा और बच्चों में सीखने की क्षमता विकसित होगी।
1: हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चे हों या बड़े हों, इनके लिए कितनी ज़रूरी है?
2: हरी पत्तेदार सब्जियां हर उम्र के व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं। शरीर के लिए आवश्यक मिनरल्स, विटामिन्स और खनिज लवण, फाइबर्स इत्यादि प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे कि शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर की जो प्रक्रिया है, वो आसान तरीके से संचालित होती रहे।
1: और कई बार हम जैसे बच्चों को खैर प्रोत्साहित करते हैं कि भाई हाथ धोकर खाना खाओ, बाहर से आए हो तो पहले हाथ धो, तो अगर बच्चे नहीं इसको ध्यान देते हैं तो क्या हो सकता है?
2: बिल्कुल, ऐसी आदत बच्चों में शुरुआत से ही डालना चाहिए। अगर हमने बच्चों को हाथ धोना नहीं सिखाया तो खाने के साथ ये कीटाणु जो हाथों पर जम्स होते हैं वो भोजन में चले जाते हैं अंदर पेट में, और उसकी वजह से बच्चे को संक्रमण हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे को दस्त है, उल्टी है और निमोनिया, इस टाइप की बीमारियां हो सकती हैं और बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
1: डॉक्टर साहब, पोषण और स्वास्थ्य का आपस में क्या संबंध है?
2: पोषण और स्वास्थ्य आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे पोषण की वजह से ही आ सकता है, इसलिए आपके जीवन में पोषण का बहुत महत्व है।
1: मतलब पोषण की कमी से जैसे बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है, बच्चों की दिमागी जो कहना चाहिए कि याददाश्त बढ़ती है वो भी कम हो जाती है अगर पोषण।

0: की कमी होती है, तो इस टाइप की कुछ परेशानियां हो सकती है बच्चों को, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल, अगर बच्चों में पोषण की कमी है तो उनको कंसंट्रेशन यानी एकाग्र रहने में कठिनाई आएगी और वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होगी अगर पोषण की कमी है तो।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात ये भी जानना चाहती थी कि जैसे अभी बाजार में कई तरह के फ्रूट्स आते हैं या कुछ बगैर मौसम के भी आते हैं, तो वो भी उतने पोषक तत्व देते हैं जो कि एक मौसम में आते हैं फल?
1: कहना जरूरी है कि ये जो आर्टिफिशियल फल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल का उपयोग हो रहा है, तो उतने पोषक तत्व जो फल मौसम में उस जिस मौसम में जो फल आना चाहिए अगर वो उस मौसम में आ रहा है और उस मौसम में उसका सेवन करें तो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगर वो हम दूसरे मौसम में उसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आ सकती है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने बच्चों के पोषण की बात की थी, अब हम जानना चाहते हैं कि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किस तरीके की डाइट लें कि उससे गर्भस्थ शिशु का विकास भी अच्छे से हो और महिलाएं भी स्वस्थ रह सकें।
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। गर्भावस्था में दो लोगों के लिए दोगुना खाना नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर और संतुलित आहार लेना जरूरी है। इसका उद्देश्य माँ की पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी करना और बच्चों की वृद्धि एवं विकास को समर्थन देना है। गर्भावस्था में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, पानी और खनिज प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन के रूप में हम दाल, अनाज, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर ले सकते हैं
0: जी।
1: और अंडा, मछली या चिकन भी ले सकते हैं अगर यदि लेते हों। हरी सब्जियां जरूर उसमें शामिल होना चाहिए और कैल्शियम और विटामिन डी के लिए हमें दूध और दही का सेवन करना चाहिए।
0: और कई बार क्या होता है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद भी माँ को किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है?
1: माँ का दायित्व है बच्चे को अपना फीड कराना, दूध पिलाना। ब्रेस्ट फीडिंग सरकार ने मैंडेटरी कर रखी है, अनिवार्य रूप से 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है। तो इसके लिए माँ को पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और सारे आहार संतुलित मात्रा में होना चाहिए।
0: डॉक्टर, संतुलित आहार क्या होता है? मतलब हमारी थाली में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होना चाहिए जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये संतुलित आहार है?
1: संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें व्यक्ति की उम्र और आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित और सही मात्रा में मौजूद हों, जो कि संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, खनिज लवण, पानी और फाइबर। ये सारे तत्व आपकी थाली में होने चाहिए। इनका स्रोत क्या है? तो इनका स्रोत ये है कि अनाज, मिलेट्स और दाल, चावल, सब्जियां, फल, ये सारे तत्व आपकी थाली में होने चाहिए।
0: हम जैसे सही पोषण और स्वस्थ जीवन को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते?
1: व्यायाम निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार, व्यायाम, योगा दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, साफ पानी पीना भी क्या पोषण का ही हिस्सा माना जाता है?
1: साफ पानी नहीं पीते हैं तो इसकी वजह से पानी में मौजूद बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड है, पीलिया है और भी कई गंभीर बीमारियां दूषित पानी पीने की वजह से हो सकती हैं।
0: बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं या कहते हैं किशोरावस्था है, तो उसमें बच्चों के लिए पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पौष्टिक आहार सबके लिए ज़रूरी होता है, बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उस समय उनकी बॉडी में कैल्शियम, आयरन सबकी ज़रूरत होती है।
1: अगर बच्चे को उम्र के अनुसार सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिला तो उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी जो कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक सिद्ध होगी।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल अब हम कहते हैं कि बच्चों को जंक फूड ना दें, तो हम उनको बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें किस तरीके से दें कि भाई वो कम खाएं और दूसरी चीज़ों की तरफ आकर्षित हों?
1: उनको हमें जो थाली में परोसे जाने वाला भोजन है वो हमें आकर्षक बनाना है जिससे कि बच्चों का ध्यान आकर्षित हो। हम जो बच्चों को बोलते हैं बच्चे उससे नहीं सीखते, बच्चे हमारी नकल करते हैं, बच्चे बड़ों की नकल करके सीखते हैं। तो हम संतुलित आहार अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे तो बच्चे हमें देख के नकल करेंगे और हम भी बच्चों को अपने साथ बैठा के खिलाएं। और जंक फूड चूंकि पूरी तरीके से हम बंद नहीं कर सकते, ये बिल्कुल आज के समय की सच्चाई है, लेकिन हमें उसको कम से कम सीमित मात्रा में उसका उपयोग करना उचित रहेगा।
0: तो डॉक्टर साहब, आप बच्चों के लिए या बड़ों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: मेरा मैसेज यही है, पोषण के बारे में जागरूक करना जिससे कि वो अपने दिनचर्या में संतुलित आहार, योग, व्यायाम, भरपूर नींद को शामिल करें जिससे कि उनकी दिनचर्या और बेहतर हो और वो अपने कार्य में और अच्छे से दिमाग लगा के अच्छे से कार्य कर पाएं।
0: डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि हमारी महिलाएं या हमारे जो भी श्रोता हैं वो इस जानकारी से ज़रूर लाभान्वित होंगे और इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करेंगे, पौष्टिक आहार को भी अपनी जीवन शैली में शामिल करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप आज स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: सखियों, अभी आपने सुनी भी।

0: भेंटवार्ता स्वस्थ जीवन का आधार पोषण जानकारी दे रहे थे शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक वर्मा और उनसे बातचीत कर रही थी निरंजना जैन। सखियों, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए सामान ऑर्डर करना बेहद आसान हो गया है और अब तो भीड़ भाड़ वाले मॉल में जाने या लंबी कतारों में इंतज़ार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से कीमतों की तुलना घर बैठकर ही कर सकती हैं। आप उसके रिव्यू को पढ़ सकती हैं। कैश ऑन डिलीवरी, रिटर्न की सुविधा, पसंद ना आए तो वापस कर देना, इतनी सारी सुविधाएं घर बैठे मिल जाए तो सही में हमारा कितना सारा टाइम बच जाता है ना। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आर्थिक नुकसान और साइबर धोखाधड़ी का कारण भी बन सकती है। इसलिए सखियों, कोशिश करें कि ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा आधिकारिक तौर पर प्रमाणित वेबसाइट से ही करें या अज्ञात साइट पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करें। और सखियों, हर ऐप और वेबसाइट का पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। फ़ोन पर OTP आने पर किसी के साथ साझा ना करें जब तक आपको उस पर विश्वास ना हो। पेमेंट करते समय भी पासवर्ड जो आप रखते हैं उसे भी ध्यान से बनाएं। और शॉपिंग के समय जब हम अपनी कार्ड डिटेल डालते हैं ना या फिर नेट बैंकिंग की डिटेल डालते हैं तो भविष्य में दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हम इसे सेव कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा आप मैन्युअली ही अपनी बैंकिंग जानकारी भरें, ये आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित है। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन को नियमित रूप से आप चेक करते रहें। अपने अकाउंट पर लगातार नज़र बनाए रखें ताकि फ्रॉड की संभावना कम से कम हो। सखियों, कई शहरों और मॉल के आसपास पब्लिक वाईफाई फ्री में मिल रहा है तो ज़्यादा खुश ना हो, सावधान रहे और ऐसे जगहों से पेमेंट करने से बचें। शॉपिंग करना हम महिलाओं की अच्छी आदत है। खूब शॉपिंग कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हम तो यही चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए थोड़ा सावधान रहें।
1: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी। अरे फैशन की

सखियों अब बारी है आज के व्यंजन की। सखियों हमारे भारतीय खान पान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति से भी जुड़ी होती है। नारियल उन्हीं में से एक है। गुड़ और नारियल की बर्फी बिना चीनी के बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद पारंपरिक मिठाई है। इसके लिए 2 से 4 कप कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल, गुड़ का पाउडर 200 से 250 ग्राम, देसी घी 1 से 2 बड़े चम्मच, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, कटे हुए मेवे काजू किशमिश बादाम पिस्ता ऊपर से गार्निश करने के लिए। सखियो सबसे पहले ताजे नारियल को कद्दूकस कर लें, फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करें, फिर इसमें पिसा हुआ नारियल डालकर धीमी आंच पर 2 से 4 मिनट तक भुने ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें गुड़ का पाउडर डालकर लगातार चलाते रहें। तब तक चलाते रहें जब तक कि गुड़ पूरी तरह पिघल ना जाए और नारियल के साथ अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। मिश्रण को गाढ़ा होने तक इसे पकाते रहें। अंत में इलायची पाउडर डाल दें। अब एक थाली में घी लगाकर इसे चिकना करें। फिर मिश्रण को इसमें अच्छे से फैलाकर ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दें। जब ये ठंडा हो जाए तब मन चाहा आकार देते हुए बर्फी के आकार में काट लें। सखियो ये तो हुआ मीठा। नारियल चावल दक्षिण भारतीय क्षेत्रों का एक प्रमुख और पसंदीदा व्यंजन है जिसे तमिल में थेंगई सडम भी कहते हैं। थेंगई का अर्थ नारियल और सडम का अर्थ चावल होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी बासमती चावल को अच्छे से धोकर 20 से 30 मिनट के लिए भिगो के रख दें। इसके बाद आप चावल से सारा पानी निकाल कर प्रेशर कुकर में चावल जैसे आप बनाती हैं वैसे ही बना लें। फिर कुकर की सीटी निकलने के बाद आप चावल को एक थाली में निकाल कर पूरी तरह से ठंडा होने दें। फिर एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालकर गर्म होने दें। फिर इसमें आप 1 छोटी चम्मच राई डाल दें। जब राई चटकने लगे तब आप इसमें 1 बड़ा चम्मच धुली हुई चना दाल और उड़द दाल डालकर 1 मिनट तक मिक्स करें। भुनने के बाद इसी में 2 बड़े चम्मच कटे हुए काजू डालें और इसे भी सुनहरा होने तक चलाते रहें। इसके बाद आप 2 सूखी लाल मिर्च, 10 से 12 कड़ी पत्ता, 1 चुटकी हींग डालकर अच्छी तरह से फिर से भुनें। अब इस मिश्रण में 1.5 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चलाएं। फिर इसमें ठंडा चावल जो हमने पहले से बनाए रखे थे उसको डालकर और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। जब सभी चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई हैं तब आप गैस बंद कर दें। सखियों आप चाहे तो सर्व करते समय इसमें बारीक कटी हरी धनिया नींबू भी डाल सकती हैं। लीजिए तैयार है नारियल चावल। सखियों आने वाले

0: त्यौहार में एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी सखी नीलम को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है। आज आप सुनेंगे भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस हर्ष गीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ लोकगीत। लोक संगीत के ये कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 1:45 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अनुज राठौड़ के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अनुज राठौर के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसत जयपुरी का लिखा यह गीत लता मंगेशकर ने गाया था। फिल्म थी आम्रपाली। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषित साझा किया जिसमें निडरता का भाव जगाने और जीवन बचाने के गुणों पर बल दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जो कोई भी लोगों का डर दूर करता है उसे बहुत आशीर्वाद मिलता है और तीनों लोगों में जीवन बचाने से बड़ा कोई मूल्यवान उपहार नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि अभियान के 4 सप्ताह सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। पोर्टल पर अभियान के तहत किए गए भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की जानकारी दर्ज की जाएगी। डॉक्टर यादव ने इसके साथ ही सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की सेवा, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। इस डाकघर को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। यहाँ स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। इसके बाद श्री सिंधिया ने ककरवाया क्षेत्र में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देश के 7वें डाक प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन भी किया। इस केंद्र में प्रदेश के साथ आसपास के राज्यों के डाक विभाग के कर्मचारियों को भी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
2: एक नया उदय, जहां भारत सरकार के डाक विभाग की पोस्टल प्रशिक्षण केंद्र जो पूरे देश में केवल 6 हैं, वो 7वां केंद्र 91 करोड़ रुपए की लागत से शिवपुरी में लगने जा रही है। हमारे 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक जो घर घर जाते हैं, अगर भारत के 6 लाख गांव में कोई दूत है तो वो दूत मेरा ग्रामीण डाक सेवक।

ग्वालियर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में बलराम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के तहत हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर यादव प्रदेश में नवीन पंजीकृत 200 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 सितंबर को सीहोर में सीजी पावर की नई पावर ट्रांसफार्मर यूनिट से पहले ट्रांसफार्मर के रोल आउट की शुरुआत करेंगे। करीब 50 एकड़ में बनी यह भारत की एक ही जगह पर स्थित सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण सुविधाओं में से एक है। यहां 220 से 1200 केवी तक के ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे। प्रदेश में इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। प्रदेश के 81 प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर 4 सितंबर को 1000 से ज्यादा बच्चों को बालकृष्ण के रूप में तैयार कर कार्यक्रम कराया जाएगा। स्कूलों में मटकी फोड़, बांसुरी, झांकी और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि गौशालाओं में सफाई, गौ पूजन और पशु स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। भोपाल में 7 दिवसीय रासलीला समारोह और आगरमालवा जिले के मुरली मनोहर मंदिर में भी श्रीकृष्ण पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम की वजह से बारिश का दौर जारी है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि सतना और चित्रकूट सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में अति भारी और 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश को देखते हुए सतना में आज और कल स्कूल, कॉलेज तथा आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में परिवहन विभाग की जांच कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले बस और ऑटो चालकों पर 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया। आगरमालवा की ग्राम पंचायत जमुनिया, गाता, बाजना, रामपुर, भुंडवास तथा नलखेड़ा जनपद पंचायत के वार्ड 6 और 11 तथा सुसनेर में उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। और इंदौर जिले के शासकीय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय में आगामी 10 सितंबर को संभागीय लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत

0: सुप्रत करेंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का पांचवां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
3: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण

0: अंतर्राष्ट्रीय कानून संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री रादोस्वाफ शियोर्सकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनूघाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला से अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36

0: घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल करते हैं और पहला पत्र शामिल हो रहा है अमनपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दिशा रूही और लबी श्रीवास्तव के। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा के। डबवाली हरियाणा से जेके बकोलिया, श्रीमती सुनीता बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया की। सुनना पसंद किया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों का गाया। राजेंद्र कृष्ण ने बोल लिखे हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

अगले गीत का अनुरोध छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर टुकटुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी की। यादव मोहल्ला सनावद मध्यप्रदेश से दिलीप मालाका, योगेश मालाका, सुनीता मालाका, मुस्कान मालाका, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार की। सुनना पसंद किया है जमीन आसमान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर का गाया, अनजान ने गीत लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: नया जमाना फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर ने गाया था, आनंद बख्शी का लिखा था और धुन बनाई थी एस डी बर्मन ने। सुनना पसंद किया था पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने। मिली जुली फरमाइश है अगले गीत के लिए, धामड़ी मनोरा तुश्रीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे और प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे ने अपनी फरमाइश भेजी है। घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की पसंद है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, साथ ही संगीता आर्य की पसंद है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की कंगन फिल्म का गीत, उषा खन्ना और महेंद्र कपूर का गाया हुआ है, अनजान गीतकार और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।
1: जो तेरे में ना

कार्यक्रम का यह आखिरी गीत हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर की बेड़ी से ये अपना पत्र भेजते हैं। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और उनका पूरा परिवार, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज की, रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनना पसंद किया है हीरा पन्ना फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। आनंद बख्शी की कलम से ये निकला गीत, स्वरबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म हीरा पन्ना के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुबह

0: भाषित साझा किया जिसमें निडरता का भाव जगाने और जीवन बचाने के गुणों पर बल दिया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जो कोई भी लोगों का डर दूर करता है उसे बहुत आशीर्वाद मिलता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर अभियान के तहत किए गए भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की जानकारी दर्ज की जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। इस डाकघर को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। यहाँ स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। ग्वालियर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में बलराम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के तहत हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 सितंबर को सीहोर में सीजी पावर की नई पावर ट्रांसफार्मर यूनिट से पहले ट्रांसफार्मर के रोल आउट की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। प्रदेश के 81 प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में अति भारी और 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:00 प्रसारित करेंगे। चर्चा का विषय है रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 सुनिएगा नाटक बाबूजी, लेखक विजय दिंडोरकर, प्रस्तुतकर्ता राकेश टोंडियाल। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा विदुषी गंगूबाई हंगल का ख्याल गायन, राग होगा मियां मल्हार। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में एक्वापोनिक्स मछली के साथ पौध उत्पादन विषय पर डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव से की गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। ये थे मुख्य आकर्षण सांध्यकालीन सभा के। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण डीटीएच पर जारी है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की। आरंभ में सुनिए ये हर्ष गीत।

भंवर सिंह अहिरवार के गाए भजन आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में। भंवर सिंह के गाए लोकगीत आप सुन रहे हैं, ये है चौकड़िया गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये DTH के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अनुज राठौर के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुज राठौर के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी भोपाल केंद्र है डीटीएच के ऑडियो चैनल पर।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदल

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की

0: Also Jen Olney, Purani, Best of Both the Worlds. Best of Both the Worlds. Best of Both the Worlds. Best of Both the Worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है. लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत. सर फिल्म का ये गीत है. कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने इसे गाया है. अलका याग्निक साथ में इनकी आवाज़ है मिली जुली. कतिल शिफाई ने गीत लिखा है. अनु मलिक की धुन है.

0: संघर्ष फिल्म का ये गीत था, सोनू निगम ने गाया था। इसके साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश, आकाशवाणी भोपाल है, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। प्रदेश में अब चीनी के स्टॉक को लेकर नई सीमा तय की गई है। कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से ज़्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा और इसे 30 दिन से ज़्यादा समय तक भंडारित भी नहीं किया जा सकेगा। स्वयं के जुलाई 2026 सेमेस्टर के गैर NPTEL पाठ्यक्रमों में पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। पहले पंजीयन की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, अब

0: विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन कोर्स चुनने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने करीब 3 दिन पहले 2 शावकों को जन्म दिया है। इससे पहले करीब 8 महीने पहले शेरनी मेघा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। अब नए शावकों के जन्म के बाद जू में शेरों की संख्या 14 हो गई है। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चाइना ओपन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए। श्रीकांत ने शेंझेन में खेले गए पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यू जेन को 21-16 और 21-15 से हराया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में अति भारी और 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार जगजीत सिंह से गजल समाज फरमा रहे थे और कलाम था कैफी आजमी का। दोस्तों, बहैसियत मजमूही हम ये कह सकते हैं कि कैफी आजमी की गजलें हकीकी तजुर्बे से माखूज हैं, जिनमें असली हकीकतों की गहरी नश्तरियत, पुख्ता तख्लीकी शऊर और नज़मिया के असरात मौजूद हैं। उनकी शायरी मुशायरे लूटने वाली शायरी नहीं है, बल्कि माशरे के फरसूदा रिवायात और मुल्क व दुनिया के ज़ालिमाना सियासी निज़ाम के खिलाफ एक ऐलान जंग है। डॉक्टर कमर रईस कहते हैं कि कैफी का ताल्लुक इंसानियत की उस तरक्की पसंद जमात से है जिसने इंसान को ज़ईफ़ुल एतिक़ादी, तवहम परस्ती और तासुबात से निजात दिलाने के काम को अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन बनाया। वहीं शमीम हनफी कहते हैं कि जब भी मैं कैफी आजमी के कलाम का मवाजना उनके दूसरे मासरीन से करता हूँ तो हमेशा इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि वो उर्दू शायरी में तरक्की पसंद तहरीक की अहम तरीन आवाज़ों में से फैज़ और मखदूम के बाद तीसरी बड़ी आवाज़ हैं। दोस्तों, अपनी शायरी का लोहा पूरी दुनिया से मनवाने के बाद उर्दू अदब का ये दरख्शां सितारा 10 मई 2002 को मुंबई में इस दार फ़ानी को अलविदा कह गया। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अब हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के ज़रिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम कहकशां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।

डीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जमुनिया की 15वीं कड़ी।

रहमदिल और नेक इंसान रतन की पत्नी जमुनिया, जो कि अनपढ़ है और उसके पास एक नवजात शिशु है, उसे करण छल कपट से घर से निकाल देता है और उसी गांव का एक नेक दिल इंसान छुल्लन मदद करता है। रात दिन एक करके जमुनिया पढ़ लिख लेती है और अचानक सरपंची की सीट महिला हो जाने के नाते गांव के लोग उसे उम्मीदवार बना देते हैं। दूसरी ओर दीवान अपनी पत्नी को भी इसी पोस्ट के लिए खड़ा कर देता है। अब आगे।

0: जमुनिया, आदमी के जीवन में सबसे अच्छी उम्र यही होती है।
1: सच्ची बात कही, खाओ पियो खेलो मस्त रहो, न रोटी की चिंता न इलेक्शन की।
0: हाँ, और इलेक्शन की चिंता तो आपको ही सबसे ज्यादा है, बाकी लोग तो मजे में देखो कैसे कबड्डी खेल रहे हैं। चलो हम, मैं कमरे में चलता हूँ, आगे आप संभालो।
1: ठीक है जैन जी, आप जाइए, मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। ठीक
2: का जमुनिया दीदी।
1: कल
2: का होने वाला है?
1: कल का होने वाला है ये तो तुम हमसे बेहतर जानते हो भैया, हम का बता सकते हैं। अरे मेघा जी
3: आ गई, नहीं आया क्या?
1: आराम करने गए हैं अभी घर पर।
3: शिल्पी और जमुनिया, देखो आज हमें अलग अलग घरों में जाकर अलग अलग समझाना होगा, कौन किसको वोट दे, है ना? इस तरह हम एक साथ तीन तीन लोगों को समझा पाएंगे।
4: हाँ,
3: है ना?
1: हाँ, बिल्कुल।
3: है ना, बढ़िया,
1: बिल्कुल।
3: अगर एक साथ निकले तो हमारा काम तिहाई हो जाएगा।
1: ठीक कह रही हो दीदी, ऐसा ही करते हैं।
5: देखो जमुनिया
1: जी,
5: ये तो इसी गांव के हैं, इन्हें सब जानते हैं। और मेघा को लगभग सभी लोग पहचानते हैं। रही मेरी, मैं नई हूँ, सब मुझे जानते नहीं, तो मेरा अकेला जाना क्या ठीक रहेगा?
3: बिल्कुल ठीक रहेगा, ये इतना मुश्किल नहीं है शिल्पी, जितना तुम सोच रही हो।
5: कैसे?
3: देखो, एक दो घर में जाओगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
5: अच्छा,
3: और फिर तुम्हारा असर लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। सोचो तो सही, लोगों को लगेगा कि एक बाहर की लड़की

0: आकर जमुनिया का साथ दे रही है,
1: अच्छा
0: तो उन्होंने भी उसका साथ देना ही चाहिए, है ना बढ़िया?
1: हाँ, ये ठीक है। तो चलो कोशिश करती हूँ, अगर बात

0: इस बार उसे ही मौका दीजिए और अब ज्यादा सोचिए मत। और हाँ, याद रखिए, आज की रात अपने आदमी को शराब से बचा कर रखना।
1: अच्छा अच्छा, वो तुम ही हो जो मेघा दीदी के साथ जमुनिया का प्रचार कर रही हो?
0: हाँ।
1: अरे हम तो पहले से ही सोच के बैठे हैं कि जमुनिया बहन को जिताना है।
0: अच्छा,
1: इसीलिए अगर चाहो तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। और सुनो, हमें सब पता है
0: क्या?
1: कौन कौन लोग दीवान के हैं या दीवान को वोट देना चाहते हैं। हाँ।
2: अच्छा, अपन सीधे वहीं चलते हैं।
1: हाँ।
2: अच्छा, पानी वानी लोगी? तुम्हारे होठ तो सूखे हुए दिख रहे हैं।
0: हाँ, प्यास तो बहुत लगी है।
2: ए सीला।
3: हाँ माँ।
2: हाँ, पानी लिया बिटिया?
3: नहीं अम्मा।
2: हाँ, चलो एक मिनट। हाँ। को है ये जल पानी ला रही है ना। हाँ दे बिटिया, लो पानी पी लो।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, बड़ी प्यास लगी थी।
2: हाँ, हाँ,
0: अच्छा लगा।
2: एक मिनट रुको बहन, बस घर में ताला लगा लो।
0: हाँ,
2: ना
0: हाँ,
1: अच्छा, चलो जल्दी करो। हाँ, जल्दी
2: आओ। हाँ, रुको तो। हाँ, रुको तो लग रहा। हाँ, बस चलो
1: आज। हाँ,
0: चलो चलो चलो चलो।
1: दीदी लाज रखना, बाकी तुमसे का कहे, तुम तो खुद समझदार हो।
4: बहन इसमें लाज की कौनों बात नहीं है। अरे तुमको वोट देकर तो हम खुद को ही वोट देंगे, और यही नहीं बल्कि इस गांव में नया राज भी लेकर आएंगे।
1: पक्का?
4: हाँ पक्का।
1: तो फिर चलो करते हैं बात।
4: हाँ हाँ चलो बहन चलते हैं। अरे रघु जरा घर देखना।
5: जाओ अम्मा, फिक्र मत करो।
4: बस अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
6: बहन तुम्हें तो पता ही होगा कि कल वोट पड़ने वाले हैं।
7: हाँ हाँ,
6: सरपंची का चुनाव होने वाला है। और मैं जमुनिया बहन के लिए आपका वोट मांगने आई हूँ। आप याद रखना।
7: हाँ हाँ दीदी,
6: वो दो वादे। एक वादा तो वो कि आज अपने आदमी को दारू मत पीने देना, और एक वादा वो कि कल वोट जमुनिया को देना।
7: मेघा दीदी आप तो इसी गांव की हो, हम भी इसी गांव के हैं। मैंने सोच ही रखा कि जमुनिया को वोट देने से हमारा क्या फायदा होगा।
6: फायदा वो?
7: तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि दीवान ने हमें कंबल दिए, धोती दी, हमारे आदमी को दारू भी बांटी। हमें जमुनिया से क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा होगा? जमुनिया हमारे लिए क्या कर सकती है दीदी?
6: देखो हमारी बात गौर से सुनो बहन, जो कुछ भी तुम्हें मिला है या दीवान ने दिया है उसकी जिंदगी बहुत थोड़ी है और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और जो जमुनिया करेगी या देगी वो तुम्हारे जीवन भर चलेगा।
7: ये तो आपने सही कहा दीदी, बिल्कुल सही कहा।
6: अच्छा चलती हूँ। हाँ राम राम। और हाँ याद रखना, कल वोट पड़ना है तो आज रात को दारू की बैठक में तुम्हारे आदमी को बुलावा है तो जाने मत देना, है ना?
7: समझ गई मेघा बहन, आप तो निश्चिंत रहो। वोट किसी के सामने तो पड़ता नहीं है।
6: हाँ।
7: इसलिए हमने किसको वोट दिया किसे पता।

0: अरे रोको रोको रोको, अरे रोको भैया। कहा भैया,
1: कौन
0: कहा हो रहा है ये?
2: तुम्हें क्यों बताएं?
1: हाँ?
2: तुम हो कौन?
1: हाँ, और का?
2: और तुम तो इस गांव का वोटर भी नहीं हो।
1: भैया
0: भैया मैं वोटर तो नहीं हूँ,
1: हाँ?
0: इसलिए वोट तो डालूंगा नहीं।
1: अच्छा,
0: पर मैं इस देश का हाँ? स्वतंत्र नागरिक हूँ, इसलिए जहाँ भी गलत काम होगा उसका विरोध करने का मुझे अधिकार है।
1: हो रहा है,
0: और वो मैं जरूर करूंगा।
1: अरे क्या गलत काम हो रहा है यार, जो आप रोकोगे?

0: समझ में नहीं आ रहे यार। हा? अरे हम प्रचार कर रहे हैं भैया, हमारी मालकिन चुनाव की उम्मीदवार है।
1: और क्या,
0: अब उसके लिए वोट मांगने निकले
1: तो मांगेंगे।
0: अरे इसलिए तो प्रचार करने निकले हैं यार, इसमें कौन सी गलत बात होगी?
2: गलत ये है भैया, चुनाव से एक दिन पहले आप भोपू पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते।
0: हाँ,
2: चुपचाप लोगों से मिलकर अपनी बात कह सकते हो, लेकिन भोपू जुलूस पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। और हाँ, आपकी हम शिकायत भी कर सकते हैं।
1: करो, जा जा, जब तक वो लोग यहाँ आएंगे ना। हाँ को भैया,
0: और क्या,
1: अपना तो काम ही खत्म हो
0: जाएगा। चलो निकल लो यार, चलो चलो, टाइम दो, वोट दो,
3: मालकिन को वोट दो,
4: वोट दो,
3: वोट दो, मालकिन को वोट दो।
2: गुरुजी, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अनुभव किया है कि आप ज्यादातर चुप रहते हैं, लेकिन आपके भीतर बहुत अनुभव और ज्ञान है। लेकिन उसका इस गांव को, गांव वाले को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।
5: हाँ, तुम ठीक कहते हो जयंत, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मुझ में इतना उत्साह नहीं है कि मैं गांव के लोगों को संगठित करूं, उन्हें दीवान के सामने खड़ा कर सकूं। गांव की सारी तरक्की अकेले दीवान के चंगुल में फंसी हुई
2: है। मैं इस गांव में केवल थोड़े बहुत अनुभव के लिए आया था, पर यहां की स्थिति देखकर लगता है कि यहीं रह जाऊं। और हाँ, मेघा ने वैसे भी मुझे चुनौती दी थी कि जब तुम मेरे गांव चलोगे तो वापस आने का मन नहीं होगा। गुरु जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कल के चुनाव में आप सक्रिय भूमिका निभाइए। हम दोनों वहां चलेंगे और देखेंगे कि वहां कोई गड़बड़ी ना हो, वोटिंग निष्पक्ष हो।
5: भाई तुम कहते हो जयंत, तो फिर मैं जरूर चलूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझ में भी एक नया जोश पैदा हो रहा है, जो जमुनिया के मार्फत लगता है साकार होगा और इस गांव की तकदीर बदलेगी।
2: हाँ गुरुजी, जरूर बदलेगी।
6: भाई, तुम दोनों कहाँ रहे आज दिन भर? पता है, मैं अकेली थी घर पर।
7: क्या बाबा, हा? तुम भी नहीं थे? चिरैया अकेली थी घर पर?
6: हाँ।
8: नहीं नहीं नहीं जमुनिया, ऐसी कोई बात नहीं बिटिया। अरे हम खाना वाना बनाकर निकले थे, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था ना, हमने सोचा हम भी तुम्हारे हक में लोगों को समझाएं, बस इसीलिए निकल गए थे। और लगता है कि इस बार दीवान तुम्ही से हारेगा। चलो चलो चलो, खाना खाते हैं, कल भी बहुत काम है बिटिया।
7: हाँ चलो।
9: क्यों भाई लोगों, कहा रिपोर्ट? अरे मालिक मालिक कहा कर रहे हो? चल तू सुना, तुझे कहा लगा थे
10: मालिक?
9: हाँ हाँ बोल।
10: मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
9: हट, आज तक समझ में आता रहा तुझे सब कुछ, और जब दीवान से फायदा उठाना होता है तब समझ में आता है, लेकिन जब उसे कुछ जानना होता है, उसके फायदे की बात होती है, तब तुम्हारी समझ में नहीं आता। चल छोड़ छोड़ तू।
10: मालिक, मुझे तो हालात ठीक नहीं दिख रहा मालिक।
9: ससुर जब बोलेगा बुरा ही बोलेगा। हालात बुरे दिखाई दे रहे हैं, सुन ले कान खोलकर।
10: हाँ मालिक।
9: अगर रिजल्ट बुरा रहा ना, तो सबसे पहले तुझे ही निपटाऊंगा मैं।
10: रहम मालिक, रहम रहम।
9: चल रहम किया। अब सुन, मुझे भुग्गा चाहिए।
10: भुग्गा?
9: भुग्गा तुरंत, अभी इसी समय। हाँ जा बुला के ला उसे।
10: अच्छा मालिक, अच्छा अब बुला के ला तू।
9: हाँ बुला के ला। और हाँ, एक कतवारू।
11: हाँ मालिक।
9: हाँ तुमसे ही कह रहे भैया।

0: जी मालिक जी,
1: आप फरमाओ
0: जी,
1: आपके पास कछु कोई संतोषजनक खबर है कि नहीं?
0: मालिक अब क्या बताऊं मैं आपको, देखा कि पूरे गांव में घर घर जाके उन लोगों ने सबको जाने का घुट्टी पिला दी। अरे कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है।
1: का?
0: वो हर जगह एक ही जवाब कि इतने साल सरपंच रह के तुम्हारे दीवान जी ने गांव के लिए का कर लिया।
1: हा?
0: और मालिक भाई तो हम चुप रह जाते हैं।
1: जवाब सर चुप। अरे तुम सबको ही चुप्पी की बीमारी लग गई है। हाँ अरे अरे तुम्हारे पास कहने को कुछ है ही नहीं। अरे हम होते ना तो सुबह से शाम तक बता देते कि हमने इस गांव के लिए क्या क्या किया है। अरे कल जब चुनाव है तो कम से कम इस रात सब लोग गांव में जाके फैल जाओ। कंबल दो, धोती दो, दारू दो, दारू
2: दारू मालिक।
1: हाँ, और जिसको जो जरूरत है वो दो से, पर वोट जरूर लो। समझ गए? और अगर किसी को इसमें से कुछ नहीं चाहिए तो उसको पैसा दो, खरीद दो सबको, पर वोट जरूर लो।
3: हाँ
1: सुनो तुम लोग,
2: हाँ
1: इसे मेरी गीदड़ भपकी मत समझना। अगर मालकिन चुनाव हार गई ना,
2: नहीं नहीं नहीं मालिक,
1: तो सचमुच इस गांव में मैं आग लगा दूंगा।
2: मालिक, मालिक, मालिक।
4: चल चल।
5: राम राम मालिक।
1: आओ भुग्गा, आओ आओ बैठो।
5: ठीक है मालिक।
1: आप सुनो तुम लोग, ये भुग्गा को छोड़कर जो बाकी लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो जाओ गांव में जाके फैल जाओ। और लोगों को कल की जरूरत के हिसाब से वोट देने के लिए तैयार करो। समझ गए? चलो जाओ सब। चलो गए सब, गए सब। हे बग्गा
5: जी मालिक,
1: सुन हमारी बात। हमने तुझे यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है।
5: वो क्या है मालिक?
1: सुन, तुम्हारी घरवाली शारदा तो रही नहीं।
5: जी मालिक।
1: है ना? और तुम्हारे पास कोई ज्यादा सामान भी नहीं है।
5: मालिक।
1: तो सुनो, हम ये चाहते हैं कि अपना रहा सहा सामान निकाल कर अपनी चुपड़िया खाली कर दो।
5: आए मालिक।
1: वो इसलिए कि हम तुम्हारी चुपड़िया में आग लगाने वाले हैं।
5: अच्छा रहम करो मालिक, क्या कर रहे हैं?
1: तो और जब थाना पुलिस आए तो तुझे बयान देना है।

0: आए मालिक।
1: वो इसलिए कि हम तुम्हारी छुपड़िया में आग लगाने वाले हैं।
0: अच्छा रहम करो मालिक, क्या कर रहे हैं?
1: और जब थाना पुलिस आए तो तुझे बयान देना है।

0: बहुत फर्क नहीं पड़ेगा मालिक।
1: अरे चुप कर, समझ गए हम सब कुछ।
0: जी मालिक।
1: जान गए तेरी असलियत भी। जा अगर जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, जा।
0: मालिक अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। प्रणाम मालिक, प्रणाम।
1: गुस्ताखी तो तुझसे हो गई है भुक्का, और हम देखते हैं कि तुझे कैसे माफ करना है। का करें समझ में नहीं आ रही कछु।

0: चमुनिया जी, लगता है थक गई हैं आप, थोड़ा आराम कर लीजिए।
1: थक तो आप गए हैं जयंत बाबू, चलिए पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं थोड़ी देर।
0: अच्छा भाई,
1: है ना,
0: हाँ भाई सही, चलो। हाँ भाई, अच्छा लगा, पेड़ के नीचे की छांव की ठंड का मजा ही अलग है।
1: हाँ जयंत जी, एक दो दिन के लिए ऐसी ठंड अच्छी लगती है।
0: हाँ? ऐसा क्यों कह रही हो, और कल के बारे में क्या सोच रही हो?
1: हमारी जिंदगी में काम का खाता बहुत बड़ा है जयंत बाबू, और आराम का कम, इसलिए पेड़ के सामने होते हुए भी हम छा नहीं पाते। और जो कल की बात है, तो चुनाव है, एक परीक्षा है, तो उसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही।
0: कोई घबराने की जरूरत नहीं है जमुनिया, और हाँ, कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। और टेंशन तो उन्हें होगा जो सरपंच थे, जिनकी सरपंची हो सकती है चली जाए। तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं।
1: जयंत जी, मैं इस तरह नहीं सोचती, मैं जब कुछ ठान लेती हूं ना, तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही मानती हूं।
0: वो ठीक है भाई, ठीक है, ये अंजाम पर कल ही पहुंचेगा, पर मैं तुमसे उस कल की बात नहीं कर रहा हूं जो कल चुनाव में आएगा।
1: फिर
0: मैं तो उस कल की बात कर रहा हूं जो आने वाले ढेर सारे कल है और जिनसे तुम्हें जूझना होगा।
1: साफ साफ कहिए जयंत जी, हमें आपकी बात साफ समझ में आई नहीं।
0: देखो जमुनिया, रतन तो रही नहीं, चिरैया वो भी एक न एक दिन अपने आदमी के साथ चली जाएगी, और झुल्लन बाबा काफी उम्र के हो चले हैं, और फिर तुम अपने बारे में क्या सोचती हो?
1: अब आके दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता, मेरा एक बेटा भी है, उसे दीवान बंधुआ मजदूर बनाए बैठा है, उसको मैं जीत कर लाऊंगी, और अब ये गांव, ये ही मेरा सब कुछ है, इसी के लिए जीऊंगी मरूंगी।
0: मुझे लगता है हम लोग काफी आराम कर चुके हैं, अब चलना चाहिए।
1: बहुत देर हो गई।
2: अरे क्या बात है बिटिया, इतने तनाव में क्यों हो? अरे जमुनिया, तनाव तो बहुत बुरी बात है।
1: तनाव कोई इतनी बुरी बात नहीं है, गुरु जी कहते हैं कि तनाव ना हो तो धनुष का क्या फायदा, जब तक अच्छा तनाव नहीं होगा तीर काम नहीं करेगा।
2: अरे भारी जमुनिया, वाह वाह, तू तो बहुत पढ़ लिख गई है रे। अरे हम तो सोचते थे कि टेंशन बुरी बात है,
3: पर माई ये टेंशन आज ही की रात क्यों, कल वोटिंग है इसलिए ना।
1: दादी मत बन, चल मान ले कल वोट पड़ेगा इसलिए, ठीक है।

0: अरे जमुनिया
1: जी बाबा,
0: खाली वोट के नाम पर तेरी ये हालत तो नहीं होती। कुछ तो खास है बिटिया जो तू बता नहीं रही है।
1: बताऊंगी बाबा, आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? आप ही तो हो जो मेरे सुख दुख का ख्याल रखते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
0: हाँ, पूछ बिटिया।
1: कि मान लो कल मैं सचमुच जीत जाती हूँ, तो फिर उसके बाद क्या? कुछ दिनों बाद चरैया भी फूल हो जाएगी और गोलू मान लो मैं दीवान की कैद से छुड़ाकर ले भी आऊं, तो आखिर वो अपना घर बसाएगा, मुझे कौन पूछेगा बाबा?
0: समझ गया बेटी, साफ समझ गया। अरे तुझे लग रहा है ये झुल्लन अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं
1: है। अरे ये क्या कह दिया बाबा आपने? हम तो आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे। हम अकेले हैं और अजात हैं, कोई हमारे आसपास ज्यादा घूमेगा तो वैसे ही 100 बातें फैलेंगी। और दूसरी शादी हम करना नहीं चाहते, या यूं कह लो कि हमें अब शादी वादी की दरकार नहीं। ऐसी हालत में हम क्या करें बाबा?
0: अरे बिटिया, कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते हैं बेटा, और हमें उसे समय पर छोड़ना पड़ता है। वो तुम आज तय नहीं कर सकती हो बिटिया। तुमने लोगों से इस गांव को एक आदर्श गांव में तब्दील करने का वादा किया है बिटिया, और यही तुम्हारी मंजिल है। बस इधर उधर मन को मत भटकाओ बिटिया।
1: मैं कहां मन को भटका रही हूं बाबा, पर बात में दम तो है। अचानक आज जयंत बाबू ने पूछा तो मुझे लगा कि मैं आपसे राय लूं। आप विश्वास करिए, मैं भी वही सोच रही हूँ जो आपका जवाब है बाबा।
2: माई, बाबा, आप लोग चुप हो तो हम सोएं?
0: हाँ दादी अम्मा, हम लोग चुप होते हैं, तुम तो खर लाटे भरो बेटिया। हाँ, और हम लोग भी सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना, पोलिंग बूथ पर जाना है और वहाँ की निगरानी भी करनी है।
1: ठीक बाबा, चलो सोते हैं।
3: जमुनिया की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करनी गुनो मेरे भैया।
4: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम में जमुनिया का भाग 15। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण।

नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

ग्वालियर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में बलराम जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। किसान कल्याण वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना की शुरुआत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 सितंबर को सीहोर में CG पावर की नई पावर ट्रांसफार्मर यूनिट से पहले ट्रांसफार्मर के रोल आउट की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। प्रदेश के 81 प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर 4 सितंबर को 1000 से ज्यादा बच्चों को बाल कृष्ण के रूप में तैयार कर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में अब चीनी के स्टॉक को लेकर नई सीमा तय की गई है। कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा और इसे 30 दिन से ज्यादा समय तक भंडारित भी नहीं किया जा सकेगा और स्वयं के जुलाई 2026 के सेमेस्टर के गैर NPTEL पाठ्यक्रमों में पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। पहले पंजीयन की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.3 मीटर्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

दोस्तों, आपके प्रिय कार्यक्रम युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मान्या शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बात की है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका फ़ोन हाथ में है, सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर ढेर सारे कॉन्टेक्ट्स हैं और इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आता है कि मैं इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ? अगर कभी ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आज हमें इस पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है। आज का हमारा विषय है युवाओं में बढ़ता अकेलापन। अकेलापन आखिर है क्या? अकेलापन सिर्फ कमरे में अकेले बैठने का नाम नहीं है, कभी कभी हम लोगों के बीच होते हुए भी अकेले होते हैं। क्लास में बैठे हैं, चारों तरफ दोस्त हैं, लेकिन हमारा मन किसी से बात करने का नहीं कर रहा, या फिर घर में सबके साथ होते हुए भी मन में चल रही बात किसी को बता नहीं पाते हैं, शायद इस डर से कि कोई हमें समझेगा नहीं। यही है वो अकेलापन जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर में चोट हो तो वो सबको दिख जाती है, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर कोई बात है तो हम अक्सर चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं। आज के युवाओं के सामने एक अजीब सी स्थिति है। हमारे पास पहले से ज़्यादा कनेक्टिविटी है, लेकिन शायद इस वजह से असल दुनिया के साथ कनेक्शन कम हो गया है। हम एक क्लिक में किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए कोई अपना ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सोचिए, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि हर कोई अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहा है। कोई विदेश घूम रहा है, कोई जिम में मेहनत कर रहा है, तो कोई रिलेशनशिप में खुश नज़र आ रहा है, और हम अपने कमरे में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि सबकी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है, सिर्फ मेरी ही क्यों नहीं। यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है और धीरे धीरे हम अपनी असली ज़िंदगी को दूसरों की एडिटेड ज़िंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर हमें लोगों की ज़िंदगी की हाइलाइट्स दिखती हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी का पूरा बिहाइंड द सीन्स जानते हैं। हम उनकी एक अच्छी तस्वीर देखते हैं और अपनी 10 परेशानियों को याद करते हैं, फिर लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन सच ये है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। हर सफल दिखने वाले इंसान की अपनी परेशानियाँ होती हैं और हर व्यक्ति कभी ना कभी अकेला महसूस ज़रूर करता है।

अकेलापन सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त नहीं हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। कभी करियर का प्रेशर, कभी पढ़ाई का स्ट्रेस, कभी नौकरी की चिंता, या कभी घर वालों के एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी हम ना चाहते हुए भी खुद ही दुनिया से दूर होने लगते हैं, शायद ये सोच के कि अगर हम अपनी परेशानियाँ दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो लोग हमें जज कर लेंगे। लेकिन अकेलापन सिर्फ मूड ख़राब नहीं करता। अगर लंबे समय तक हम अकेलेपन से जूझते रहे और किसी से बात ना करें तो इसका असर हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। हम लोगों से मिलना कम कर सकते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो सकते हैं, पढ़ाई या काम में मन लगना मुश्किल हो सकता है, नींद का रूटीन बिगड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, हम अपने बारे में नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं, जैसे कि मैं किसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ या फिर मुझे कोई समझता नहीं है। ये विचार धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर सकते हैं, इसलिए अकेलेपन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।

अब सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपना अकेलापन दूर कैसे करें। सबसे पहले किसी अच्छे इंसान से बात करिए, कोई पुराना दोस्त, कोई कलीग, भाई बहन या घर का कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आपको थोड़ा सुरक्षित महसूस होता हो। आपको शायद आश्चर्य होगा कि कई बार सामने वाला भी बिल्कुल आप ही की तरह महसूस कर रहा होता है, क्योंकि हो सकता है कि जिस दोस्त को आप बहुत खुश समझते हैं वो भी अपने कमरे में बैठकर यही सोच रहा होगा कि काश किसी से बात कर पाता। दोस्तों, अगर आप कभी अकेला महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि आप में कोई कमी है। आप एक इंसान हैं, आपको किसी का साथ चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को दूसरों की इंस्टाग्राम स्टोरीज से कंपेयर मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी है और आपको हर समय दुनिया के सामने खुश दिखने की ज़रूरत नहीं है, और हर परेशानी को अकेले संभालना भी ज़रूरी नहीं है। मजबूत होने का मतलब ये नहीं होता कि हम सब कुछ अकेले सह लेंगे। कभी कभी मजबूत होने का मतलब होता है अपनी परेशानियाँ दूसरों से शेयर करने की हिम्मत रख पाना। उम्मीद है ये बातें कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आगे की बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ आपसे इतना कहा हो कि तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, सामने वाले ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं, लेकिन आपके दिमाग ने पूरी कहानी बना ली कि क्या हुआ होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कोई नाराज़ तो नहीं है, कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं हो गई, और देखते ही देखते हमने हर उस बात का डर अपने दिल में पहले ही बिठा लिया जो शायद सच हो भी ना। यही है ओवरथिंकिंग। सोचना बुरी बात नहीं है, सोचना तो हम इंसानों की ताकत है, लेकिन जब सोचने की यही आदत हमें उस चीज़ को लेकर परेशान करने लगे जो अभी हुई ही नहीं है, और जब यही ओवरथिंकिंग हमारे आज का सुकून छीन ले, तब असल में हम सिर्फ सोच नहीं रहे बल्कि अपनी सोच में फंस चुके हैं। दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है, हर ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति ओवरथिंकर नहीं होता। किसी ज़रूरी परीक्षा से पहले पढ़ाई की प्लानिंग करना नॉर्मल है, इंटरव्यू से पहले तैयारी करना नॉर्मल है, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करना नॉर्मल है, लेकिन अगर इंटरव्यू के बाद हम कई दिनों तक यही सोचते रहे, शायद मेरा आंसर गलत था, शायद इंटरव्यू सही नहीं गया, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। लेकिन अगर इंटरव्यू के बाद हम कई दिनों तक यही सोचते रहे, शायद मेरा आंसर गलत था, शायद इंटरव्यू सही नहीं गया, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ओवरथिंकिंग में दिमाग अक्सर एक सवाल का जवाब ढूंढने निकलता है और 10 नए सवाल लेकर वापस आता है, और सबसे अजीब बात, कई बार दिमाग उन सवालों के भी जवाब ढूंढ रहा होता है जो अभी ज़िंदगी ने पूछे ही नहीं। अब सवाल है, हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज़ का वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, वो खतरे को पहले ही पहचानना चाहता है, उसे लगता है अगर मैं पहले से सबसे बुरा सोच लूँगा तो शायद उसके लिए तैयार हो जाऊँगा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, फिर छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। दोस्त ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, शायद वो मुझसे नाराज़ है, बॉस ने लिखा कैन वी टॉक, लेकिन हमारे दिमाग ने पहले ही सोच लिया कहीं मेरी नौकरी तो नहीं जाने वाली। और अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इस ओवरथिंकिंग की वजह से हमारा दिमाग स्थिर रहना बंद हो जाता है। ओवरथिंकिंग का सबसे ज़्यादा असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है, क्योंकि हम हर मैसेज पर और हर छोटी बड़ी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जबकि हो सकता है सामने वाला बस काम में बिज़ी हो या उसका मूड ख़राब हो, लेकिन ओवरथिंकिंग हमें एक बात भूलने नहीं देती। हर साइलेंस का कोई नेगेटिव मतलब नहीं होता, कभी कभी जवाब देर से आता है क्योंकि सामने वाला भी अपनी ज़िंदगी में कुछ संभाल रहा होता है। युवाओं में ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है कि लोग क्या सोचेंगे। हम कई बार ज़िंदगी जीने से पहले ही लोगों के रिएक्शंस इमेजिन करने लगते हैं, और फिर डर के कारण वो काम ही नहीं करते जो हम सच में करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, लोग आपके बारे में उतना सोच ही नहीं रहे जितना आप सोच रहे हैं। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आपने जो छोटी सी गलती की है, हो सकता है आप उसे पूरी रात याद रखें, पर सामने वाला उसे 10 मिनट में भूल चुका होता है। ओवरथिंकिंग सिर्फ इंसान को थका देती है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वर्स्ट केस के साथ बेस्ट और मोस्ट लाइकली भी सोचिए। हमारा दिमाग अक्सर सीधा वर्स्ट केस पर चला जाता है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि सबसे अच्छा क्या हो सकता है और फिर सबसे ज़्यादा संभावना किसकी है। कई बार हमें पता चलता है कि वर्स्ट केस को हम इतना बड़ा बना रहे हैं, उसकी संभावना भी उतनी बड़ी नहीं है। दोस्तों, जब हम अपने कंट्रोल से बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो एंजाइटी बढ़ती जाती है। इसलिए हमें सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हमारा बिहेवियर, हमारी मेहनत और हमारी इम्प्रूवमेंट। अपने साथ भी वही काइंडनेस रखिए जो आप अपने किसी करीबी दोस्त के साथ रखते हैं। कभी कभी आपसे कोई गलती हो जाइए तो खुद को माफ़ करके अपनी गलतियों से सीख लीजिए। हर गलती आपकी पर्सनैलिटी का सर्टिफिकेट नहीं होती। दोस्तों, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको बचाना चाहता है, बस कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है, लेकिन जो हुआ नहीं है उसके डर को आज की खुशी मत छीनने दीजिए। अगर कोई मुश्किल आएगी तो संभाल लेंगे, लेकिन अभी इस पल में सब ठीक है। दोस्तों, आशा है आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी बांटेंगे।
1: वो आ गया होगा।

0: Why am I behaving like a teenager? मैं उसका इंतजार क्यों कर रही हूँ?
1: शिखा! हाय।
0: हाय।
1: आज आप जल्दी निकल गए।
0: आपको कैसे पता?
1: विजिटर्स बुक। आज हम भी आपकी नगरी की तरफ जा रहे हैं, अंधेरी।
0: अच्छा,
1: तो चले।
0: मैं लेडीज कंपार्टमेंट में ट्रैवल करती हूँ।
1: नो प्रॉब्लम।
0: नो प्रॉब्लम, उसमें ट्रैवल करने के लिए आपको औरत बनना पड़ेगा।
1: तो फिर जनरल कंपार्टमेंट में चलते हैं, उसके लिए आपको मर्द नहीं होना पड़ेगा।

उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे युववाणी के अगले कार्यक्रम में एक नए विचार और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मैं मान्या शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। शाम के 5:30 बजे हैं, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
8: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
9: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
7: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
8: आकाशवाणी है ना,
10: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
8: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
7: शाम सुहानी हो,
8: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
7: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
8: सफर में
7: आपके साथ
8: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत चुपके चुपके फिल्म से है। आवाज़ है लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, धुन तैयार की एस डी बर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मंजिल फिल्म का गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं बरसात फिल्म का गाना। नदीम श्रवण ने इसकी धुन तैयार की है, समीर के बोल हैं, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, संगीत तैयार किया विजू शाह ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, फिल्म है मोहरा।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म से, आवाज़ के की। गीत लिखा संदीप श्रीवास्तव ने, संगीत प्रीतम का।

केके की आवाज़ में गाए लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित बलराम जयंती महोत्सव में सिंगल क्लिक के माध्यम से सहकारिता विभाग के अंतर्गत ऑनलाइन केसीसी पोर्टल, 0% ब्याज दर पर ऋण योजना का सरलीकरण, कवच योजना, 200 नवीन पैक्स कार्यालय सहित अपेक्स बैंक की संभागीय शाखा सिटी सेंटर ग्वालियर का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। इस डाकघर को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। यहां स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार और पार्सल तथा वित्तीय सेवाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 सितंबर को सीहोर में सीजी पावर की नई पावर ट्रांसफार्मर यूनिट से पहले ट्रांसफार्मर के रोल आउट की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। प्रदेश के 81 प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर 4 सितंबर को 1000 से ज़्यादा बच्चों को बालकृष्ण के रूप में तैयार कर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में अब चीनी के स्टॉक को लेकर नई सीमाएं तय की गई हैं। कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से ज़्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा और इसे 30 दिन से ज़्यादा समय तक भंडारित भी नहीं किया जा सकेगा। और स्वयं के जुलाई 2026 सेमेस्टर के गैर एनपीटेल पाठ्यक्रमों में पंजीयन की तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। पहले पंजीयन की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए, श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
1: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
2: जी।
1: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
2: श्रोता, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
1: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
2: जी।
1: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
2: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
1: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
2: जी।
1: लेकिन ये जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
2: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
1: जी हाँ श्रोताओं, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था
2: जी।
1: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओं, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
2: जी।
1: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
2: जी हाँ श्रोताओं, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है
1: जी। श्रोताओ, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर
2: जी,
1: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारे आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, मशीनों को रिटायर करने की जापान की ये छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है, उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
1: तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु

0: जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है, तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए
1: जी,
0: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
1: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
0: श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
1: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: CIET NCERT प्रेजेंट्स द प्रोग्राम द स्मार्ट मंकी।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of brown nuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. After having biscuits, what do you do with the wrapper? Is there a dustbin in your school? Do you know where it is?
0: The Smart Monkey. You were just

0: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रण बांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
4: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की

0: गौरव गाथा।
1: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोक गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
0: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
1: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
0: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
1: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे, तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
0: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरे ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
1: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
0: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
1: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
0: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया, और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
1: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
0: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
1: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
0: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है।

0: आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
1: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
0: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
1: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
0: साहब ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
1: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता? वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो?
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ काली बाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र

0: इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
1: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई, भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ, संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दाग फिल्म का ये गाना है जिसे आवाज़ दी किशोर कुमार ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आपने सुना आपकी कसम फिल्म में। आइए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत परवीन सुल्ताना की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना संगीत आर डी बर्मन का है। फिल्म का नाम कुदरत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने लता मंगेशकर की आवाज़ है और फिल्म है पड़ोसन।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए पड़ोसन फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, 7 बजने को है। आप कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। CEO ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित मुख्य परिचालन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी है। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भगचंद का और शिकोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल संसद के अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान दल आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
1: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। बलजीत कौर और स्कालजेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बंबई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 374 अंक फिसल कर 76,570 पर बंद हुआ और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल का कार्यक्रम बता दें, 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं एक्वापोनिक्स मछली के साथ पौध उत्पादन। ये विषय रहेगा जिस पर भेंटवार्ता होगी। हम भेंट करेंगे डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में सुर्खियों में कार्यक्रम आज रात 8:00, 8:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। रात्रि 9:30 चर्चा का विषय है कार्यक्रम, आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। बाबूजी विजय दिंडोरकर की लिखी ये झलकी हम आपको सुनवाएंगे आज रात 10:00, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 सुनिएगा विदुषी गंगूबाई हंगल का ख्याल गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम।

कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां गीत संगीत और समय के साथ प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, इसे आप सुन सकते हैं सुबह 8:30। फिल्म संगीत सुनिएगा सुबह 9:02 पर। सुगम संगीत में कमलेश तैलंग को आप सुनेंगे, समय रहेगा 9:15। ससुराल का नौकर, संतोष श्रीवास्तव का लिखा ये नाटक हम आपको सुनाएंगे सुबह 9:30। प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र स्वरूप राजन। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम का समय है सुबह 10:00। 10:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर होगा। शाम 7:25 पर होंगे बुंदेली समाचार और 7:30 किसान वाणी में कल आप सुन सकते हैं धान एवं सोयाबीन में समन्वित व्याधि प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर ऋषिकेश मंडलोई से ली गई भेंटवार्ता। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल के कार्यक्रम। आप आइए डालते हैं एक नज़र आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसे सुन सकते हैं सुबह 11:00। 12:00 आपकी फरमाइश संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 सुनिएगा धारावाहिक जमुनिया का भाग 16। महिला कार्यक्रम दोपहर 1:00। कल का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी जबलपुर की ही प्रस्तुति में 1:30 सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं दोपहर 2:00, 2:30 पर, 5:33 पर और 6:30। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम रोज ही की तरह सुनिएगा 6:00। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और हांगकांग के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे कल रात 8:00, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से। 7:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के 7वें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। शिवपुर में बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। मंडी विश्राम गृह के लिए 60 लाख मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे 13 बड़े कार्यक्रम। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का कहर, चित्रकूट और सतना सबसे ज्यादा प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का

0: लोकार्पण और देश के सातवें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से प्रदेश और आसपास के राज्यों के डाक कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी और नई पीढ़ी के कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। श्री सिंधिया ने कहा कि अब प्रदेश के डाक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए करीब 600 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि देश में पहले से ही 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर संचालित हैं। शिवपुरी का नया केंद्र डाक सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने के साथ कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्वालियर के मेला मैदान में प्रदेश स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव एवं किसान समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। किसान कल्याण वर्ष के तहत मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड, 0% ब्याज योजना के सरलीकरण और कृषक कवच योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।
1: बदलते दौर में ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मालवा, महाकौशल, विंध्य, पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब आर्थिक समृद्धि के लिए पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, जो आपको करना वो योजना तो मिली रही है, लेकिन अब उद्योग धंधे के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने के लिए भी, राज्य की समृद्धि के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अन्नदाताओं को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं।
2: जिस भगवान बलराम के हाथ में हल था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी अन्नदाता के हाथ में आज ड्रोन पहुंच गया है, आज सेंसर पहुंच गया है, आज डिजिटल तकनीक पहुंच गई है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अन्नदाताओं को आधुनिक युग में विश्व के सबसे आधुनिक किसान बनाने का संकल्प लिया है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर में बलराम कृषि महोत्सव और किसान मेले को वर्चुअल रूप से भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और अब किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कृषि उपज मंडी में नया विश्राम गृह बनाने के लिए 60 लाख रुपये की घोषणा भी की। वहीं राजगढ़ के ग्राम पांदा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल शामिल हुए और अशोकनगर के कृषि विज्ञान केंद्र में कलेक्टर साकेत मालवी की अध्यक्षता में आधुनिक खेती व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर अब जिलों में अभियान के तहत हो रही गतिविधियों और उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। अभियान के पहले महीने में 5,64,000 से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और 8,06,000 से अधिक लोक सेवा गारंटी आवेदनों का निराकरण किया गया है। जिलों को हर सप्ताह अपने काम की जानकारी अगले सोमवार तक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। संभागायुक्त और संबंधित विभाग पोर्टल के माध्यम से जिलों की गतिविधियों की नियमित निगरानी करेंगे।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 सितंबर को सीहोर में सीजी पावर की नई ट्रांसफार्मर यूनिट से पहले ट्रांसफार्मर के रोल आउट की शुरुआत करेंगे। करीब 50 एकड़ में बनी यह इकाई देश की बड़ी पावर ट्रांसफार्मर निर्माण सुविधाओं में शामिल है। यहां 200 केवी से 1200 केवी तक के बड़े ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग बिजली, रेलवे, डेटा सेंटर और सोलर सहित रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में किया जाएगा। इस इकाई से 2000 से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। यहाँ के ट्रांसफार्मर देश के साथ विदेशों में भी भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए। अभियान के दौरान प्रदेश में 13 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में जनसंवाद और जनकल्याण गतिविधियों के साथ विकास पुस्तिकाएं लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। 17 सितंबर को उज्जैन के महाकाल महालोक में बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को राज्य स्तरीय श्रीकृष्ण पर्व का आयोजन किया जाएगा। घर घर गोकुल घर घर गोपाल की संकल्पना के साथ प्रदेश के सभी 55 जिलों में 111 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

किया जाएगा। संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि प्रदेश के 7,500 से अधिक श्रीकृष्ण मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाएगा और 1,500 से अधिक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। मुख्यमंत्री निवास पर भी विशेष आयोजन होगा जिसमें राधा कृष्ण की वेशभूषा में 101 से अधिक बच्चे शामिल होंगे। प्रदेश में अब चीनी के स्टॉक को लेकर नई सीमा तय की गई है। कोई भी डीलर 4,000 क्विंटल से ज़्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा और इसे 30 दिन से ज़्यादा समय तक भंडारित भी नहीं किया जा सकेगा। सभी डीलरों को केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस संबंध में सभी कलेक्टरों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं थोक उपभोक्ता 15 दिन से ज़्यादा का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे, जिसमें हलवाई, मिठाई विक्रेता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे उपभोक्ता भी शामिल हैं। स्वयं के जुलाई 2026 के सेमेस्टर के गैर एनपीटेल पाठ्यक्रमों में पंजीयन की तारीख को बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दिया गया है। पहले पंजीयन की तारीख 31 अगस्त थी। अब विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन कोर्स चुनने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। पोर्टल पर 1700 से ज़्यादा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषय शामिल हैं। वहीं इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने करीब 3 दिन पहले 2 शावकों को जन्म दिया है। सुंदरी पिछले करीब 1 सप्ताह से गुफा में रह रही थी, जिससे जू प्रबंधन को उनके प्रसव की उम्मीद थी। इससे पहले करीब 8 महीने पूर्व शेरनी मेघा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। अब नए शावकों के जन्म के बाद जू में शेरों की संख्या 14 हो गई है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम की वजह से बारिश का दौर जारी है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि सतना और चित्रकूट सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और रामघाट की करीब 400 दुकानें और 20 से 25 होटल पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में अति भारी और 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश को देखते हुए सतना में कल स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ियों में छुट्टी घोषित की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में मूसलाधार बारिश के चलते बाणसागर बांध के 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं गुरुवार को जिले के बुढ़ार क्षेत्र में जनविश्वास शिविर का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के कालिदास कन्या महाविद्यालय में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। झाबुआ और अनूपपुर जिलों में पंचायत व निकाय उप निर्वाचन 2026 का कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। आगरमालवा जिले के निवासियों से हरिद्वार और ऋषिकेश की निःशुल्क तीर्थयात्रा के लिए 9 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खंडवा जिले के ग्राम चमाटी में HIV/AIDS सघन जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को जांच और बचाव की जानकारी दी गई। यह अभियान 12 सितंबर तक चलेगा। देवास जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्वालियर में आयोजित बलराम जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पुरस्कृत किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के 7वें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। श्योपुर में बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। मंडी विश्राम गृह के लिए 60 लाख रुपए मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे 13 बड़े कार्यक्रम। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का कहर, चित्रकूट और सतना सबसे ज्यादा प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों, अपन देख ही रहे हैं कि बारिश को मौसम चल रहा है, और बारिश को मौसम जब गर्मी से राहत देते है तो वहीं का होता है कि अपने जल भराव होते हैं, दूषित पानी होते हैं, गंदगी होती है, जाके कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकते हैं। तो बारिश के समय में अपने घर, आसपास के क्षेत्र और शरीर की स्वच्छता को अपन को विशेष ध्यान देना चाहिए। भैया, बारिश के समय

0: बाल्टी, पुराने बर्तन, टायरों, कूलर और अन्य सामान में पानी जमा हो सकता है। तो जमा पानी में क्या है कि मच्छर पनपते हैं, तो जाके लाने अपन क्या करें कि जब पानी को तुरंत निकालें और पानी रखने वाले बर्तनों को जो अपन है ढक कर रखें। बारिश के समय पानी दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है, तो अपन पीने के लाने साफ और सुरक्षित पानी को उपयोग करें और आवश्यकता होने पर अपन क्या करें कि पानी को उबाल कर या उचित जल शुद्धिकरण विधि होती है बाको उपयोग करें। और अपने जो भोजन है, फल सब्जियां अपन जो काटते हैं बिने अपन ढक कर रखें। कहा है कि खुले भोजन पर मक्खियां बैठते हैं, जहाँ से कहा है कि भोजन दूषित हो जाते हो और अपन को कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहते हैं। खाना खाने के पहले और शौचालय को उपयोग करने के बाद अपन को साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोने चाहिए। जब अपन कब घर से बाहर से आएँ, तो जब घर में आएँ तो अपन को हाथ पैर अच्छे से साफ कर लेने चाहिए। जाके अलावा अपने घर के आसपास की जो नालियाँ हैं बिन में कचरा जमा ना होने दें और बिन को साफ़ सुथरा रखें। और अगर अपन साफ सुथरा रखेंगे तो अपन मच्छरों की समस्या से बच सकते हैं। जाके अलावा अपन बारिश में कब भीग जाते हैं, तो अपन क्या करें कि अपन घर जल्दी पहुँच कर ज़्यादा समय तक भींगे ना रहें, अपने जूता और कपड़े उतार के उनको सुखा दें और अपने पैरों को भी साफ करके अच्छे से साफ सुथरा हो जाए। और जाके अलावा अपन कचरे को सही निपटान करें, अपनी जो गाय बैल भैंस जहाँ रहते हैं वहाँ अपन नियमित साफ सफाई रखें और इसके साथ साथ फिनाइल का उपयोग करते रहें, जहाँ से कहा है कि वहाँ गंदगी के कारण मक्खी और मच्छर नहीं होंगे। और मच्छरों से बचने के लाने अपने घर में साफ सफाई रखें, खिड़की दरवाज़ों पर जालियों का उपयोग करें, आसपास पानी भी जमा ना होने दें। जाके अलावा अपने जो सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे अपनी जो पंचायतें हैं, स्कूल है, अस्पताल है, इन जगहों पर अपन साफ सफाई रखें, कूड़ा ना फेंकें और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना अपने लाने बहुत ज़रूरी है। और ये अपनी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, अपने पूरे समाज की जिम्मेवारी है। भैया रो चर्चा अपनी चलती रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनत जे लोकगीत।
1: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
2: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।

भैया रो, अभी अपन ने सुनो ये प्यारो सो लोकगीत। और भैया रो, अपनी जो चर्चा को विषय है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। भैया रो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। चाहे 8 अप्रैल 2015 को शुरू करो हो तो जाको देश से अपने जो छोटे व सूक्ष्म उद्यमी हैं वे अपनों व्यवसाय शुरू करें या उसे बढ़ा सकते हैं। जाके लाने अगर अपन कोई व्यवसाय शुरू करेंगे और अगर कोई अपन व्यवसाय को बढ़ावे तो बाकी लाने पूंजी की आवश्यकता पड़ते हैं, तो जाके लाने बगैर किसी जमानत के अपन को ऋण उपलब्ध हो सकता है। जय योजना के अंतर्गत व्यापार सेवा के छोटे व्यवसाय साथ ही साथ पोल्ट्री डेयरी मधुमक्खी पालन जैसे कृषि संबंधी गतिविधियों में भी अपन ऋण ले सकते हैं। भैया जा में चार तरह के ऋण मिल सकते हैं। एक तो शिशु जहाँ में 50,000 तक को ऋण मिल सकता है, और किशोर जहाँ में 50,000 से 5 लाख तक को ऋण मिल सकता है,

एक है तरुण, जहाँ हमें 5 लाख से 10 लाख तक को ऋण मिल सकता है, और एक है तरुण प्लस, जहाँ हमें 10 लाख से अधिक और अधिकतम 20 लाख तक ऋण मिल सकता है। भैया जय योजना से जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वे नौकरी की तलाश न करके अपना व्यवसाय शुरू करें, और व्यवसाय शुरू करने के लिए हमें जय योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल सकता है। और अपने छोटे छोटे दुकानदार हैं, कारीगर हैं, सूक्ष्म उद्यमी हैं, इनको पूंजी भी उपलब्ध कराना है। का होता भैया कि पूंजी की कमी के कारण वे अपने व्यवसाय को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जय योजना के माध्यम से बिना पूंजी उपलब्ध हो जाते और अपने व्यवसाय को वो बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है और बाकी पास पूंजी नहीं है, तो वे जब व्यवसाय से जय योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपने नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और जाके अलावा अपने जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, बिना बैंकिंग व्यवस्था से भी जुड़ना है, और अपने जो गांव हैं, गांव में छोटे छोटे उद्योगों को चालू करना है, जहाँ से कहा है कि अपने जो ग्रामीण युवा हैं वे नए उद्योग चालू करेंगे, और जब वे उद्योग चालू करेंगे तो अपने साथियों को भी वे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक से विराम और सुनाते हैं जी संदेश।

0: भैया जय योजना से सबसे अधिक लाभ मिलता है कि अपन जाके अंदर 20 लाख तक को ऋण ले सकते हैं। जाके लाने अपन को कोई जमानत नहीं देनी होती, और अगर कोई दुकान, छोटा उद्योग, सर्विस सेंटर अपने व्यवसाय करना चाहते हैं तो वित्तीय सहायता भी ले सकते हैं। और अगर कोई पहले से कोई व्यवसाय चला रहा है, मशीनरी, उपकरण या कच्चा माल, या उसको और माल खरीदना है तो बाके लाने अगर उसको सहायता चाहिए तो चार में भी ऋण ले सकते हैं। और जैसे कहा है कि व्यवसाय के लिए पूंजी मिल जाएगी, और जब पूंजी मिल जाएगी तो अपन अच्छे से माल खरीद सकते हैं। जब अपन को पूंजी मिलेगी तो अपन क्या है कि अपने व्यवसाय को बढ़ाएंगे, और जब अपनों व्यवसाय बढ़ेगा तो अपन अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। भैया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो छोटे व्यवसाय हैं, स्वरोजगार हैं, इनको बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, और जाको उद्देश्य ये है कि छोटे उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराकर इन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें, साथ ही साथ रोजगार को बढ़ावा दे सकें। भैया और चर्चा चलती रहेगी, आप सुनते हैं आंचलिक अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह, और जानकारी देंगे डॉक्टर हरविंद्र सिंह। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर अरविंद सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। किसान भाई, सबसे पहले पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम विभाग की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः मध्यम से घने बादल रहे तथा हवा लगभग 4.7 से 5.1 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम उत्तर दिशा की बही तथा अधिकतम तापमान 31 से लेकर 33 और न्यूनतम तापमान 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, एवं आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 79 से 80 और शाम को 61 से 78% के बीच दर्ज की गई। किसान भाई, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में घने बादल रहने तथा वर्षा होने की संभावना है, एवं हवा लगभग 216 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 31.8 से 32.6 और न्यूनतम तापमान 26.3 से 26.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अपेक्षिक आर्द्रता सुबह 77 से 78 और शाम को 64 से 68% के बीच रहने का अनुमान है। किसान भाई, संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए जो आपको कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है इस प्रकार से है। किसान भाई, संभावित मौसम में

हमारी खरीफ फसलें जो लगभग तैयार हो चुकी है और खरीफ फसलों में इस समय खरपतवार नियंत्रण और नाइट्रोजन की मात्रा को देना है। तो जैसे ही आपका मौसम साफ हो तब आप नाइट्रोजन की मात्रा और खरपतवार नियंत्रण करें।

0: संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मैन को जो 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 पानी घोल बनाकर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई बाजरा की फसल करें तो बाजरा की इस समय फसल जो है लगभग आपकी बाली निकलने की स्थिति में है। अगर आपने नत्रियन की मात्रा दे दी है तो ठीक है, अगर नहीं दी है तो उसको शीघ्रता से दें जिससे पानी आपकी एक साथ निकल के आए। साथ ही किसान भाई धान की बात करें तो संभावित मौसम को देखते हुए इस समय धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण करें, और क्योंकि इस समय कल्ला निकलने की अवस्था है तो इस समय नत्रियन की मात्रा को भी दें। ध्यान रखें पानी कम मात्रा में फसल में भरा हो। साथ ही किसान भाई सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की फसल भी इस समय फूल बनने की स्थिति में है, तो इसमें चक्र भंगे व सेमी लूपस कीट की संभावना हो सकती है। अगर दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु ट्राइयो 750 से 800 ml दवा 500 से 600 पानी घोल बनाकर प्रति हेक्टर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई सब्जियों की बात करें तो मिर्च और टमाटर इस समय जो तैयार आपकी जो फसल है मिर्च टमाटर लौकी तोरी कद्दू ककड़ी उसको आप समय समय पर तुराई करते रहे, क्योंकि लगातार वर्षा होने की संभावना को देखते हुए आपकी जो उत्पादन आएगा उसकी गुणवत्ता में खराबी आ सकती है। ऐसे सही समय पर और समय समय पर तुराई कर इसको बाजार में भेजते रहे। साथ ही किसानों भिंडी की बात करें तो इस समय भिंडी में फलछेदक कीट की संभावना हो सकती है, सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु डाई मेथोवेट 750 ml दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2 या 3 छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव उस समय करें जब आपका मौसम साफ हो। साथ ही किसान भाई मिर्च की बात करें तो इसमें मिर्च में चूड़ा मोटा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमेथाग्राम 25 WG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका प्रति हेक्टर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई इस समय जो आपने नए पौधे लगाए हैं जैसे आम अमरूद नींबू आदि के जो पौधे लगाए हैं उनमें जल निकास की व्यवस्था रखें। साथ ही अगर कुछ पौधे आपके मर गए हों जो की जगह आप नए पौधे इस समय लगा सकते हैं, मौसम बिल्कुल अनुकूल है। साथ ही किसान भाई पशुपालन की बात करें तो संभावित मौसम को देखते हुए पशुओं की नाद पशुवाला की नियमित सफाई करें तथा प्रतिदिन पशुवाला की सफाई के बाद 5 ml फिनाइल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई संभावित मौसम में पशुओं को संक्रामक रोग होने की संभावना हो सकती है, अतः पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु दूषित चारा दाना और गंदे तालाब का पानी न खिलाएं। पशुओं को इस समय अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से अफरा रोग की भी संभावना हो सकती है, अतः अफरा रोग की रोकथाम के लिए टिम्पाल या ब्लोटोसिल दवा 200 ml प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से खिलाएं। इसी के साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मैं डॉक्टर हरबिंद सिंह।
1: भैयारों अभी अपन सुन रहे थे आंचलिक अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरविंदर सिंह। भैयारों अपन सभी जानते हैं कि अपन 1 सितंबर से 7 सितंबर 2026 तक राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह मना रहे हैं। भैयारों राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह मनावे का उद्देश्य ये है कि अपन जो लोग हैं बिना संतुलित पौष्टिक और स्वस्थ आहार के प्रति जागरूक करना है। अपन जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता, बल्कि अपन जो भोजन कराते हैं वे शरीर की आवश्यकता के अनुसार अपन उचित प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट लें, वसा लें, विटामिन लें, खनिज लवण लें, फाइबर लें और पर्याप्त पानी पिए। भैया पोषण आहार सप्ताह के माध्यम से अपने जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं बिना सही खान पान के बारे में जानकारी देना है। भैया पोषण आहार सप्ताह में लोगों को बताते हैं कि भोजन में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध तथा अन्य खाद्य जो पदार्थ हैं बिनको उचित मात्रा में अपन शामिल करें। बच्चों और महिलाओं में होने वाले कुपोषण, कमजोरी, कम वजन तथा पोषक तत्वों की कमी को रोकना इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है। भैयारों अपनी जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं बिन के लाने जो पौष्टिक भोजन है बहुत ज़रूरी है, और बिन्हें जाके बारे में जागरूक करना भी आवश्यक है, क्योंकि माँ का जो पोषण है वो बच्चे के स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। भैया पौष्टिक भोजन के साथ साथ भोजन की स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं ना कि बगैर हाथ धोए अपन खाना खा लेते हैं तो अपन को जी नहीं करना, कि अपन को हाथ धो के साफ पानी को प्रयोग करें, भोजन को ढक कर रखें, सही तरीके से पकाएं। अब अपन देखते हैं ना कि अपन ने सब्जी काट दी और बगैर ढके बाहर रख देते हैं तो अपन जी ना करें, अपन

देख ही रहे हैं कि बारिश को मौसम भी चल रहा है, तो अपन को ये जरूर ध्यान देना है कि अपन जो फल सब्जियाँ काटें बिने ढाक कर रखें, और जाके अलावा अपने आसपास की साफ सफाई भी रखें। ये भी राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह को मुख्य उद्देश्य है। और जाके अलावा अपन आसपास की स्वच्छता के साथ साथ अपन को अपनी शारीरिक स्वच्छता को भी ध्यान रखना है। भैयारों जैसे कार्बोहाइड्रेट है और कुछ प्रोटीन है जो चावल गेहूं और मक्का से मिलते हैं, तो प्रोटीन से प्रोटीन और फाइबर मिलते हैं, आयरन जो मिलते हैं वे दालें चना राजमा लोबिया से मिलते हैं, और कैल्शियम और प्रोटीन मिलते हैं विटामिन और जो विटामिन B12 है वो अपन को दूध दही पनीर से मिलते हैं, साथ ही साथ आयरन विटामिन A C K जो हैं वो अपन को हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं, विटामिन ए को जो स्रोत है वो गाजर और शकरकंद है, अगर अपन जा को उपयोग करेंगे तो अपनी आंखें भी अच्छी रहेंगी, और विटामिन सी को अपन आंवला अमरूद नींबू और संतरा से प्राप्त कर सकते हैं। जाके अलावा आयरन और पोटेशियम अपन को खजूर और किशमिश से मिलते हैं, और वसा हमें सरसों को तेल मूंगफली को तेल और तिल के तेल से मिलते हैं। भैया पोषण आहार हमारे शरीर की नींव है, यदि शरीर को पर्याप्त पोषण तत्व नहीं मिलेंगे तो कमजोरी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी और विभिन्न तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। और अगर अपन पौष्टिक आहार लेंगे संतुलित आहार लेंगे तो अपने शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और साथ ही साथ जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भी अपनी मजबूत होगी। तो जाके लाने अपन को क्या करना है कि अपन को पोषण पर विशेष ध्यान देना है। अपन अगर पौष्टिक आहार रहेंगे तो अपना जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, साथ ही साथ अपने जो बच्चा हैं बुजुर्ग हैं महिलाएं हैं वे भी स्वस्थ रहेंगी। तो अपन कोशिश करें खूब अनाज दालें और ये दूध दही इनको सेवन करें, साथ ही साथ गाजर शकरकंदी इनको उपयोग करें, जैसे कहा है कि हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलेगी और हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा। तो भैया पोषण आहार सप्ताह से मिलने वाली जो सीख है वो अपन को पूरे वर्ष अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अपन को संतुलित भोजन करने चाहिए, स्वच्छता स्वच्छ और साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, नियमित शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। भैयारों जब अपन स्वस्थ रहेंगे तो अपन अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज को निर्माण कर रहते हैं। भैया अपन इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें कि अपन हरी सब्जियां दालें दूध दही पनीर इनको जरूर सेवन करें। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनते जी लोकगीत।

मर लो झूले नजर परत गेला रे गेल भूले नजर परत गेला रे गेल भूले।

भैयरों, अभी अपन ने सुनो ये लोकगीत। भैयरों, अपन सभी देख रहे हैं कि अपने किसान भैया हर खेती किसानी से उत्पादन बढ़ावे के लाने का है कि रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों को उपयोग करते हैं, जैसे कहा है कि अपना उत्पादन तो बढ़ जाते हैं लेकिन जो अपनी जमीन है, जमीन की जो माटी है, बाकी उर्वरता क्षमता कम हो जाती है, जैसे जल प्रदूषण होता है और अपनी जो आसपास की जैव विविधता है बाको भी नुकसान आता है। और जाके अलावा सबसे बड़ी बात है, अपनी जो खेती की लागत है वो भी बढ़ जाती है। तो जाके लाने अपन का करें कि अपन खेती किसानी के लाने जैविक खेती को उपयोग करें। जैविक खेती में अपन गोबर की खाद उपयोग कर सकते हैं, कंपोस्ट उपयोग कर सकते हैं, हरी खाद को उपयोग कर सकते हैं और अपनी जो फसल के अवशेष हैं इनको उपयोग कर सकते हैं। जाके अलावा इस जैसे कहा है कि अपनी जो फसल को जो उत्पादन है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगा, साथ ही साथ अपनी जो मिट्टी है, पानी है, पर्यावरण है और

अपनों जो खुद को स्वास्थ्य है वो भी अच्छो रहेगा। भैयारों जैविक खेती से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर अपन जैविक खाद जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद को उपयोग करें, कंपोस्ट को उपयोग करें, बर्मी कंपोस्ट को उपयोग करें, चाहे हरी खाद को उपयोग करें, जैसे कहा है कि अपनी जो खेती किसानी की जो ज़मीन है वहाँ में जैविक पदार्थ बढ़ते हैं, जैसे कहा है जो मिट्टी की संरचना है वो बेहतर होती है और पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होती है। भैया जाके अलावा अगर अपन इनको इन खादों को अपन खुद ही उपयोग तैयार करें तो इससे कहा है कि अपन जो रासायनिक खाद है बिनको अपन को कम खरीदना पड़ेगा और अपनी जो लागत है वो भी कम होगी। और जैसे कहा है कि अपने खेत के आसपास रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, केंचुआ है, मधुमक्खी है, तो ये अच्छे वातावरण भी मिल सकते हैं। जाके अलावा अपन देखते हैं ना कि अपन जब अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो जो बारिश के समय या सिंचाई के समय वे बहकर नदियों, तालाबों और भूजल में पहुँच जाते हैं, जैसे कहा है प्रदूषण की समस्या बढ़ाते हैं। भैया अगर अपन कंपोस्ट, गोबर की खाद और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग करेंगे तो जो अपनी जो भूमि है बाकी जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है अपने आसपास के जो जैविक जो पशु पक्षी हैं बिनको भी नुकसान नहीं होगा। और अगर अपन देखते हैं कि आजकल अपन सुन ही रहे हैं कि जैविक खेती से जो उत्पादन होते हैं बाकी मांग भी बहुत बढ़ गई है और बाकी दाम भी बहुत मिलते हैं। अब अपन देखते हैं ना कि उपभोक्ता जो मांगते हैं जो जैविक फल हैं, जैविक सब्जियां हैं, जैविक अनाज हैं, जैविक दालें हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं और जाके दाम भी बहुत अच्छे देते हैं। तो भैया अपन खुद प्रयास करें कि अपन जैविक खाद को तैयार करें। अब अपनी गाय बैल भैंस तो रहते हैं तो अपन अपनी बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद अपन तैयार कर सकते हैं और जब अपन इनको तैयार करेंगे और अपने खेतन में डालेंगे तो जैसे कहा है कि लागत कम होगी और बाकी दाम भी अपन को बहुत अच्छे मिलेंगे। अब अपन जाके अलावा जो अपन कीट नियंत्रण के लाने अपन जो दवाइयाँ उपयोग कराते हैं बाकी जगह अपन प्रकाश प्रपंच करें और पक्षियों के बैठने के लाने अपन फसल के बीच में व्यवस्था कर दें, जैसे कहा वो कीटों को खा लेंगे और जब वो कीटों को खाएंगे तो अपन को रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भैया हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भैयाओं को यही कहेंगे कि रासायनिक खाद को छोड़ें और जैविक खाद को अपनाएं। जैविक खाद से अपन को स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बाकी अपने दाम भी अच्छे मिलेंगे और अपनी आय भी अच्छी बढ़ेगी। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए। तो सुनते जी लोकगीत।

भैया रो। अभी अपन ने सुनो जी प्यारो से लोकगीत, और अब हो गई चलवे की बेला। तो सभी किसान भैया को सुधांशु भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के आर्थिक विकास में स्वदेशी और सतत उपभोग की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी गुड्स को इम्ब्रेस करने और अननेसेसरी सोने के परचेज और डेस्टिनेशन वेडिंग देश के बाहर जाके करने के लिए अवॉइड करने की अपील की है। एक वीडियो मैसेज इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने इंडियंस से लीजर ट्रिप्स देश के बाहर जाके ट्रैवल करते हैं उनको लिमिट करने और देश के बाहर जाके शादी में पैसा खर्च करने से बचने की अपील की है और ये भी कहा है कि जब तक ही जरूरी ना हो तब तक गोल्ड की भी परचेज ना करें। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संदेश देशवासियों के लिए क्या था।
4: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल

0: विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए।
1: प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ पर देश को बधाई दी और कहा कि सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ज्यादा इम्फोसिस और महत्वता देने की जरूरत है। स्वदेशी सस्टेनेबल कंजम्पशन और इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री केजी सुरेश। मिस्टर सुरेश, आपका आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करने के बीच आखिर डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, और अगर हम इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं तो इसका इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है?
2: देखिए, हम जितना देश के अंदर के प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे उतना हमारा आयात कम रहेगा, और जब आयात कम होगा तो उसका मतलब है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है, विदेशी जो हमारे पास एक्सचेंज है, वो हम बाहर नहीं खर्च करेंगे, तो निश्चित ही वो जब बढ़ेगी तो उसका निश्चित ही हमारे पूरे इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे प्रभाव पड़ेगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है इस पर फर्क पड़ेगा। अगर हम आयातित, अब हम प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भाई विदेशों में आप जो है घूमने फिरने के लिए कम, भारत में बहुत सारी जगह है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है और जिससे जो है लोकल इंडस्ट्री को, लोकल सर्विस सेक्टर को बहुत जो है समर्थन मिलेगा, तो आपको वेडिंग डेस्टिनेशन भारत के अंदर है तो कितने लोगों के लिए रोजगार निर्मित होगा। वो विदेशियों के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ कह रहे हैं कि भारत को जो है, भारतीय प्रोडक्ट को, भारतीय पर्यटन स्थलों को, उनको हमको जो है प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा कि विदेश में जाके जब आप पैसा खर्च करेंगे तो वो आप फॉरेन एक्सचेंज ही आप खर्च कर रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो आप खर्च कर रहे हैं, तो वो जब खर्च होगा, जब आप कहते हैं कि सोना, हमको सोना सबसे ज्यादा जो है, अगर आप देखेंगे कि पेट्रोल के बाद हमारा सबसे ज्यादा खर्च जो है सोना आयात करने में होता है। पेट्रोल तो मजबूरी है उसके बगैर, लेकिन सोना तो कोई मजबूरी तो है नहीं हमारी, लेकिन अगर हम सोना कम खरीदते हैं, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, गोल्ड बॉन्ड्स का ऑप्शन है। सोना किस लिए लेते हैं? सोना इसलिए कि भविष्य के लिए हमारा जो है, समझ लीजिए कि कुछ आपके शादी ब्याह के लिए कुछ होता है, उसको छोड़कर बाकी सोना लेने का जो पूरी प्रथा है वो है कि हमारे भविष्य में कोई संकट आए तो उस वक्त वो काम आएगा। अब आज गोल्ड बॉन्ड्स आप लेंगे आज का रेट का, वही आपको रिटर्न मिलेगा, तब भी तो बात तो फिर नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमको समय के अनुसार जो है हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाना है, और जैसे ही इंडस्ट्री हमारे लोकल स्वदेशी हम चीजों को खरीदेंगे तो निश्चित ही जो पैसा विदेशी कंपनियां आके यहां कमाती है उसको निश्चित ही जो है उससे ज्यादा मुनाफा हमारे कंपनियों को मिलेगा, हमारे कंपनियों को मुनाफा लगेगा तो वो पैसा फिर भारत में ही जो है निवेश होगा, भारत का पैसा भारत में ही निवेश होगा और उसका लाभ भारतीयों को ही मिलेगा, भारतीय उद्योग को मिलेगा, भारतीय लघु उद्योग है उनको मिलेगा, मध्यम उद्योग है उनको मिलेगा, तो इसका बहुत बड़ा असर जो है पूरे अर्थव्यवस्था में होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमको स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं है, स्वदेशी पूरा एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें हम आयात जहां मजबूरी हो, जिसको कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, कुछ चीजों का हमारे पास विकल्प नहीं है, पेट्रोल की हमारे पास जरूरत है, उसके लिए भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑफशोर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनशोर तो है ही, तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही हमारे आर्थिक, हमारे लोकल इकोनॉमी को तब बूस्ट मिलेगा, यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, यहाँ के जिसे कहते हैं कि जो अन्य उद्योगों को बूस्ट मिलेगा, अगर हम अपना पैसा भारत के अंदर ही निवेश करते हैं। तो स्वदेशी प्रोडक्ट्स में एक तो स्वाभिमान की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पूरी दुनिया आज भारत के प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो रही है, खासकर हमारे जो आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें तो हमारा जो है महारत है पूरे दुनिया में, वो आप देखेंगे दुनिया भर में आप घूमेंगे तो हर डेकोरेटिव रूम में आप देखेंगे कि भाई भारत के ब्रास के आर्ट पीसेस लगे होंगे, मार्बल के लगे होंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी पूंजी है, हमारी विरासत है ये, तो हमें गर्व भी होना चाहिए इसको उपयोग करते हुए, और उसका एक आर्थिक भी उसका एक बहुत बड़ा पक्ष है।
1: जी, जैसे आपने समझाया हमें, वो तो आखिर है ही, उसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में देशवासियों को कहा, उन्होंने सस्टेनेबल कंजम्पशन, क्योंकि आपने कहा कि भारत की विरासत है और भारत में जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो तो है ही, उसके अलावा भी जो हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम काफी ज्यादा नेचर का ध्यान रखते हैं, और यही इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने भारतवासियों से अपील भी की कि सस्टेनेबल कंजम्पशन की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि सस्टेनेबल कंजम्पशन का क्या रोल है इंडिया से बाहर होने वाले अननेसेसरी स्पेंडिंग

0: को रोकने में, रिड्यूस करने में, क्या रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन सिर्फ प्रकृति के लिए ही जरूरी है या इसका कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें हो सकता है?
1: भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय चीजें लेंगे तो जो भारतीय हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारे जो, चाहे अभी अब हम हेल्दी फूड्स की तरफ जाएं, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने मनाया था। मिलेट जो है उससे जो है आप देखेंगे कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, और साथ ही साथ जो भी मिलेट को पैदा करते हैं हमारे किसान भाई, उनको भी जो है उसका बहुत आकर्षक मूल्य मिलता है। तो इसलिए विदेशी चीजें आयात करके खाने से कितना बेहतर है कि हम अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ जो है हम ऐसी चीजें जिससे जो है, जिसको ऑर्गेनिक है, जो केमिकल बेस्ड नहीं है, किसी रसायन पर जो है निर्भर नहीं है, उन चीजों को हम प्रमोट करें। देश के अंदर जो है कई चीजें आज जो है गोबर से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कई चीजें जो है हम जो सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। पेड़ को काटना, आज आपको सुनने में ताज्जुब लगेगा, कई देश में भोपाल जैसे जगह में भी शमशान घाट में गोकाष्ठ का उपयोग होता है, यानी कि जो गोबर के कंडे होते हैं उनको लकड़ी की जगह, तो यानी कि लकड़ी कम यूज किया तो हमारे जो बड़े जंगल है, हमारा जो पर्यावरण है वो बचा रहेगा। तो हमारे पास विकल्प है, हमारे समाज ने वो विकल्प तैयार किया है सदियों से कि हम खर्चा को कैसे कम कर सकते हैं। हमने जो है खादी जैसे प्रोडक्ट्स है, हमारे हमारे यहाँ हमेशा हमारी परंपरा रही है रिसाइकल का, रियूज का, रिड्यूस का। हम कभी उपभोक्तावादी कभी नहीं रहे, जितना आवश्यकता है उतना ही हम लोग खर्च करते रहे हैं। आज एक नई ट्रेंड है उधार लेने की, डेट सिस्टम का, कि हम जो है जो चीजें आवश्यक नहीं भी है उनको भी हम खरीदते हैं शौकिया। तो मुझे लगता है कि पुनः हमको वापस अपने पुराने उस सोच में जाना पड़ेगा जहां जरूरत की चीजों को लें और स्वदेशी चीजों को लें, और उससे जो है हमारा जो स्थानीय उद्योग है, चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे वो ग्रामीण उद्योग हो, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। और इसके लिए जो है आज प्रधानमंत्री स्वयं, चाहे वो अपने मन की बात के जरिए हो या अलग-अलग युवाओं को संबोधन करते हुए भी, वो हमेशा बात करते हैं। और भारत में ये सिर्फ ग्रामीण और खादी की बात नहीं कर रहा हूं, आज हर क्षेत्र में, जिसको कहते हैं चिप्स टू शिप्स, प्रधानमंत्री ने ये शब्द का प्रयोग किया
0: जी
1: था IIT के कन्वोकेशन में, दीक्षांत में, और उसमें उन्होंने जो कहा कि आज हमारा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सिलिकॉन चिप्स से लेकर हम लोग जो है आज जहाज तक हम बनाने की क्षमता रखते हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, बंदरगाह के लिए जो है समुद्री जहाज बना रहे हैं। तो हमारे अंदर क्षमताओं की कमी नहीं है, लेकिन हमको भी चाहिए कि हम उन चीजों को प्रमोट करें। तो ये जो पहले भी ये कॉन्सेप्ट कुछ चलाए गए थे, बी इंडियन बाई इंडियन, स्वदेशी मूवमेंट हमारा जो है स्वतंत्रता जो संग्राम के दौरान, वो अपने आत्मविश्वास के लिए, स्वावलंबन के लिए, उसके लिए हमने ये शुरू किया था। और विदेशियों का बहिष्कार करने के लिए गांधी जी राष्ट्रपिता ने जो है हमको ये आह्वान दिया था,
0: जी
1: और आज जो है हम उसी को जो है एक व्यापक रूप में अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अपने आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
0: भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो आज का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 16 से 17% होता है और ये 27 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स को भी इम्प्लॉय करता है। आपके विचार में सरकार की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बूस्ट कर रही हैं और इसके प्रोग्रेस को इतना एक्सेलरेट कर रही हैं?
1: जो सबसे बड़ा तो आपका मेक इन इंडिया है, जिसके तहत जो है आप जिन चीजों के लिए हम विदेशों में निर्भर रहते थे, जिस टेक्नोलॉजी को हमको आवश्यकता है, हमें जो अनावश्यक है उस पर नहीं, जो कृत्रिम टेक्नोलॉजीज हैं, जो कठिन है, जो मुश्किल है, जो हमारे पास नहीं था, तभी मैंने कहा कि जिसको जैसे सिलिकॉन चिप्स है, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है, स्पेस के इक्विपमेंट है, आज हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा एक तो मेक इन इंडिया, और दूसरा निजी क्षेत्रों को जो खुली छूट मिली है। पहले हम लोग कहते थे कि भाई रक्षा का क्षेत्र है, आपका स्पेस का क्षेत्र है, ये हम सिर्फ अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से ही करेंगे, तो इसमें जो है ना अच्छे लोगों को रिटेन कर पाते थे, क्योंकि सरकारी तंत्र में जो है कई सीमाएं हैं, आप चाहते हुए भी अच्छे टैलेंट को आप रोक नहीं सकते, ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम प्राइवेट में दे रहे हैं। तो ताकि जो विदेशों में, जो नासा जैसे जगह में जा रहे हैं, उनको हम वही सहूलियतें, वही तनख्वाहें, अच्छे लोगों को, विदेश में लोग क्यों जाते हैं, ज्यादा तनख्वाह मिलती है, जीवन शैली बेहतर होती है। तो आज अगर हम वो विकल्प अगर उनको यहाँ दे देंगे तो वो अपना देश छोड़ के क्यों जाएंगे, यहाँ जितनी सुरक्षा है कहाँ मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि वो माहौल हमको अगर देना है तो वो सरकार आज प्रयास कर रही है, चाहे वो निजीकरण के माध्यम से हो, चाहे वो निजी कंपनियों को मदद करने के माध्यम से हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से हो, कई जैसे गिफ्ट सिटी जैसे अहमदाबाद में बना है, ऐसे क्षेत्रों के माध्यम से जो है हम आईटी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अन्य सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स हमने, बहुत टैक्स हॉलीडेज दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत एक सर्विस ओरिएंटेड, पहले तो एग्रीकल्चर था, आज भी काफी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ होता है, लेकिन सर्विस सेक्टर को ज्यादा हमने बढ़ोतरी देखी। लेकिन अगर हम विश्व में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं तो हमको एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना पड़ेगा। हम रॉ मटेरियल्स पहले जो है हम निर्यात करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम विदेशों से आयात करते थे, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो रॉ मटेरियल लोहा हो, जो है एक्सपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ आयरन की स्टील प्लांट्स हम लगा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी, मतलब जो विदेशी भारतीय मूल के जो है उनको लेकर हम आ रहे हैं, उनसे हम यहाँ स्थापित करवा रहे हैं। इसका पूरा उद्देश्य है कि भारत की अपनी, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे वो ऐसे जो भारत के अपने अंदर जो क्षमताएं, उसको मात्र हम एक रॉ मटेरियल का सप्लायर के रूप में नहीं बल्कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का सप्लायर बने हम, इस दिशा में जो है। और हम स्टार्टअप्स को जिस तरीके से, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी हमारे पास है, इकोसिस्टम हमारे पास है, हम जितना स्टार्टअप्स को जो है, चाहे वो स्टैंडअप इंडिया हो या स्टार्टअप का जो भी योजनाएं जो भारत सरकार ने दिया है, युवाओं को स्किलिंग करके हम लोग जो है आज हर क्षेत्र में हम तैयार कर रहे हैं। आईटीआई की इतनी संख्या बढ़ गई है जो पहले कभी नहीं थी, पूरा प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आज जो है हमारे पास न सिर्फ एजुकेटेड युवा शक्ति हो बल्कि एम्प्लॉयबल युवा शक्ति भी हो, जिनके पास क्षमता इतनी है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम जो है उसमें भी हमने जो है उद्यमिता को हम लोग जो है आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई आप जाइए इंडस्ट्री को सेटअप करिए। तो हम नौकरियों पर सिर्फ नहीं जोर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उद्यमिता के लिए हम युवाओं को तैयार कर रहे हैं, उनका मानसिकता परिवर्तन कर रहे हैं, उनका कौशल विकास कर रहे हैं, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने जो है इसको समाहित कर दिया है। विकसित भारत, जो भारत को हमको 2047 में बनाना है, उस दिशा में हमको काम करना है। इस दिशा में बहुत सारे योजनाएं जो है भारत सरकार ने शुरू किया है, उसका निश्चित ही लाभ हमारे युवा पीढ़ी को लेना चाहिए।
0: जी सुरेश जी, आप सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी इस विषय पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के आर्थिक विकास में स्वदेशी और सतत उपभोग की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश का गाया हुआ है, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

आम्रपाली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ सूरज फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने, धुन तैयार की शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, गीत लिखा अनजानेश, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत था इज्जत फिल्म से। साहिल लुधियानवी की शब्द रचना थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं कर्तव्य फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ दी लता मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर का गाया कर्तव्य फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत में। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर।

कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा। कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने को अब समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा, ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशुल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
3: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति, ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
2: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र

0: विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
2: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

0: 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे की ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक $136 अरब का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 106.4 MHz पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है।
2: The headlines. New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood hit Nepal. Death toll rises to over 1200 with over 4000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over $136 billion inflows till August 31st. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Max de Weber to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. Talks on trade, defence, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Barendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll from devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called

0: and mixed doubles pair Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also moved to the next round. The government has announced the Tenzing Norgay National Adventure Awards for the year 2024. The awardees are Waljeet Kaur and Skaljang Rigzin in Land Adventure category, Rimo Saha in Water Adventure category, and Shiv Prasad Chamoli in the Lifetime Achievement category. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization and future water requirements, emphasizes greater adoption of water-saving technologies. New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200 with over 4,000 people still missing. Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Bastia Weber to arrive in New Delhi tonight on a three-day visit to India. And heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbha and West Uttar Pradesh tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल के लिए हंगामी सामान की पांचवी खेप भेजी है। मरने वालों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई है, जबकि रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला सीईओ मुकरर किया है। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वीवर भारत के तीन रोजा दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुजाकरात में तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, तवानाई और कनेक्टिविटी के मामलों को तरजीह दी जाएगी। मशरकी मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में कल तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है और भारत अव्वलीन ख्वातीन चैंपियन ट्रॉफी 2027 की मेजबानी के लिए मुंतखब हुआ है। श्रीलंका को मेजबानी से हटा दिया गया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल में अपनी राहती कार्रवाई को तेज कर दिया है और उसने इमरजेंसी साजो सामान की पांचवी खेप वहां पहुंचाई है। नेपाल में भारत के सफीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि राहत और इमदादी साजो सामान लेकर पांचवा भारतीय तैयारा आज सुपहर नेपाल पहुंचा। तैयारे में 11 अफराद पर मुश्तमिल बचाव टीम भी है जो सुरंगों से बचाने वाले खसूसी आलात से लैस है और साथ ही 5.5 टन जरूरी दवाएं भी तैयारे में हैं। भारतीय फजाइया ने सैलाब से मुतासर इलाकों में जरूरी साजो सामान पहुंचाने के लिए कई उड़ानें भरी। भारत ने तलाश और बचाव में मदद के लिए खसूसी तआवुन भी दिया। इधर नेपाल के वजीर आजम बलेंद्र शाह ने आज पार्लियामेंट में भारत के फौरी रद्द अमल के तई उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने तबाहकुन सैलाब के अलमनाक हादसे में फौरन तआवुन दिया। बचाव टीमें बदतरीन मुतासर इलाकों में जिंदा बच जाने वालों और लापता अफराद की तलाश में लगी हैं। नेपाल में इस तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1204 हो गई है, जबकि 4216 अफराद अब भी लापता हैं। बचाव में लगे अफराद बारिश और मलबे से नबर्द आजमा हैं ताकि उन लोगों का पता लगा सकें जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि वो भूटे कोशी दरिया के किनारे वाक़ सुरंगों और जेर ज़मीन पर ज़र मुबादला मौसूल हुआ है। कुल नकद रकम में से गैर मुल्की करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक FCNRB में जमा रकम जबरदस्त अक्सरियत की हामिल है जो 127.2 अरब अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल है। इधर बैरूने मुल्क गैर मुल्की करेंसी बोरोइंग्स OFCBs में 5.26 अरब अमरीकी डॉलर आए और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ECBS में 3.89 अरब अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को USDINR फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी शुरू की थी जो FCNRB में रुकूमात जमा करने, ECBs और OFCBs नकद رقومات کا احاطہ کرتی ہے. زرعی مبادلہ میں سویپ کی اس سہولت کا اعلان کمزور ہوتے ہوئے روپے کے سلسلے میں ڈالر کی نقد فراہمی کو فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا تھا, جسے ابتدا میں ستمبر کے آخر تک دستیاب رہنے کی بات کہی گئی تھی, لیکن اس سہولت کے تئیں انتہائی حوصلہ افزا رد عمل کے سبب اس میں ایک مہینے کی کمی کر دی گئی. ایف سی

0: एनआरबी डिपॉजिट्स के लिए इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। अलबत्ता ईसीबीज और ओएफसीबीज 31 दिसंबर 2026 तक दस्तियाब रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति वजारत की महकमा जाति समिट के अख्तितामी इजलास में शिरकत की। ये दो रोज़ा महकमा जाति समिट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के महकमा जाति समिट की सीरीज के नज़रिए के तहत पहली समिट थी, जिसका मकसद टीम इंडिया के जज्बे को मुस्तहकम करना, इमदाद बाहमी विफाकियत को फ़रोग देना और मरकज और रियासतों के दरमियान करीबी तालमेल के ज़रिए कौमी तरजीहात की इज्तिमाई जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। समिट में चार अहम मौजूआत पर तवज्जो मरकूज की गई, जिनमें पानी से मुतालिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का बरवक्त निफाज, जल संचय, जन भागीदारी, पीने के पानी के जराए की पायदारी और जल जीवन मिशन 2.0 शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरों के फैलाव से उभरने वाले चैलेंजों के लिए शहरी मकामी बल्दियाती इदारों को हसास बनाने पर जोर दिया, जिनमें आबादी में इजाफा और पानी की मुस्तकबिल की ज़रूरतें शामिल हैं। उन्होंने शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए चिंतन शिविर के इनेकाद की भी तजवीज़ पेश की। उत्तर प्रदेश में मगरबी एयर कमान के साबिक कमांडर रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला सीईओ मुकर्रर किया गया है। ट्रस्ट के सदर महंत नृत्य गोपाल दास की सदारत के तहत अयोध्या में मनी राम दास छावनी के मकाम पर मुनक्किदा ट्रस्ट की मीटिंग के बाद इस तकर्री का ऐलान किया गया। सीईओ ट्रस्ट के इंतजामी कामकाज निगरानी के जिम्मेदार होंगे और वो श्री राम मंदिर कॉम्प्लेक्स से मुतालिक कामकाज की तमाम अहम जिम्मेदारियों को अंजाम देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए मेंबरों के नामों का भी ऐलान किया है, जिसमें अयोध्या के सीनियर वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद से रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के उबोरी जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने इतला दी कि ट्रस्ट के नए सीईओ मगरबी एयर कमान के साबिक कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम रोल अदा किया था। वो 30 अप्रैल 2026 को रिटायर्ड हुए हैं। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। 6 जुलाई को 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक सर्च कमेटी तश्कील दी गई थी, ताकि वो श्री राम मंदिर में दान की चोरी के इल्जाम के बाद सीईओ का इंतखाब करे। सीईओ के ओहदे के लिए 5,500 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई थीं। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वीवर अब से कुछ देर में भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके हमराह बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रैंकिन होंगे। ये बेल्जियम के वजीर आजम का गुज़िश्ता बरस फरवरी में ओहदा संभालने के इलाकाई और आलमी मामलात का अहाता किया जाएगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि ये पाव सिक्योरिटी और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का एक मौका फराहम करेगा।
2: 2 दहाइयों में बेल्जियम के वजीर आजम का भारत का ये पहला दौरा है जो भारत बेल्जियम ताल्लुकात को एक नई समत अता करेगा। इस दौरे से भारत और बेल्जियम के दरमियान मुसलसल आला सतही राब्तों की अक्कासी होती है। ये भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मजबूत करने के सिलसिले में बेल्जियम के अहम रोल को भी तकवीत बख्शेगा। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक अहम इकतसादी शराकत दार है। 2025-26 में बाहमी तजारत 13 अरब डॉलर तक पहुंच गई। बेल्जियम के वजीर आजम का 4 सितंबर को मुंबई जाने का भी प्रोग्राम है। बेल्जियम के दिफा और गैर मुल्की तिजारत के वजीर के साथ साथ बेल्जियम की दिफाई सनतों के एक वफ्द की मौजूदगी भारत और बेल्जियम के दिफाई सनती इको निज़ाम में इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगी। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो भारत की बार काउंसिल की तश्कील नौ के मामले को उस वक्त देखेगा जब 9 मुंतखबा रियासती बार काउंसिल्स भारत की बार काउंसिल की तश्कील के लिए लाजमी अमल मुकम्मल कर लें। सुप्रीम कोर्ट उन अर्जदाश्तों की समाअत कर रही थी जिसमें बीसीआई के चेयरपर्सन के ओहदे पर सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा के मुस्तकिल जारी कब्जे को और उनकी मुद्दत कार में 2030 तक तौसी को चैलेंज किया गया था। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत की सदारत में एक बेंच ने दायरा इख्तियार के हामिल हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस को हिदायत दी है कि वो 2 हफ्ते के अंदर

0: Çak abi şeyhe. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना वो दौर जब रेशम के धागों और मसालों के दिखा, लेकिन आज 21वीं सदी के नक्शे पर वही मध्य एशिया सिर्फ इतिहास की किताब नहीं, चक्रव्यूहों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक के सरजमी पर। 4 दिनों की ये महायात्रा सिर्फ 2 देशों का दौरा नहीं थी, ये ताश एक नए युग में ले जाने का। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे कुछ बड़े सवाल भी हैं। क्या भारत पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद।
1: चर्चा की शुरुआत करने से पेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक 2030 तक व्यापार को $5 अरब से ज्यादा ले जाने का SCO के मंच से भारत का स्पष्ट संदेश, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। त्रिगुणायत जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला है। चीन और रूस के पारंपरिक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत का ये कूटनीतिक कदम सेंट्रल एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्या लगता है आपको?
2: देखिए आनंद जी, 2012 से हमने अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को स्थापित किया है और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी हुई, लेकिन जैसा आपने कहा है कि सेंट्रल एशिया जो है इस वक्त ग्रेट गेम के अंदर में लगा हुआ, जस्ट क्या है कि जियोपॉलिटिकली रशिया अपना स्थापित करता रहेगा, लेकिन चीन को जियोकॉमी उन्होंने भी अपना C5+1 और ये इस तरह के काफी वहां पर कोशिश की है। इसी तरह अजरबैजान और टर्की ने अपना वहां पर काफी जो उनका टर्किक लैंग्वेजेस का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, उस जो अमेरिकन एम्बेसी है वो उस रीजन की सबसे बड़ी एम्बेसी है और आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट इस वक्त हुई है वो 2 संदर्भ में हुई। एक तो ये कि बायलैटरल है हमारा उज्बेकिस्तान के साथ में, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जैसे आपने कहा कि उसको हमने कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है, जिसका मतलब सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया या न्यूक्लियर डोमेन के अंदर हो गया, डिफेंस में हो गया, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारी सेंट्रल एशिया के साथ रही है वो है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के लिए हमने जो है जब डायरेक्ट हमारा पाकिस्तान के थ्रू नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रहे, सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहे थे, तो भारत ने चबहार पोर्ट के जरिए जाना शुरू किया। लेकिन अभी चबहार पोर्ट भी जो है अमेरिका की काटता सैंक्शंस और आजकल तो बमबारी चल रही वहां पर, तो ये सब करने की वजह से भारत को थोड़ा वहां चबहार पोर्ट में हमारे को कंट्रोल प्रॉब्लम हुई है। उसी के चलते वहां पर जो आपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसमें भी चबहार पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो समस्याएं इस वक्त जियो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन की वजह से, खासतौर से अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो है बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, और उसमें भारत ने कोशिश ये की है कि किस तरह से हम उनको इम्यूनाइज कर पाए उन प्रॉब्लम से, ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस आगे बढ़ सके। तो वो किस तरह हो सकता है, एक तो एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब आप ये देखिए कि अभी प्रधानमंत्री को हमारे जब जाना पड़ा 7.5 घंटे लग गए, जबकि ये 2.5 से 3 घंटे के बीच हमारे कंट्रीज हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जिस तरह का एक अपना नजरिया दिखाता है, हमारे जो दुश्मनी के ताल्लुकात उनके साथ हैं, उसके चलते ये समस्या सबसे बड़ी आई। तो मैं समझता हूँ कि काफी सारे एरियाज में बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत बड़ी है। दूसरा, उज्बेकिस्तान भी जो है ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री है, तो उनके जो लीडर हैं शवकत मिर्जियायेव वो भी भारत आएंगे, जब हम भारत इस बार जो है ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है, तो वो सब उसके अंदर जो ऑल्टरनेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो SCO हो, नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ब्रिक्स है, और बायलैटरली भारत ने पूरी कोशिश की है कि इन सब देशों के साथ मिलकर के किस तरह से हम और आगे बढ़ा सके अपने जो हमारे रिश्ते हैं, हिस्टोरिक और सिविलाइजेशनल टाइज है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहां पर भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। आप अगर जाकर देखें वहां पे कल्चरली लोग जो है वो काफी अलाइंड है भारत के साथ, लेकिन इस वक्त में प्रधानमंत्री की विजिट से काफी, मैं समझता हूँ, एक ये जो रिश्ते हैं और आगे बढ़ेंगे और प्रगाढ़ होंगे।
1: जी प्रोफेसर जोशी, भारत और उज्बेकिस्तान ने 2030 तक आपसी

0: व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान व्यापार आंकड़ों को देखते हुए ये लक्ष्य कितना व्यावहारिक है और इसमें फार्मा, आईटी, माइनिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों की क्या भूमिका रहने वाली है आपके नजरिए से?
1: देखिए, ये देखना इस बार बड़ा सुखद रहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान की यात्रा की तो उनको न सिर्फ वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जिस प्रकार के सिविलाइजेशनल कनेक्ट रहे हैं, बहुत लंबे पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं टेंजिबल आउटकम्स में, जब हम दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशन

0: जितने भी टैरिफ से जुड़े हुए और नॉन टैरिफ से जुड़े हुए जो बैरियर्स हैं और जो निवेश में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हुए, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स हुआ, उसके पार्ट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हुए, मोबाइल फोन्स हुए, ये तमाम और कुछ खाद्य पदार्थ जो है उज्बेकिस्तान को भेजता है। वहीं जब हम उज्बेकिस्तान की ओर नजर डालते हैं तो फल और सब्जियां, फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि यूरेनियम शामिल है वो भारत को प्रोवाइड कराता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक का ऐसा नया क्षेत्र उभर के आता है आनंद, जिसमें विशेषकर एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में सहयोग को आगे ले जाने की कई गुना व्यापार बढ़ाने की बात की जा रही है, जो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो ये नोवीस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, विशेषकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और AI है, इसको लेकर अध्यक्ष ने भारत के जो अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको हमने कल प्रूव भी किया, हमारी क्वार्टरली ग्रोथ 7.8% की रिकॉर्ड की भी उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने तारीफ की थी जब ये बायलेटरल ऑफिशियल टॉक्स हुई। और इसमें फिर मैं कहती हूँ उसी तरफ जाकर, तो वहां पर भी जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं, फिलीपींस जैसे देश हैं, वो भारत की ओर देखते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें व्यापार में फिर जो है एक पूरा सामरिक क्षेत्र आ जाता है, जिसमें डिफेंस से जुड़े उपकरण, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ये तकनीक को लेकर के सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो व्यापार को 5 बिलियन करने की बात की गई है, उसमें जो ये तमाम जो नवाचारी क्षेत्र हैं इनका भी उल्लेख है। इसमें दोनों देश साथ में काम करेंगे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तर पर ये दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
1: जी त्रिगुणायत जी, जो ताशकंद वार्ता रही उसमें जो सबसे बड़ा टेकअवे रहा वो उज्बेकिस्तान से भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा तय होना रहा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समझौते के रणनीतिक महत्व को आप कैसे आंकते हैं?
2: देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और भारत एक लीडर के रूप में निकला है जहां तक कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन की बात है, या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने की बात है। तो भारत ने अपना जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नया आयाम किया है, उसी तरह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इस तरह के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी तरह भारत ने अपना लक्ष्य जो है न्यूक्लियर एनर्जी का रखा है लगभग 100 गीगावाट बाय 2047। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए आपको जो है यूरेनियम की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाई, उन सबको करना होता है। अभी हम सिर्फ कजाकिस्तान से खरीदते हैं यूरेनियम, और भारत चूंकि रेडी जैसे अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, और इस वक्त में अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत काफी कुछ चीजों में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में जो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन किया है येलो केक या जिसको बोलते हुए लेंगे वहां से, तो ये हमारी जो ऊर्जा के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, देखिए इस वक्त हमने देखा है जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है उसमें जिस तरह चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाबल मंदब हो, जब उनके बंद होने से एनर्जी सप्लाईज में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आ गया, ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आ गया, तो अल्टरनेटिव जो हमारे पास है जैसे INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस सब की वजह से क्या है आपको अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो है फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कैसे और आगे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी जान रहे हैं कि UPI 10 से ज्यादा देशों में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में भारत के फिनटेक और IT सेक्टर के प्रवेश के जो अवसर बन रहे हैं उसे आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर का नया हथियार बन रहा है?
0: आनंद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री की पिछली इंडोनेशिया यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खुल के तारीफ की थी, और विशेषकर भारत की इलेक्टोरल सिस्टम और जिस प्रकार से हमने EVMs के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को सहज, सरल, ट्रांसपेरेंट

बनाया, डिजिटाइज किया, उसकी तारीफ करते हुए एक महत्वपूर्ण एमओयू जो है वो भारत के साथ इंडोनेशिया ने साइन किया। तो इसी प्रकार से आप अपने आसपास के जब तमाम देशों को देखते हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देश हों, साउथ एशिया के देश हों, ईस्ट एशिया के देश हों, साउथ ईस्ट एशिया के देश हों, आज भारत की जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है पूरे विश्व में। और 140 करोड़ की आबादी के घने देश को डिजिटाइज करना सरल काम नहीं था आनंद, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। तो चाहे हमारा आधार हो, जो हमारा बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे अपना यूपीआई हो जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, जिसकी वजह से इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बीच में और अलग अलग मुद्राओं के बीच में भी संभव है। आज 10 से अधिक देशों में अपना यूपीआई स्वीकार्य है। चाहे अपना डेटा शेयरिंग का डेपा हो, जिससे कि डेटा एम्पावरमेंट को और प्रोटेक्शन को बल मिलता है, या ONDC हो जो कि ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए, जिसमें कि बायर्स और सेलर्स को ये एप्लीकेशन आपस में जोड़ती है और एक प्राइवेट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। तो हम फिर इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो हमने योजनाएं चलाई, चाहे जनधन हो, आधार हो, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, तो इससे हमने दो प्रकार के अकम्प्लिशमेंट अचीव किए। एक तो हमने अपना जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक सर्विसेज थी, उनको ट्रांसपेरेंट किया, इजी किया, सीमलेस किया, और इनको हमने डेमोक्रेटाइज किया। ये जन जन तक हमारी योजनाएं और ये तमाम जो पूरा डिजिटाइजेशन था ये पहुंचा। और दूसरा, हमने तमाम इसके माध्यम से जो बेनिफिट हुए वो एक ग्रास रूट लेवल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। और आज भारत अपना जो डीपीआई का ब्लूप्रिंट है उसकी ग्लोबल शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग जो देश हैं वो भारत के साथ में ऑफिशियल अग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के डीपीआई की। ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी न सिर्फ फिनटेक को या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं जो लोगों की सिटीजन्स की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उससे जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की यात्रा की थी, तो घाना अफ्रीका में या अर्जेंटीना, ब्राजील को हम लैटिन अमेरिका में देखें, इनको हम अपनी जो हमारा जो ई मेडिसिन संजीवनी की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पर उनकी

0: वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण संदेश है गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है शांति का मार्ग। इन सभी विषयों पर कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं।
1: त्रिगुणायन जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर अपनी बात कही, बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक संदेश दिया, अफगानिस्तान से सटने वाली मध्य एशियाई सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत का ये रुख कितना प्रासंगिक है, जब आप देख रहे हैं कि कई देशों की सीमाएं अस्थिर और अशांत बनी हुई हैं।
2: देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज 25 साल मना चुका है अपने एनिवर्सरी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, इन चीजों के लिए लड़ना और सिक्योरिटी को बढ़ाना किसी तरह से। उनके कुछ रेड्स टाइप के जो बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने। इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही जो है टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ना है। भारत जब अपने आप लड़ रहा है, दुनिया भर में सबको कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप रखेंगे तो इस बुराई, इस कुरीति और इस तरह के देशों के साथ में कोई भी पार्ट को नहीं कर सकते, उसको सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने इस बार फिर कही, और अगले जब 25 साल की बात हो रही है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि दुनिया जो है अपनी ये डबल स्टैंडर्ड, खासतौर से मेंबर कंट्रीज जो है वो ना रखें इसमें। तो भारत पूरी तरह से जब तक अपने आप तो लड़ता ही रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन दुनिया को ये सबक दे रहा है कि अगर आप इससे नहीं लड़ेंगे तो कल आप इसका शिकार बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ईरान युद्ध जो हुआ है, देखिए जितने भी इस तरह के इन्वेजन होते हैं, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल इवल्स वॉज इन्वेजन ऑफ ईरान, कि इराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उस वक्त के बाद सारा टेररिज्म बढ़ा, आईसिस आया वहां पे, आईसिल आया। अब आप ईरान के अंदर भी उसी तरह का अटैक कर रहे हैं, तो ये जितने भी उनके ग्रुप्स हैं जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है, 4H, वो सब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद में दोबारा से और ज्यादा इस तरह की बात होगी, तो ये जो सारी सीमाओं का फिर तो मतलब नहीं रह जाएगा जब नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा स्टेट्स की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का बड़ा सीधा भाषण था और राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा सीधा, उन्होंने जब पहली बार वर्ड्स में ये कहा कि एंडलेस वॉर को एंड ऑफ वॉर होना चाहिए, और पहले उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन ईरा वॉर, तो मैं समझता हूँ कि ये बात और उनकी मुलाकात जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी हुई, डॉक्टर पजेश्कियान से, और तब भी वह बातें हुई हैं। देखिए जब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे, जब तक देश जो है इस तरह का ये दुभाषिया व्यवहार जिसको कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन सब लड़ाइयों से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का 3 पिलर्स वाला विजन दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के इस दौर में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद और संतुलित पार्टनर के रूप में खुद को कैसे स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
3: हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, जब हम दो देशों के या भारत और किसी संगठन की के संबंधों की चर्चा करते हैं तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए कोई भी वो देश या वो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस बात की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन के लिए, भारत किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब जबकि शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये तमाम देश अस्तित्व में आए और भारत के साथ बहुत लंबे समय से इनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक इनके पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, विशेषकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और जिस तरह की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखते हुए हमने वर्षों से देखा है कि न सिर्फ रशिया के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए ये देश जो है वो जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे, और वही भारत के साथ भी स्थिति है। लेकिन जब इन देशों के, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, इन देशों के देश जानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है वो बहुत सकारात्मक कूटनीति है, भारत न किसी प्रकार का

0: डेट क्राइसिस या डेट डिप्लोमेसी खेलते हुए किसी देश के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि उसके किसी भूभाग पर जाकर के कब्जा करे या वहां अपनी प्रेजेंस को असर्ट करे। न भारत इस प्रकार की कूटनीति करता है कि अपने फायदे की या अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करने की सोचता है जिसमें कि दूसरे देश का नुकसान हो जाए। न भारत इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा हो। और आज जो भारत की शक्ति की तब जबकि अमेरिका के प्यूनिटिव मेजर्स और तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा था, पश्चिम एशिया का संकट बहुत गहराया हुआ था और बाकी के जो देश हैं विशेषकर पश्चिम के जो शक्तिवान देश हैं उनका जो जीडीपी ग्रोथ है रेट रहा वो 0.5 से लेकर 2% तक का रहा। हमने अपना जीडीपी इस क्वार्टर का जो रिकॉर्ड किया है वो 7.8% का रिकॉर्ड किया। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, उसकी कूटनीति ऐसी इस प्रकार की डायनेमिक कूटनीति है कि वो सभी मंचों पर एक सामंजस्य बना करके काम करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर के जाता है। ये देश जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात भारत करता है, भारत यूएनएससी में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके नेतृत्व की बात करता है और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई की बात करता है। इसके साथ ही भारत अपॉर्चुनिटीज की बात करता है कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साथ में काम करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज को इंटैक्ट रखते हुए। तो यहाँ पर भारत इन तमाम देशों के लिए एक बहुत और क्षेत्रीय सहयोग पर काम करता है।
1: जी। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी। आइए सुनते हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा।
2: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the Prime Minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
1: त्रिगुणायत जी, कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कि भारत विकसित बनने की राह पर और आगे बढ़ सके। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की महायात्रा थी इसमें कौन से ऐसे पहलू आपको नजर आते हैं जो भारत को विकसित बनाने की तरफ और आगे लेकर जाएंगे।
3: देखिए, भारत हमेशा से विश्वास ये करता है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास जो है वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी उसको साझा किया जा सके। तो जैसा अंशु जी ने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहें, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब नए ढंग से चल रही है। टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सो अफोर्डेबल एक्सेसिबल इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत प्रदान करता है, शेयर करता है दूसरे देशों के साथ में। तो जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% क्लॉक किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिश्ते हम बना रहे हैं वो तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी है और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। या तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं, भारत में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से विकसित भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के जरिए दूसरे देशों को जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको फायदा पहुंचाएं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह से भारत हमेशा सब देशों के साथ में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा साथ रहता है। तो मैं जब देखता हूं कि जब हम विकसित 2047 की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं वो भी
1: कुटियों तक। वक्त का पहिया एक बार फिर घूम चुका है। सदियों पहले जिस रेशम मार्ग पर भारत के ज्ञान, संस्कृति और मसालों की खुशबू महकती थी, आज 21वीं सदी का नया भारत उसी धरती पर अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अटूट सामरिक पहचान का परचम लहरा रहा है। उज्बेकिस्तान में मिला प्रधानमंत्री को सम्मान सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक कूटनीतिक जीत भी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया के दिल में भारत के बढ़ते विश्वास की वो मुहर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिगुणायत जी आपका, प्रोफेसर जोशी आपका और हमारे श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: नमस्कार।
0: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की

0: उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: चर्चा का विषय है

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, रात्रि के 10 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है विजय दिंडोरकर की लिखी झलकी बाबूजी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: क्यों इतनी देर लग रही है? डॉक्टर अभी तक आईसीयू से बाहर क्यों नहीं आए?
1: लगता है बाबूजी की तबीयत बहुत अधिक खराब होगी, तभी तो डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में रखा है। इलाज चल रहा होगा तभी डॉक्टर बाहर नहीं निकल रहे।
0: बाबूजी की तबीयत हमेशा खराब ही तो रहती है, हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पर लगता है आज वाकई सीरियस है।
1: डॉक्टर बाहर निकले तो कुछ पता लग सकता है, अभी तो बस अटकलें ही लगा सकते हैं। एक मिनट, वो देखो डॉक्टर साहब आ रहे हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, कैसे हैं बाबूजी? रमा,
2: ये क्या हो गया डॉक्टर साहब, कब ठीक होंगे बाबूजी?
3: देखिए देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है कि दिल का दौरा बहुत तेज था, इट वॉज ए मैसिव स्ट्रोक। देखिए साहब, इस पर्चे पर जो दवाइयां लिखी हैं वो फौरन ले आइए, मैं अंदर जा रहा हूँ, और प्लीज जल्दी कीजिएगा।
0: क्या मुसीबत है, अब और कितने रुपए लगेंगे इन दवाइयों में?
1: देखता हूँ भाई। हाँ, अभी तो कुछ रुपए हैं मेरे पास, इतने में काम बन जाए तो ठीक है, वरना मुझे किसी से लेने होंगे। देखता हूँ, पहले दवाएं लेके आता हूँ।
0: अरे गुड्डू, तू वहां क्या कर रहा है? यहाँ कर बैठ, ये अस्पताल है, यहाँ वहाँ ताक झाक मत कर।
4: मम्मी चलो ना, घर चलते हैं।
0: अरे बेटा, तेरे दादाजी बीमार हैं, हमारा इस तरह यहाँ से घर चले जाना अच्छा नहीं।
4: ये, या फिर वो?
0: चुप बैठ, यहाँ इस तरह की बातें मत कर, कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा कहते नहीं है।
4: तुम्ही तो कह रही थी कि जल्दी ही कुछ नतीजा निकल जाएगा।
0: हाँ कहा तो था, पर अभी डॉक्टर साहब कुछ बता नहीं रहे।
4: पर दादी तो 3 महीने भर्ती थी, वो तो 3 महीने बाद मरी थी, तो दादाजी।
0: चुप रह बेवकूफ, यहाँ इस तरह की बातें मत कर। देख तेरे पापा आ रहे हैं, उनके सामने ऐसी बातें मत करना।
1: अरे क्या बताऊं रमा, मेरे पास 4-5 हजार ही थे, अभी का तो काम चल गया, पर यदि और दवाओं की जरूरत पड़ गई तब तो मुझे किसी से लेना ही पड़ेगा।
0: क्या पता और
1: क्या देना पड़ता, अरे हमारे हाथ क्या लगता।
0: उनकी भली चलाई, सुबह ही उन दोनों को खबर कर दी थी कि बाबूजी सीरियस हैं, अस्पताल ले जा रहे हैं। अब
4: दोनों चाचा क्यों नहीं आए? मम्मी
0: रुपया खर्च करना पड़ेगा ना, तो वो कोशिश करेंगे कि जितनी देर से आ सकेंगे उतना ही अच्छा।
4: क्यों मम्मी, गंगा और लालू चाचा दादाजी को प्यार क्यों नहीं करते?
0: करते हैं ना, प्यार है, पर दादाजी से नहीं, उनके मकान से, उनकी जमीन से प्यार है, तू नहीं समझेगा।

0: अभी चुप बैठ, तेरे पापा आ रहे हैं।
1: देखो मेरी बात सुनो रमा, गंगा भैया और लालू भैया जितनी देर से आए उतना ही अच्छा है। बात यह है कि ये डॉक्टर साहब है ना, इन पर बाबूजी को बहुत भरोसा है। मुझे ऐसा पता चला है कि बाबूजी ने अपनी वसीयत बनाकर डॉक्टर साहब को दे रखी है।
0: हे भगवान,
1: हाँ
0: तू उस वसीयत में क्या लिखा है ये तो पता करो, कहीं जायदाद तीनों बेटों में ना बांट दियो।
1: अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाबूजी की पिछली बीमारी में, मतलब जब उन्हें पिछला हार्ट अटैक हुआ था, तभी उन्होंने बातों बातों में मुझसे कहा था, तू मेरी इतनी सेवा कर रहा है, ये मकान मैं तेरे नाम कर रहा हूँ।
0: वैसे भी तो कानून से इन पर तीनों भाइयों का हक रहेगा ना।
1: शुभ शुभ बोलो रमा, ये सारी बाबूजी की अपनी कमाई है, बाप दादाओं की कमाई नहीं है, इसलिए इस जायदाद का क्या करना है ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।
0: पर ये बात तो तभी हो सकती है ना, जब वो अपने जीते जी ये किसी के नाम कर जाए। अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं, उन्होंने ये सब पहले ही कर रखा हो तो अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी वसीयत बना रखी है और वो डॉक्टर साहब को देने वाले हैं।
0: मरने से पहले दे दें तो कोई फायदा, वरना तो।
1: अरे अभी चुप बैठो, गुड्डू सब सुन रहा है, कुछ समझती नहीं हो, बाद में बात करेंगे। क्यों रे उल्लू, हम लोगों की बातें क्यों सुन रहा है?
2: पापा अगर मैं उल्लू तो आप कौन?
0: बेकार की बातें मत कर, अपने पापा की इज्जत करना सीख, अब तू बच्चा नहीं रहा, जल्दी ही मूछे निकल आएंगी तेरी।
2: मेरे दोस्तों कहते हैं कि वो तो 10th क्लास में निकलती है।
0: अच्छा अच्छा चुप रह, सुनते हैं, वो देखिए जेठ जी आ रहे हैं।
1: अरे गंगा भैया प्रणाम।
3: प्रणाम, ठीक है।
1: भाभी जी आप भी आ गई? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बाबूजी की हालत सीरियस है, अभी अभी मैंने डॉक्टर को 8,000 की दवाई ला दी।
2: पर पापा आप तो कह रहे थे कि दवाई 4,000-5,000 की है।
0: चुप कर, तुझे क्या पता कितने की दवाएं हैं?
3: अरे बेटा तेरे पिता की तो ये बचपन की आदत है, वो 5 रुपए की सब्जी लाता था तो बाबूजी को 8 रुपए की बताता था।
1: कैसी बातें कर रहे भाई साहब।
4: अरे तो क्या गलत कहा आपके भैया ने, ये तो हमेशा से ही होता आया है, कोई आज की बात तो है नहीं।
5: हाय हाय भाभी, आप जरा तो सोचिए बाबूजी की हालत क्या है और आप कैसा झगड़ा ले बैठी हैं।
4: अरे पता है मुझे अकल सिखा रही हो हा? तू कौन सी कम है, अब मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ
1: भैया आप जरा भाभी को समझाइए, ये सब कहने का ये वक्त है क्या? हम दोनों और गुड्डू के तो बाबूजी की तबीयत की वजह से रो रो कर बुरे हाल हैं, और आप लोग। आ जा गुड्डू।
3: अब बस भी कर यार ये नाटक, ये बता बाबूजी को देखने अंदर जा सकते हैं या नहीं?
1: नहीं भैया, डॉक्टर साहब ने मना किया है, वो अभी थोड़ी देर में बाहर आएंगे तभी पता चल पाएगा।
2: चाचू मम्मी बता रही थी कि आज दादाजी नहीं बचेंगे।
0: वो मैं तो वही बता रही थी जो डॉक्टर साहब ने कहा है, इसीलिए तो हम रात भर सो नहीं पाए।
2: दादाजी को हॉस्पिटल में छोड़कर आप लोग पिक्चर देखने चले गए और मुझे भी नहीं ले गए, कहने लगे दूसरे टाइप की है।
1: चुप बेवकूफ, वो कल की बात नहीं थी, बहुत दिनों पहले हम लोग गए थे पिक्चर, तब की बात थी जब बाबूजी बिल्कुल ठीक थे, वो देखिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़े भैया और भाभी अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें बाबूजी की तबीयत के बारे में बताइए प्लीज।
3: डॉक्टर साहब कैसे हैं बाबूजी अब?
6: अब तो बस प्रार्थना ही कर सकते हैं, और मैं आपसे कुछ बातें भी करना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ बताइए ना
6: प्लीज।
3: कहिए ना डॉक्टर साहब।
0: आप बैठिए ना डॉक्टर साहब।
6: देखिए ऐसा है कि बाबूजी ने अपना वसीयतनामा मेरे पास रखवाया है, क्यों रखवाया है इतना समझाने का वक्त अभी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि वो मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं। खैर खास बात यह है कि आपको कुछ इंजेक्शंस और कुछ दवाइयां मंगवानी पड़ेंगी, ये रही लिस्ट।
1: ये सब कितने के आएंगे डॉक्टर?
6: यही कोई 7-8 हजार।
1: 7-8 हजार? मेरे पास इस वक्त इतने तो नहीं है। रमा देखना तुम्हारे पास है क्या?
0: नहीं मेरे पास, हाँ 8-10 रुपए पड़े हैं पर्स में, इतने कहाँ से होंगे ना।
1: हाँ तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे।
0: हाँ।
1: बड़े भैया अपने पास कुछ पड़े हैं क्या?
3: अब इतने रुपए कोई साथ लेकर चलता है क्या? मेरा तो ख्याल है कि मेरे अकाउंट में भी इतने रुपए नहीं होंगे। तुम अभी कहीं से इंतजाम कर लो, फिर मैं कल परसों में देख

0: देखता हूं क्या हो सकता है।
1: वो सब आप लोग जानिए, और हाँ, हो सकता है उन्हें खून देने की भी जरूरत पड़ जाए।
2: मेरा खून तो नहीं चलेगा, मेरा तो ग्रुप ही अलग है ना।
0: और मेरा भी।
3: हम तो वैसे ही खून की कमी से परेशान हैं।
4: और क्या,
5: तो मेरा ले लीजिए ना।
3: तू चुप बैठ।
1: आप लोग आपस में तय कर लीजिए।
4: हमेशा कमियां दिखाना।
6: हमारे यहाँ तो हमेशा रहे, हमें न कभी कोई ताने दिए और न कोई कमियां दिखाई। क्यों रामा?
0: वो तुम्हारे यहाँ रहे या तुम उनके यहाँ रहे, घर उनका है उन्हें।
3: हाय राम, उनकी पेंशन से हमने कभी एक पैसा भी नहीं लिया। हाँ, घर उनका था पर उन्होंने हमें जबरदस्ती अपने पास रख लिया था, वरना उनकी बीमारी में खटता कौन। पिछले 4-5 सालों से उनकी सेवा चाकरी में हम दोनों का समय बीतता था।
6: और क्या, हमेशा बिस्तर से लगे रहे, उनके नित्य कर्म भी बिस्तर पर ही होते थे, सारी साफ सफाई हम दोनों ने की।
3: उसका नतीजा ये हुआ कि 4 साल से गुड्डू फेल हो रहा है।
4: अरे भाई, फेल तो होगा ही, अपने माँ बाप की अकल पाई है तो पास कैसे होगा भला।
7: कृपया शांत रहिए, पेशेंट इज सीरियस, प्लीज।
4: सॉरी सिस्टर।
3: देखे भाभी, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। बाबूजी जब आपके पास रहकर लौटे थे तो आप लोगों ने कैसी गंदी गंदी बातें उनके बारे में की थी।
4: देखो रमा, मैं सच बताऊंगी तो आग लग जाएगी तुम दोनों को। बाबूजी की नजर मेरे बारे में कैसी थी ये बताने की जरूरत नहीं मुझे। तूने तो सब सहन कर लिया पर मैं उनकी वो हरकतें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
3: मैंने क्या सहन किया? बेकार की बकवास मत कीजिए। हम आपकी इज्जत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मुंह में आए सो बकें।
5: आप लोग चुप हो जाओ, दादाजी मर रहे हैं।
0: देखो रमा, मुझे सब पता है, मैं कुछ कहूंगा तो तुम दोनों को बुरा लगेगा, पर बाबूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उनके रुपए ऐंठने के लिए तुमने क्या नहीं किया।
6: बड़े भैया बस हो गया, आप इतनी ओछी बातें सोचें और कहें ये आपको शोभा नहीं देता। आपको यही सब कहना है तो आप जाइए यहाँ से, हम देख लेंगे बाबूजी को। हाँ
3: हाँ, यही तो वो दोनों चाहते हैं, किसी तरह आपस में झगड़ा करके यहाँ से चलते बने, फिर बाबूजी के इलाज के खर्चे, उनके क्रियाकर्म के खर्चे आप निपटें।
7: आपसे कहा ना मैंने कि शांत रहिए, पेशेंट इज सीरियस, आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आता क्या।
6: सॉरी सिस्टर सॉरी, मैं भी क्यों करूँ ये सब, मुझे भी उन्होंने कौन सी धन दौलत दे रखी है जो मैं ही अकेला सारे खर्च करता फिरूं।
1: डॉक्टर साहब। हाँ भाई, कुछ तय हुआ कि नहीं, दवाइयाँ कौन ला रहा है।
0: डॉक्टर साहब, आप तो पहले ये बताइए कि बाबूजी ने अपने वसीयतनामे में क्या लिखा है। हम दोनों में से जिससे जायदाद में ज्यादा हिस्सा मिल रहा होगा वही करेगा ये सारा खर्चा। बस
1: खर्च तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कर डाली, लेकिन आखिर उस देवता से इंसान को मिला क्या। खैर, अभी उन्होंने वसीयतनामे पर दस्तखत नहीं किए हैं, और ये काम वो करेंगे आपकी इस बातचीत को सुनने के बाद जो इस रिकॉर्डर पर लगातार रिकॉर्ड हो रही है।
6: रिकॉर्ड? अरे डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब।
1: और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा, कल आपके बच्चे भी बड़े होंगे और यही सब आपके साथ भी होगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। अब आप लोग मेहरबानी करके तशरीफ ले जाएं। बाबूजी अब मेरे साथ रहेंगे।

0: बाबूजी। अभी आप विजय दिंडोरकर की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे आरोही भट्ट, प्रिया चांदनानी, भारती ठाकुर, मीना सिद्धू, स्मित मेहता, इरफान सौरभ और एसएन तिवारी। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, संगीत तैयार किया कल्याण जी आनंद जी ने, मुकेश की आवाज है, फिल्म मेरे हमसफर। इस गीत में मुकेश का साथ दे रही हैं लता मंगेशकर।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आशा भोसले का गाया हुआ है। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया रवि ने, और फिल्म का नाम है वक्त।

आशा भोसले की आवाज़ में गाए वक्त फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए, अब सुनिए विदुषी गंगूबाई हंगल का राग मियां मल्हार में ख्याल गायन। तबले पर संगत की है शेषगिरी हंगल ने।

0: शास्त्री साग मिया मल्हार में ख्याल गायन। तबले पर संगत की थी वसंत ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्तर हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने

0: आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसके प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश बाग चंदका और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rocks near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in